सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि, तदनुसार 22 जुलाई सन 2026। प्रातः के 5:58:45 हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह

0: सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों

से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की दो दिन की फिलीपींस यात्रा आज से शुरू हो रही है। वे मनीला में आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। उनके द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे। श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GNKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर में अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन 1 अगस्त को प्रस्तावित है। श्री चंद्रबाबू नायडू केंद्रीय मंत्रियों अमित शाह, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं। 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स के साथ होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। वंदना कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, हम सभी के जीवन में हो चुकी है एक और नई सुबह के साथ नए दिन की शुरुआत। तो इस पावन बेला पर हम करते हैं आपके सुखी, संपन्न और समृद्ध जीवन की कामना। श्रोताओं, भगवान श्री गणेश सबसे पहले पूजे जाते हैं सभी देवताओं में। तभी किसी कार्य की शुरुआत के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि करिए श्री गणेश। तो आइए हम भी भगवान श्री गणेश का वंदन करते हुए इस भजन के साथ करते हैं वंदना कार्यक्रम का श्री गणेश।

अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज में भजन। श्रोताओं, भक्ति रस तन को शीतलता और मन को शांति देता है। हमारी सोच, हमारे कर्म और व्यवहार को सकारात्मकता और सद्गति देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्राणी को इसी भाव के साथ कर्म करते रहना चाहिए, उसी के अनुरूप प्राणी को फल मिलना निश्चित है।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये भजन। श्रोताओं, ईश्वर ही आदि है, ईश्वर ही अनंत हैं। गुरुवाणी बताती है कि अकाल पुरख जैसा कोई राजा नहीं। सांसारिक राजा का राजसी जीवन क्षणभंगुर मात्र है। अकाल पुरख हर सुख हर वैभव का प्रदाता है।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये शपथ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं साबरी ब्रदर्स से नात।

इसी आरती के साथ भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। कलाकार है सुरेश वाडेकर, संगीत सतीश भाटिया का।

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। कलाकार थे सुरेश वाडेकर, संगीत सतीश भाटिया का था। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन।
1: सहिष्णुता का अर्थ है सहन करना। हर वो अधिकार जिसे आप अपने लिए पाना चाहते हैं वो दूसरों को भी मिलना चाहिए। वास्तव में सहिष्णुता मनुष्य के अच्छे विचारों और व्यवहार का प्रतीक है। इस गुण के कारण एक मनुष्य सभी पक्षों के तर्क वितर्क सुनकर सही न्याय कर सकता है। लोकतांत्रिक देशों में सहिष्णुता एक मुख्य और आवश्यक गुण माना जाता है। सहिष्णुता मानव को मानव से जोड़ती है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, सहिष्णुता का अर्थ ये नहीं है कि दूसरों से वाद विवाद करके अपने आप को दूसरों से ऊंचा दिखाया जाए, बल्कि इसका असली अर्थ है

0: अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है। इनके योग से असहिष्णुता को कम किया जा सकता है। कहते हैं, जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। सभी लोग जानते हैं कि सहिष्णुता आवश्यक है और चाहते भी हैं कि इसका विकास हो, पर विचार इस बात पर करना है कि अवरोध कहाँ है। जैसे लोग कहते हैं कि दिमाग गर्म हो गया, ठंडा नहीं रहा, तो यहां स्पष्ट है कि अग्नि तत्व बढ़ गया है। दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र, इन चारों मुख्य केंद्रों पर ध्यान करके नकारात्मकता को कम किया जा सकता है और सहिष्णुता में वृद्धि की जा सकती है। वैसे तो ये एक व्यक्तिगत गुण है, परंतु अगर ये एक सामाजिक सद्गुण बन जाए तो इससे बेहतर संस्कृति के लिए कोई दूसरा संदर्भ नहीं हो सकता है। वर्तमान समय में सामाजिक सौहार्दता और समरसता में कमी देखी जा रही है। लोग भाईचारा भूलकर लड़ने भिड़ने पर आमादा हैं, तो ऐसे समय में सहिष्णुता में वृद्धि बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि सहिष्णु व्यक्ति ही समाज में विभिन्न धर्म, जाति, विचार और प्रथाओं को मानने वालों के साथ समानता से रह सकता है। सहिष्णुता दर्द रहित जीवन का आवश्यक गुण है। शिक्षा समाज में सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है। सहिष्णुता विविधता में एकता को बढ़ावा देती है। वास्तव में ये जियो और जीने दो के सिद्धांत की परिचायक है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा। काव्यधारा में आइए सुनते हैं उमेश सिंह भावुक से काव्य पाठ।
2: और पहली रचना है मेरी शूल धारणी, जो गुप्त नवरात्रि भी चल रहे हैं उस पर विशेष रूप से लिखा गया। तुम शूल धारणी हो, तुम त्रिशूल धारणी हो, तुम शूल धारणी हो माँ, तुम त्रिशूल धारणी हो, तुम ही तो जगत की माँ मूल धारणी हो, तुम त्रिशूल धारणी हो माँ, तुम मूल धारणी हो। तुम अगर न होती तो कुछ भी ना होता, तुम ही तो नौ महा की माँ आधार धारणी हो, तुम ही तो नौ महा की माँ आधार धारणी हो, तुम ही से तो सारा संसार खिलखिलाता, हर एक घर में तुम ही से जगमगाता, हर एक घर तुम ही से है जगमगाता, जगत जननी तुम जगत तारण तारणी हो, तुम मूल धारणी हो, तुम त्रिशूल धारणी हो, तुम ही जगत की माँ भंडार भरने वाली, तुम ही जगत की माँ भंडार भरने वाली, तुम शूल धारणी हो, तुम त्रिशूल धारणी हो, बिना कृपा के तुम्हारी एक पत्ता तक न हिलता, तुम ही हो गंगा मैया, तुम ही हो खिवैया, स्तन पान करा कर माँ सबको बलवान हो बनाती, तुम शूल धारणी हो, तुम त्रिशूल धारणी हो, तुम ही तो जगत की मामूल धारणी हो, हो कोमल तुम हो कठोर तुम माँ, इसने है जो तुम हो माँ सब पर लुटाती, सभी के हृदय को कोमल सा फूल हो तुम, तुम्हारी हंसी से माँ झुक जाता ये जहाँ है, ऐसा उपवन का माँ सुंदर सा फूल हो तुम, तुम शूल धारणी हो माँ त्रिशूल धारणी हो, तुम ही जगत की मामूल धारणी हो, तुम ही बताओ नारी तुम कमजोर तुम कहाँ हो, तुम ही तो जगत की तारण तारणी हो, मामूल धारणी हो, तुम त्रिशूल धारणी हो। तुझे गीत में लिखूं या प्रीत में लिखूं, जिस शीर्षक पर आधारित, कि तुझे गीत में लिखूं या प्रीत में लिखूं, तुझको जिंदगी का संगीत में लिखूं, तेरे बिना नहीं जमी पर कुछ भी, तेरे बिना नहीं जमी पर कुछ भी, तुझको जिंदगी की जीत में लिखूं, तुझे गीत में लिखूं, तुझे प्रीत में लिखूं, तुझको जिंदगी का मनमीत में लिखूं, जिंदगी की तन्हाई में एहसास है तू, जिंदगी की तन्हाई में एहसास है तू, अधूरी जिंदगी की बस प्यास है तू, तेरे बिना नहीं है धरा पर खिले कोई फूल, तू ही है जिंदगी का बस सब के एक मूल, तेरे एक मुस्कुराहट से सब जाते हैं ये भूल, तुझे गीत में लिखूं या प्रीत में लिखूं, तुझको जिंदगी का संगीत।

मैं लिखूं, तेरे बिना याद के एक पल रहा ना जाए, तेरे बिना एक याद के एक पल रहा ना जाए, तुझको भुला कर भी जाएं तो कहाँ जाएं, गजब सी चाल पर दम निकल निकल जाए, कितना भी भूल ना चाहूं मकर भुला ना पाए, दिन रातों में तू, दिन की बातों में तू, दिन रातों में तू, हर एक स्वप्न की हर रातों में तू, तुझे गीत में लिखूं या प्रीत में लिखूं, तुझको जिंदगी का संगीत में लिखूं। और अगली रचना है मेरी निगाहें, कि आपकी निगाहें कुछ कह रही हैं, कि आपकी निगाहें कुछ कह रही हैं, तुम ही बता दो क्या कह रही हैं, हमने तो समझा प्यार का है आलम, हमने तो समझा कि प्यार का है आलम, निगाहें तुम्हारी हमें बता रही हैं, और होने लगी हैं अंदर कुछ आहटे, नजरें तुम्हारी ये बता रही हैं, और तुम्हारा सजना सवरना और ये मुस्कुराना, तुम्हारा सजना सवरना और ये मुस्कुराना, हमको भी तोरा सा आने लगा है, निगाहें आपकी कुछ कह रही हैं, तुम ही बता दो क्या कह रही हैं, तुम ही बता दो क्या कह रही हैं। और नजरे उठाना और फिर गिराना, नजरे उठाना और फिर ये गिराना, इस उम्र में भी गजब ढा रही हैं, निगाहें आपकी कुछ कह रही हैं, तुम ही बता दो क्या कह रही हैं। उम्र हो कुछ भी मगर दिल जवां है, उम्र हो कुछ भी मगर दिल जवां है, यही तो जिंदगी का कह कसा है, तुम्हारी नजरें जब भी गुजरती तीर दिल के अंदर चला रही है, यूं देखना और फिर मुस्कुराना, गजब ढा रही हैं गजब ढा रही हैं, आपकी निगाहें कुछ कह रही हैं, तुम ही बता दो क्या कह रही हैं, तुम ही बता दो क्या कह रही हैं। आपकी आंखों की गहराई में डूब कर बिखरना चाहता हूँ, मुझे डूब जाने दो ये कहता हूँ, प्यार न जाने क्यों उमड़ने लगा है, कोई तो रिश्ता है ये पुराना, ऐसा मुझको लगने लगा है, तुम्हारा सजना सवरना और मुस्कुराना, मुझको भी रास आने लगा है, मुझको भी रास आने लगा है, तुम्हारी आंखों का डबडबाना, तुम्हारी आंखों का ये डबडबाना, फिर धीरे से मुस्कुराना, गजब ढा रहा है गजब ढा रहा है, दिल में करता है ऐसी हलचल, जिंदगी जीने का मजा आ रहा है, तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं, तुम ही बता दो क्या कह रही हैं, तुम ही बता दो क्या कह रही हैं। जब से बताया तुमसे ये रिश्ता, कोई रिश्ता तो नजर आ रहा है, और लगे हैं आरोप न जाने कितने, दाग प्यार से हम धो रहे हैं, मगर प्यार का है कोई रिश्ता, दिल को भी हम समझाने लगे हैं, तुम्हारा आना और मुस्कुराना, हमको भी रास आने लगा है, प्रभु का शुक्रगुजार करता हूँ मैं, कि जिंदगी के सफर में तुम जो मिले हैं, जिंदगी के सफर में तुम जो मिले हैं, आपकी निगाहें कुछ कह रही हैं, तुम ही बता दो क्या कह रही हैं, तुम ही बता दो क्या कह रही हैं। और अगला एक गीत,

0: काव्यधारा में अभी आप सुन रहे थे उमेश सिंह भावुक से काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। प्रशासनेन उक्तं यत् नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे तदनुबद्ध विषयेषु च संसदि चर्चायै प्रशासनं सज्जमस्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री जितेन्द्र सिंहः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुल गान्धिनम् आरोपितवान् यत् प्रशासनस्य आश्वासनस्य अनन्तरमपि सः नीट विषयक चर्चायाः स्वपूर्वामाग्रहात् निवृत्तः।
2: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: पूर्वाह्णे कांग्रेस दलस्य अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा अन्य दल सदस्या नीट विषयक चर्चा आधृत्य प्रदर्शनम अकुर्वन्। केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह तथा केन्द्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन लोक कल्याण मार्ग स्थिते प्रदर्शन स्थले कांग्रेस नेतृभि सह मेलनम कृतवन्तौ। तत्रैव संसदि विपक्ष सदस्य पुनः पुनः कृत व्यवधान लोकसभा राज्यसभा च नीट प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणं समेत्य विविध विषयेषु ह्यः आदिवसं यावत् स्थगिते अभवताम्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सद्यः एव जाते नीट परीक्षायाः प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन प्रकरणे संलग्न जनान् विरुध्य दृढ निग्रहं कर्तुम् अथ राष्ट्रस्य यूनां हितस्य संरक्षणं च पुनः उद्घाटितवान्। असौ अवदत् यत् भविष्ये एतादृशानां घटनानां निवारणाय प्रशासनेन बहवः उपायाः क्रियमाणाः सन्ति। प्रधानमंत्री एतत् संसद भवन परिसरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतेः मंगल मिलन इति नामना अपि प्रख्याते संसदीय दलीयोपवेशने उक्तवान्। वार्ताहरान् संसूचयन् संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजुः अवदत् यत् उपवेशने प्रधानमंत्री देशव्यापिनां भावि परीक्षाणां प्रश्नपत्र अनधिकृत प्रकाशन निवारणाय सर्वेषां संबंधित पक्षाणां समन्वित प्रयत्नानां आवश्यकतां विशेषतया प्रतिपादितवान्।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। सरकार संसद में नीट से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोपिये में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम में राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की

0: की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया सम्मेलन और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने अफगानिस्तान के नूरिस्तान में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। खाद्य सामग्री और टेंट सहित अन्य राहत सामग्री अफगानिस्तान के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को भेजी गई है। विदेश मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत इस कठिन समय में अफगानिस्तान के संकटग्रस्त लोगों के साथ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी है कि अमरीका हर उस स्थल पर जोरदार हमले करता रहेगा जहां ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू करने का प्रयास करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनन के राष्ट्रपति जोसेफ आउन की उपस्थिति में श्री ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान तनाव जारी रखने के बावजूद बातचीत की कोशिश में है। ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला न करने की चेतावनी देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ऐसा होने पर अमरीका 10 गुना अधिक हमले करेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रण किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट गतिविधियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। युवा कार्यक्रम विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। प्रश्नोत्तरी में बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हैं और 10 मिनट के अंदर इनके उत्तर देने होंगे। हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यों वाली पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा।
2: पेठा, जिसे भूरा कुमड़ा कहते हैं, एक प्रसिद्ध सब्जी है। इसका प्रयोग सब्जी और मिठाइयों के अतिरिक्त अनेक रोगों के निवारण के लिए भी किया जाता है। ये पौष्टिक, शीतलता प्रदान करने वाला, मानसिक शक्तिदायक तथा उन्माद नाशक है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम चर्चा करेंगे पेठे की उपयोगिता और औषधीय गुणों की। पेठा भारत में लगभग सभी जगह उपलब्ध होता है। इसकी लता होती है, पत्ते बड़े बड़े और फूल पीले रंग के होते हैं, फल गोलाकार और 5 से 20 किलो तक के होते हैं। कच्चे फल हरे रंग के और पकने पर श्वेत रोमयुक्त होते हैं। फलों के मध्य में बीज होते हैं। पेठे का साग और मिठाई बनाई जाती है। इसके बीजों की गिरी का ठंडाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। पेठे की सब्जी पाचन शक्ति को बढ़ाती है, जिससे कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। पेठे का प्रयोग विभिन्न रोगों के उपचार के रूप में भी किया जाता है। पेठे का पाक बनाया जाता है। इसके लिए पेठे को छील काटकर उबाल लिया जाता है, फिर शक्कर की चाशनी में उसे डालकर पाक तैयार किया जाता है। ये पाक स्वादिष्ट और गर्मी नाशक है। ये पौष्टिक और बलदायक भी होता है। ये दिल की बीमारियों में अत्यंत हितकारी है। पेठे के पाक के सेवन से मस्तिष्क के ज्ञान तंतुओं की दुर्बलता, याददाश्त की कमी आदि मानसिक विकार दूर होते हैं। जिन व्यक्तियों को गर्मी के दिनों में सिरदर्द की शिकायत रहती है और जिन्हें मानसिक तनाव अधिक रहता है, उन्हें भी ये पाक शीघ्र लाभ पहुंचाता है। शरीर की गर्मी कम करने के लिए इसके बीजों को पीसकर इसकी ठंडाई बनाकर पिएं, गर्मियों में राहत मिलेगी। विविध रोगों में भी आप पेठे का औषधीय प्रयोग कर सकते हैं।

0: है। पित्त प्रकोप के कारण उत्पन्न रोगों में पेठे का पाक दो दो टुकड़े सुबह शाम नियमित चबाकर खाने से लाभ होता है। दमा या खांसी होने पर पेठे की लता की जड़ सुखाकर उसका कपड़छान चूर्ण बनाकर रख लें। इसे 2 से 3 ग्राम की मात्रा में लेकर उसमें थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण मिलाकर गर्म जल के साथ सेवन करने से दमा और खांसी का दौरा शांत होता है। शरीर में कमजोरी होने पर पेठे के बीज की गिरी को पीसकर नियमित बल की वृद्धि होती है और शारीरिक कमजोरी दूर होती है। पेठे का पाक बनाकर खाने से भी शरीर हष्ट पुष्ट होता है। पीलिया रोग में पेठे की सब्जी, पेठे का चूर्ण या अवलेह बनाकर नियमित सेवन करने से पीलिया की शिकायत दूर होती है। स्त्रियों में रक्त प्रदर रोग की शिकायत होने पर भी पेठा लाभकारी है। इसके लिए पेठे का साग घी में भूनकर खाएं या उसका रस निकालकर उसमें शक्कर मिलाकर पिएं। ये प्रयोग अत्यधिक मासिक स्राव और रक्त की कमी में भी लाभकारी है। पेट की जलन, छाती की जलन, अम्ल पित्त, तृष्णा, उल्टी आदि रोगों में भी पेठे का रस पीने या साग बनाकर खाने से लाभ होता है। इतने सारे गुणों से भरपूर पेठे का सेवन कीजिए और लाभ उठाइए।
1: स्वास्थ्य चर्चा में अभी आपने जाना विभिन्न रूपों में पेठा का सेवन करने के लाभ। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें।
2: किसान भाइयों राम राम। खेती की बातें कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती की बातें कार्यक्रम में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं बरसात के मौसम में कृषि मशीनरी का रखरखाव विषय पर। किसान भाइयों, बरसात का मौसम है और हम देखते हैं कि बरसात के इस मौसम में अधिकांश जो हमारे कृषि यंत्र होते हैं उनका कार्य संपन्न हो जाता है और बरसात के बाद ही उन कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए बरसात के मौसम में हमें अपने कृषि यंत्रों का सही तरीके से रखरखाव करना है ताकि हमारे जो कृषि यंत्र हैं वो लंबे समय तक हमारे खेतीबाड़ी में काम आ सकें और हम उनसे अच्छा उत्पादन अपने खेतीबाड़ी में ले सकें। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में नमी और कीचड़ से कृषि यंत्रों में जंग लगने व खराब होने का अंदेशा रहता है। यंत्रों को हमेशा सूखी जगह पर रखें, उपयोग के बाद उन्हें अच्छी तरह धोएं, सुखाएं और लोहे के खुले हिस्सों पर ग्रीस लगाएं, बैटरी व वायरिंग को ढककर रखें। इसके अलावा किसान भाइयों, जैसे ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, हल है, टीलर, हैरो, इन सभी की हमें अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। ये जो हमारे कृषि यंत्र हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं और इन्हें हमारे किसान भाई खून पसीने की गाढ़ी कमाई से खरीदते हैं, लेकर आते हैं, इसलिए इनकी सही तरीके से देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। इन कृषि यंत्रों को कभी भी खुले स्थान पर न छोड़ें, इन्हें हमेशा पक्के शेड या गैरेज में खड़ा करें। यदि शेड ना हो तो उन्हें मोटे और वाटरप्रूफ तिरपाल से अच्छी तरह से ढक दें ताकि बरसात का पानी अंदर न आ सके। यंत्रों के नीचे लकड़ी के तख्ते या पत्थर रखें, इससे वे जमीन की नमी और कीचड़ के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं। किसान भाइयों, खेत में काम करने के बाद यंत्रों और ट्रैक्टर पर लगी मिट्टी व फसल के कचरे को पानी से धोकर अच्छी तरह से साफ कर दें और इसके अलावा कृषि यंत्रों को धोने के बाद अच्छी तरह से धूप में सुखाकर ही हमें छायादार स्थान पर रोकना है। गीली मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी होती है जो लोहे को बहुत जल्दी बेकार कर देती है, इसलिए हमारे यंत्र बेकार ना हों इसलिए इन्हें सुखा कर ही हमें रखना है। सूखने के बाद ही यंत्रों को अंदर स्थान पर रखें। जिन कृषि यंत्रों के हिस्से जैसे रोटावेटर के ब्लेड, हल के फल, टीलर की फालियां, जिन पर पेंट नहीं होता है, उन पर पुराना इंजन ऑयल या गाढ़ी ग्रीस की एक अच्छी परत लगा दें। यह परत लोहे और हवा पानी के बीच एक दीवार का काम करती है जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है और हमारे जो ये कृषि यंत्र हैं ये खराब नहीं होते हैं। ट्रैक्टर और इंजन की भी हमें अच्छे तरीके से देखभाल करनी है। बारिश में बैटरी के तारों को साफ रखें और उन पर ग्रीस या वैसलीन लगाएं ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। डीजल टैंक का ढक्कन हमेशा कसकर बंद करें। यदि टैंक में पानी चला गया तो इंजन खराब हो सकता है, इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि डीजल टैंक का ढक्कन हमेशा कसकर बंद करें। समय समय पर इंजन ऑयल और हाइड्रोलिक ऑयल की जांच करें। पानी जाने पर तेल का रंग दूधिया हो जाता है, जिसे तुरंत बदल दें। इसके अलावा किसान भाइयों, जो हमारे छोटे यंत्र हैं, जैसे कि स्प्रेयर है, पावर वीडर है, पंप है, इनको साफ और सूखा रखें। सभी नट बोल्ट को कस लें और जंग लगे हिस्सों पर हल्का तेल स्प्रे करें। किसान भाइयों, हम देखते हैं कि खेत में काम करते समय जो हमारे कृषि यंत्र हैं उनमें कुछ खराबी आ जाती है या कुछ पार्ट्स उनके बेकार हो जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि अब तो काम हो ही गया है, हम इसे बाद में ठीक हो जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं सोचना है, और जैसे ही हमारा काम समाप्त होता है या बरसात का ये मौसम है, तो इस मौसम में हमें जो हमारे कृषि यंत्र हैं या जो पार्ट्स हमारे बेकार हो गए हैं जिनको कि बदलने की आवश्यकता है, तो वो स्पेयर पार्ट्स भी हम बदलवा लें, ताकि जब बरसात के बाद में दोबारा से काम आता है तो हमें अपने कृषि यंत्रों का पूरा फायदा मिल सके, और जब भी हम काम करना चाहें आसानी से हमारे किसान भाई काम कर सके। तो किसान भाइयों, इसलिए हमें जो हमारे कृषि यंत्र हैं, वो चाहे ट्रैक्टर हो, डीजल इंजन हो, या सोलर पंप हो, पंपिंग सेट हो, इसके अलावा जैसे कि खेत जोतने वाले हमारे यंत्र हैं, रोटावेटर, हैरो, टीलर, कल्टीवेटर, इन सभी को हमें संभाल कर रखना है, इनकी मिट्टी साफ करनी है और सुखा कर ही हमें इनको छायादार स्थान पर रखना है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हमें अपने कृषि यंत्रों का अच्छे तरीके से रखरखाव करना है, लंबे समय तक उन्हें सुरक्षित रखना है, ताकि वो हमारे काम आ सकें और खेती बाड़ी में हम उनसे काम करके अच्छा उत्पादन ले सकें। तो इसी के साथ हमारा आज का खेती की बात कार्यक्रम संपन्न होता है। कल आपके लिए हम कुछ और बातों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सब बहन भाइयों को हमारी राम राम।
1: खेती की बातें में अभी आपने जाना बरसात में कृषि मशीनरी के रख रखाव के बारे में। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

0: श्रोताओं, आइए आपको दे देते हैं सबसे पहले आज हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में जानकारी। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 10 बजे। चर्चा का विषय है का प्रसारण समय रहेगा रात्रि 9:30 पर। संसद समीक्षा आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। हमारे लखनऊ केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत कानून की बात का प्रसारण किया जाएगा शाम 7:32 पर। जिले की हलचल आप सुनेंगे सुबह 9:15 पर। आज दी जाएगी वाराणसी और मऊ जनपद के जानकारी। नजीबाबाद केंद्र से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के अंतर्गत सुगम संगीत में भाई हरजिंदर सिंह से शब्द आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। विविधा के अंतर्गत भारतीय संविधान में लोक कल्याण के तत्व विषय पर वार्ता आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अमित कुमार सिंह। कृषि जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:05 पर। कार्यक्रम में नए फलदार वृक्षों की रोपाई करते समय सावधानी विषय पर डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता से बातचीत करेंगे प्रमोद सिंह। युववाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 5:15। किसानों की आय दोगुना करने संबंधी योजनाओं की जानकारी कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में दी जाएगी शाम 5 बजे। कार्यक्रम लोकधारा में भानुराम सुकोटी से कुमाऊनी लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 1:45 पर। कार्यक्रम घर संसार में महारा घर आंगन भोर से सांझ तक, इस क्रम में जागरूक श्रोता बहन वीरेंद्र कौर से तनप्रीत कौर की बातचीत होगी दोपहर 1:15 पर। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत कलाकार पंडित रविशंकर से सितार वादन आप सुनेंगे दोपहर 12:05 पर। धरती गाती है कार्यक्रम में सेठपाल सिंह आर्य से रागिनी आप सुनेंगे सुबह 9:25 पर। श्रोताओं, ये थी हमारे दिल्ली केंद्र, लखनऊ और नजीबाबाद केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जल स्तर बढ़ा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक रिपोर्ट।
1: कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा में छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत लगभग 50,000 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसके अंतर्गत राज्य निजी और संबद्ध विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण छात्राओं में से टॉप 5% छात्राओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने वाराणसी में 500 क्षमता वाले महिला छात्रावास के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से प्रारंभ होगा और 6 अगस्त तक चलेगा। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: कैबिनेट की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि विंध्य एक्सप्रेस वे को लेकर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। ये 333 किलोमीटर लंबा होगा जो कि प्रयागराज से शुरू होकर भदोही से मिर्जापुर होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दिए जाने के बारे में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनके परिवार की आय सीमा 12 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी।
2: इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को।
0: उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि योजना की लाभार्थी छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में 250 नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीद से जुड़े प्रस्ताव। अग्निशमन और आपात सेवा को अधिक प्रभावी बनाने के लिए 25 करोड़ 78 लाख रुपए के प्रस्ताव और यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को 20 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
3: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था। पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही बहराइच में महसी और नानपारा विधानसभा क्षेत्रों के लिए 352 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार के आने से विकास कार्यों और प्रगति के जरिए पिछले 9 सालों में प्रदेश को नई पहचान मिली है।
4: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं।
5: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। कल संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
6: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक होगी। एक रिपोर्ट।
7: भगवान श्री रामलला मंदिर के चढ़ावा विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव के पद और न्यासियों के 3 खाली पदों पर विचार विमर्श करेगा और राम मंदिर के पहले CEO के चयन की प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है। बैठक के मद्देनजर SPCT चक्रपाणी त्रिपाठी और ADM City योगानंद पांडे ने बैठक स्थल के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी।
8: डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी देने का उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं। समाचार कक्ष से वेद प्रकाश पाठक।
0: राजधानी लखनऊ सहित कई प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा खतरे के निशान के करीब है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण पीलीभीत में भी शारदा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। वहीं वाराणसी में गंगा के किनारे घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। 26,315 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा 333 किलोमीटर लंबा विंध्य एक्सप्रेसवे। 50,000 मेधावी स्नातक छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती में 396 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 83 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। नौशिलान्यास, बहराइच को दी 352 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार है केंद्र सरकार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई अन्य जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियों का जल स्तर बढ़ा। इसके साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

0: के साथ साथ।
1: ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, कार्यक्रम के आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं, आपका अपना रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। दोस्तों, हम सभी के जीवन में हो चुकी है एक और नई सुबह की शुरुआत। इस पावन बेला में आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हुए चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। प्रमुख अखबारों की आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं अमर उजाला अखबार की कुछ खास सुर्खियों की। अमर उजाला लिखता है, स्नातक पास 50,000 बेटियों को स्कूटी, यूपी कैबिनेट की मंजूरी, टॉप 5% मेधावी छात्राओं को मिलेगा इनाम। यूपी बोर्ड को 8,382 स्कूलों ने नहीं दी जानकारी, नहीं बन पाएंगे परीक्षा केंद्र। बरेली में 6 से 13 अगस्त तक होगी सेना भर्ती रैली, ट्रेड्समैन क्लर्क पदों पर होगी भर्ती। ब्रिटेन में भारतीयों का डंका, नए पीएम ने कनिष्क और नंदी को बनाया मंत्री, नई कैबिनेट में कनिष्क बने पहले आईटी मंत्री, नंदी का भी कद बढ़ा। विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा पर होगा शोध, कैबिनेट ने भारतीय ज्ञान परंपरा संवर्धन शोध पीठ स्थापित करने को दी मंजूरी, 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान। फ्रंट फुट पर नो बॉल डाली तो पूरे मैच के लिए निलंबित होगा गेंदबाज, बीसीसीआई ने राज्य संघों को दी जानकारी। अब बात करते हैं दैनिक जागरण अखबार से खास सुर्खियों की। जलवायु अध्ययन के लिए देश का बड़ा हब बन रहा एरीज, एरीज और आईआईटीएम की संयुक्त परियोजना के तहत देवस्थल में स्थापित होगी लैब। खेल विश्वविद्यालय मेरठ में 31 अगस्त तक पूरा होगा निर्माण कार्यों का प्रथम चरण, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की निर्माण कार्यों, छात्र सुविधाओं और भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा। यूपी रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 250 नई इलेक्ट्रिक बसें, 400 करोड़ सरकार देगी और 25.5 करोड़ रुपए परिवहन निगम। शिक्षक भर्ती में 9,500 लोगों को और समायोजित कर सकती है उत्तर प्रदेश सरकार, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में पक्षकारों ने सरकार के हलफनामे पर उठाई आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सबकी दलीलों पर करेंगे विचार, अगली सुनवाई मंगलवार को। ग्लासगो में कल से सजेगा खेलों का मेला, 23 जुलाई से 2 अगस्त तक होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार होगी केवल 10 प्रतियोगिताएं, 3,000 से ज्यादा एथलीट करेंगे हिस्सा, 125 सदस्य दल करेगा भारत की अगुवाई, 32 खिलाड़ी भारत के एथलेटिक्स में दिखाएंगे दम, मुक्केबाजी और जूडो में 14-14 खिलाड़ी उतरेंगे। अब बात करते हैं हिंदुस्तान अखबार से खास सुर्खियों की। ट्रेनें दौड़ेंगी तेज, 300 से अधिक ठहराव होंगे खत्म, लंबी दूरी और प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी, 15 से 45 मिनट तक बचेगा यात्रियों का समय। बिना इंटरनेट के भी यूपीआई चलेगा दूरदराज इलाकों में, भुगतान करना आसान होगा, 2,000 रुपए तक का होगा ऑफलाइन भुगतान। बच्चों में साधारण संक्रमण पर भी बेअसर हो रही एंटीबायोटिक दवाएं, सामान्य इन्फेक्शन पर भी नहीं कर रही काम, भारत समेत 82 देश के 1,00,000 से ज्यादा बच्चों के सैंपल्स का विश्लेषण करने के बाद दावा किया गया। आईटीआर भरने के 10 दिन शेष होने की बात करते हुए हिंदुस्तान ने लिखा है, आयकर रिटर्न में हर बैंक का खाते का देना होगा ब्यौरा। और जन भवन में 222 अफसर कर्मचारियों की होगी भर्ती, राज्यपाल सचिवालय नियमावली को मंजूरी, भर्तियां यूपी पीएससी और यूपी एसएसएससी से होंगी। तो दोस्तों ये थी आज के अखबारों की कुछ खास सुर्खियाँ। और दोस्तों भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति की पूरी दुनिया में एक विलक्षण पहचान है। यहाँ झंडा यानी ध्वज को किसी कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि धर्म, आस्था, विजय और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक माना जाता है। धर्म और आस्था में जो ध्वज ईश्वर की शरण में जाने और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है, वही ध्वज तिरंगे के रूप में राष्ट्र के गौरव और विभिन्न धर्मों, जातियों व संस्कृतियों के लोगों को एक सूत्र में बांधता है। भारत में त्योहारों, मेलों और शुभ कार्यों में झंडों का उपयोग किया जाता है। ये हमारी समृद्ध परंपरा का अभिन्न हिस्सा है।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत को आपने सुना जिसमें हमने तिरंगे का वैभव सुना। और दोस्तों, आज पूरा देश मना रहा है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस। दोस्तों, इसके ऐतिहासिक महत्व की अगर बात करें तो आपको बता दें कि 22 जुलाई 1947

0: से तुम्हें आने में लंबा वक्त लगा, कड़ा संघर्ष हुआ, अनगिनत कुर्बानियां भी दी गई। दोस्तों, कार्यक्रम में अभी बहुत कुछ बाकी है, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल ये संदेश सुने।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: इन संदेशों के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। दोस्तों, इन दिनों मानसून चरम पर है, कई जगह झमाझम बारिश हो रही है और प्रकृति जैसे हरे परिधान पहने अपनी खिलखिलाती मुस्कुराहट इस धरा पर बिखेर रही हो। हर तरफ बहार का आलम, ये तो हुई मौसम की खास बात। अब करते हैं आम की बात। जी हां, आम की बात। वो इसलिए क्योंकि आज है राष्ट्रीय आम दिवस। दोस्तों, विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर आम हर किसी की पहली पसंद होता है। ये आंखों और त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है, हालांकि इसके ढेरों लाभ और भी हैं। दोस्तों, भारत में आम की कुछ खास किस्में पाई जाती हैं, जैसे दशहरी, लंगड़ा, बनारसी, चौसा, अल्फांजो, आम्रपाली, शहद गुप्पी वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज जो दिन हम मना रहे हैं वो इसलिए कि इस दिन के उद्देश्य रसीले फल के इतिहास और खेती को समझा जाए। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय देशों में लाखों किसानों की आजीविका इस आम की खेती पर ही निर्भर है। भारत भी इनमें से एक है। आमतौर पर देखा जा रहा है कि व्यवसायीकरण के कारण आए दिन आम के बड़े बड़े बाग काटे जा रहे हैं। कम जगह, कम लागत और कम समय में ज्यादा लाभ लेने के लिए कई बार तो बागवान खतरनाक दवाइयों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें इन चीजों से बचना है। आपको बता दें कि आम के बारे में एक रोचक तथ्य यह है कि भारत विश्व की लगभग 50% उत्पादन करता है। जी हां, 50%। तो सोचिए, अगर हम आम के बागों को न काटें और आम की फसल के साथ खिलवाड़ न करें ज्यादा फसल लेने के प्रयास के चलते, तो ये लाभ 50% जो उत्पादन है ये इससे भी ज्यादा हो सकता है। दोस्तों, एक और रोचक तथ्य आम के पेड़ के बारे में कहा जाता है, वो ये है कि आम के पेड़ 100 साल से अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। आम केवल भारत ही नहीं, पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल है। इस खास जानकारी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं एक और संदेश।
5: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
6: तो इंतजार किस बात का,
5: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
6: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
6: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
5: और हमारा ईमेल आईडी है
6: akashwaninajibabad@gmail.com।
5: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
6: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह। दोस्तों, कार्यक्रम में अब खास जानकारी और आम की जानकारी के बाद क्रम है कुछ तिथि विशेष का। दोस्तों, तिथि विशेष में हम आपके लिए कुछ ऐसी तिथियां छांट कर लाते हैं जो अपने खास मायने रखती हैं, खास महत्व रखती हैं। यूँ तो हमारे जीवन में हर एक दिन कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन वो जो खास होता है, अगर वो यादगार रह जाए, इतिहास बन जाए, तो उसे कुछ ऐसे ही मौकों पर याद किया जाता है। दोस्तों, तिथि विशेष में हम आपको बता दें कि महान पार्श्व गायक हुए हैं मुकेश, और आज उनका हम जन्मदिन मना रहे हैं। दोस्तों, पार्श्व गायक मुकेश चंद्र माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 में दिल्ली में हुआ। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले मुकेश को अभिनेता मोतीलाल ने प्रोत्साहित किया और उन्हें मुंबई ले आए। उन्होंने 1940 के दशक में फिल्मों में गायक के रूप में शुरुआत की। राज कपूर की आवाज के रूप में उनकी पहचान बनी और आवारा हूं, मेरा जूता है जापानी, दोस्त दोस्त ना रहा, और जीना यहां मरना यहां, ये कुछ ऐसे गीत हैं जो अमर हो गए और आज भी ये गीत सुने जाते हैं। दोस्तों, फिल्म रजनीगंधा के गीत कई बार यूं भी देखा है के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। उनका योगदान अमूल्य माना जाता है। 27 अगस्त 1976 को अमेरिका में हृदयाघात से उनका निधन हो गया। दोस्तों, एक और तिथि विशेष की अगर बात करें तो 22 जुलाई 1947 में, यानी आज ही की तारीख में, संविधान सभा ने तिरंगे को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया और पिंगली वेंकैया की मूल डिजाइन पर आधारित ध्वज में चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ से प्रेरित 24 तीलियों वाला अशोक चक्र इस तिरंगे में शामिल किया गया। एक और तिथि विशेष की अगर बात करें तो 22 जुलाई 1933 में अमेरिकी पायलट वाइली पोस्ट ने अकेले विमान से दुनिया की परिक्रमा पूरी करते हुए इतिहास रचा। उन्होंने विमान से लगभग 15,600 मील यानी 25,100 किलोमीटर की यात्रा महज 7 दिन 18 घंटे और 49 मिनट में पूरी की। यह दुनिया की पहली सफल एकल विश्व परिक्रमा की उड़ान थी। और दोस्तों, आज एक और तिथि विशेष है। आज है विश्व मस्तिष्क दिवस। दोस्तों, इस दिन की शुरुआत 22 जुलाई 2014 में विश्व न्यूरोलॉजी महासंघ ने की थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों को मस्तिष्क के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। यह दिन मस्तिष्क की बीमारियों जैसे लकवा, अल्जाइमर और सिरदर्द से बचाव और उनके जल्दी जल्दी इलाज के महत्व को बताता है। दोस्तों, मस्तिष्क हमारे शरीर का कंट्रोल रूम होता है, यानी एक कंप्यूटर का, जिसे हम सीपीयू बोलते हैं, जो पूरी प्रक्रिया को अपने पर केंद्रित रखता है, वो होता है हमारा मस्तिष्क। जी हाँ, और जैसे घर के कंप्यूटर को सही रखने के लिए उसे वायरस से बचाना पड़ता है, वैसे ही मस्तिष्क को स्वस्थ रखना जरूरी होता है। इसमें आने वाली व्याधियों से हमें बचना चाहिए। और दोस्तों, हरी सब्जियां और फल खाकर, नियमित व्यायाम कर, भरपूर नींद लेकर, किताबें पढ़कर या पहेलियां सुझाकर मस्तिष्क को स्वस्थ रखा जा सकता है। और दोस्तों, गीत संगीत भी हमारे मस्तिष्क को सुकून प्रदान करते हैं और कहीं ना कहीं रचनात्मकता का विकास जो होता है मस्तिष्क में, वो भी, उसमें भी कई बार आपने देखा होगा कि गीत संगीत काफी लाभकारी होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम के अंतिम चरण में लेते हैं इस प्यारे से गीत का आनंद।

तो दोस्तों, इस गीत को सुनने के साथ मनोरंजन तो हुआ ही होगा, कहीं ना कहीं दिमागी कसरत भी ज़रूर हुई होगी। तो दोस्तों, ये था हमारा कार्यक्रम सूरज के साथ साथ का आज का अंक। उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इस कार्यक्रम को और भी बेहतर बनाया जा सकता था, तो आप इस कार्यक्रम के संबंध में हमें पत्र भेजकर अपने सुझाव से अवगत करा सकते हैं। कल आपसे पुनः भेंट होगी कुछ और खास जानकारी और प्यारे प्यारे से फिल्मी गीतों के साथ। तब तक आप आकाशवाणी नजीबाबाद के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और याद रखिए, रिश्ते अगर दिल में हों तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हों तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। नमस्कार।

0: के साथ साथ।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात।
2: रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु का सामना उन्नति होटा से होगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से

0: अवसंरचना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में भाग लेने को भी आमंत्रित किया। नॉर्थ मैसेडोनिया से शुभश्री की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पूजा।
1: भारत की मेजबानी में ब्रिक्स देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। 3 दिन की इस बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य, महामारी से निपटने की तैयारी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच पर विचार विमर्श होगा।
2: यह बैठक स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताओं पर सामूहिक कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मंत्री स्तरीय बैठक में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, मानसिक आरोग्य तथा सुदृढ़ स्वास्थ्य प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से होगी। इसके बाद कल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार में माहे श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवण को बेड़े में शामिल करेगी। ये भारत के स्वदेशी युद्धपोत निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
3: कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित INS मलवान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत तैयार किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें RBO 6000 रॉकेट और DRDO द्वारा विकसित टॉर्पेडोज की शक्ति है। जर्मनी और भारत द्वारा तैयार किए गए सोनार का उपयोग भी किया गया है। माहे श्रेणी के इस युद्धपोत तटीय और उथले समुद्र क्षेत्र में प्रभावी परिचालन के लिए बनाया गया है। इससे नौसेना की समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी क्षमता और मजबूत होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का फैसला किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाने और पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लागू करने के लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई।
2: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदन में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ।
3: UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा। तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा।

0: लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। श्री नवीन ने कहा कि सरकार सदन में नीट सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
2: और मैं कहूंगा कांग्रेस और विपक्ष के साथियों से, हम संसद के पटल पर हर प्रकार के संवाद के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपकी जो मर्यादाएं तोड़ने की परंपरा बनती जा रही है, जो अराजकतावती सोच आपके अंदर विकसित हो रहा है, निश्चित रूप से इससे देश कहीं न कहीं दुखी है और देश अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है।
1: भारत ने विश्व व्यापार में अपनी बढ़ती भूमिका पर बल देते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित, पारदर्शी और भेदभाव रहित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने वैश्विक व्यापार प्रणाली में भारत की भूमिका तथा व्यापार संधि, उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विकासशील देशों के बीच सहयोग से व्यापारिक संबंध मजबूत करने के प्रयासों पर बल दिया। वाणिज्य विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत समावेशी वैश्विक विकास में भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु का मुकाबला भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। पुरुष सिंगल्स के ही शुरुआती दौर में आज आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन, मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे तथा तनीषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा हॉकी इंडिया ने हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा की है। विश्व कप 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में आयोजित किया जाएगा। भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की जयंती पर उनका स्मरण किया है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि समाज के प्रति उनकी सेवा और महाराष्ट्र के विकास में उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। फ्रांस की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक विधेयक पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में सांसदों ने इस विधेयक के समर्थन में वोट दिया। इसके तहत स्कूल में विद्यार्थियों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले से फ्रांस सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2028 से जेनेरिक दवाओं के आयात पर भारी शुल्क लगाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य अमेरिका में इन दवाओं का उत्पादन बढ़ाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से अमेरिका में आयात होने वाली सभी जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई शुल्क नहीं लगेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नीट पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष के धरने, छात्रों के विरोध प्रदर्शन और पेपर लीक पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान संबंधी समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। नवभारत टाइम्स का शीर्ष समाचार है, जंतर मंतर पर लौटी भीड़, पीएम के घर के बाहर से विपक्ष के नेता हटाए। पत्र ने प्रधानमंत्री मोदी के कथन को भी सुर्खियों में जगह दी है, पेपर लीक के दोषियों को नहीं बख्शा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक को बताया घोर पाप। राजस्थान पत्रिका, लोकसत्य, दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला ने धरना दे रहे विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी है। जनसत्ता और दैनिक भास्कर ने सिक्किम में एक निर्माणाधीन सुरंग ढहने से हुई मजदूरों की मौत के समाचार को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। पत्रों ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मजदूरों के आश्रितों को अनुग्रह राशि की घोषणा का उल्लेख करते हुए सुरंग के प्रवेश द्वार और राहत अभियान का चित्र प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने पॉजिटिव न्यूज स्तंभ के अंतर्गत राजस्थान के आंधी गांव का उल्लेख किया है, जिसे बायोटेक वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा ने 100% कचरा रहित और आत्मनिर्भर बना दिया है। पंजाब केसरी ने कमर्शियल जहाज पर हुए रूसी हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद रूसी राजनयिक को तलब किए जाने का समाचार सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर पर आधारित संपादकीय को शीर्षक दिया है, सुरक्षा की फिक्र। पत्र का कहना है कि भारत से हर साल बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए विदेश जाते हैं और वहां से विदेशी मुद्रा यहां भेजते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलती है। मगर सवाल ये है कि विदेश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है।
1: और लीजिए अंत में सुनिए मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में बड़े विस्तार का आह्वान किया। दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह। भारत आज चंडीगढ़ में ब्रिक्स देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेगा। भारतीय नौसेना आज पनडुब्बी रोधी स्वदेशी युद्धपोत INS मालवण का कर्नाटक के कारवर में जलावतरण करेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने होनहार छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने की योजना मंजूर की। भारत ने जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन की व्यापार नीति समीक्षा में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की प्रतिबद्धता दोहराई। और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज PV सिंधु का मुकाबला होगा उन्नति हुड्डा से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to host 3-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow water craft INS Malvan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh Cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has called for expanding India-North Macedonia economic ties, urging businesses from both countries to move beyond trade and forge long-term partnerships based on investment, technology and innovation. Addressing the India-North Macedonia Business Forum in Skopje, President Murmu said her visit, the first ever by an Indian president to North Macedonia, reflects India's strong commitment to strengthening relations. President Murmu also invited North Macedonia to collaborate with India on digital public infrastructure, highlighting the success of India's UPI platform in promoting financial inclusion.
6: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
5: Our correspondent covering the President's visit to North Macedonia has filed this report.
7: President Murmu said India's pharmaceutical industry is well placed to invest in North Macedonia through joint manufacturing of medicines and medical devices for the wider Balkan and European markets. She also encouraged partnerships in food processing, cold chain logistics, renewable energy, artificial intelligence, cyber security and startup ecosystems. The President invited North Macedonia to join initiatives such as International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure and the Global Biofuels Alliance. She also extended an invitation to participate in the World Audiovisual Entertainment Summit WEBS to be held in India next year. This is Subhashree Mahapatra from Skopje, North Macedonia.
5: Concluding her address, President Murmu urged businesses, investment agencies and industry bodies of both countries to build enduring partnerships through technology transfer, joint ventures and local value creation. India will host a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. It will bring together health ministers and senior health officials from BRICS member countries to deepen cooperation on health security, digital health, pandemic preparedness, and equitable access to quality health care. A report.
8: The 16th BRICS Health Ministers meeting reflects India's commitment to advancing collective action on key global health priorities through the guiding theme of building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. Addressing a press conference, Union Health Secretary Punya Salila Srivastava said that discussions during the ministerial meeting will focus on strengthening cooperation in areas such as health security, pandemic preparedness, digital health, innovation, access to affordable medicines, traditional complementary and integrative medicine, tuberculosis, healthy lifestyles, mental wellness and resilient health systems. The official program will commence with the senior officials meeting today, followed by the 16th BRICS Health Ministers meeting tomorrow, chaired by Union Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda, during which health ministers will deliberate on key global and regional public health priorities and consider the adoption of the 16th BRICS Health Ministers Declaration. The meeting will provide an important platform for advancing the health priorities of the Global South and promoting collective action towards achieving universal health coverage and the health-related sustainable development goals. Soumya Sharan, Akashwani News, Delhi.
5: Indian Navy will commission INS Malvan, the second of the Mahe-class anti-submarine warfare shallow water craft at Karwar in Karnataka today, marking another milestone in India's indigenous naval shipbuilding program. The commissioning ceremony will be presided over by Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal A.P. Singh, in the presence of Vice Admiral Sanjay Vatsyayan, Flag Officer Commanding-in-Chief Western Naval Command, senior naval officers, veterans and other distinguished guests will also attend the event. More from our correspondent.
9: INS Malwan anti-submarine watercraft built by Cochin Shipyard under Atmanirbhar Bharat mission uses more than 80% indigenous equipment and technology. Armed with RBU-6000 rockets and DRDO torpedoes and a German-Indian sonar suit, it can play a dominant role in guarding our undersea defense. This Mahe-class warship is testament to country's growing capability in warship construction and our growing strength in maritime security and anti-submarine warfare capabilities. Sudhindra, Akashwani News, Bengaluru.
5: In a major initiative to boost female participation in higher education and reduce dropout rates, the Uttar Pradesh government has decided to provide free scooty to meritorious female students of the state. The cabinet meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath approved the guidelines for the implementation of the Rani Lakshmibai Scooty Yojana. More from our correspondent.
10: Providing the details of the ambitious scheme, the Higher Education Minister of State, Yogendra Upadhyay, informed that eligible female students will be selected based on merit from the list comprising the top 5% of female graduates. Under the scheme, government will not only provide scooters, but also their insurance, registration, helmets, essential accessories and 4 liters of petrol. The income limit condition will be relaxed for disabled girl students, daughters of martyrs and daughters from destitute families. The state government states that this scheme will increase the participation of daughters in higher education, particularly by making it easier for female students from rural and remote areas to access college and universities. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
5: India has reaffirmed its commitment to a rule-based, transparent and non-discriminatory multilateral trading system during its 8th trade policy review at the WTO, World Trade Organization, highlighting the country's growing role in global trade. Commerce Secretary Rajesh Agrawal emphasized India's engagement with the global trading system and its efforts to strengthen trade ties through an expanding network of trade agreements, a liberalized foreign direct investment regime, and a continued support for cooperation among developing countries. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website, www.newsoneir.gov.in and download the News on EIR app. Prime Minister Narendra Modi has vowed strict action against those involved in the recent NEET examination paper leak case and in safeguarding the interests of the country's youth. He said, the government is taking several measures to prevent such incidents. Mr. Modi said this while addressing the National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now also known as Mangal Milan, at the Parliament House complex yesterday. Meanwhile, the government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi last evening, Union Minister Jitendra Singh accused the leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET-related issues despite government assurance.
11: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET, on NEET-related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said, no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately. But now you're saying no.
5: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Later, Delhi police released all opposition leaders, including senior Congress leaders Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, after they were detained from the protest site near Lok Kalyan Marg. Union Health Minister J.P. Nadda visited Dr. Ram Manohar Lohia Hospital in New Delhi yesterday and reviewed the condition of those injured during yesterday's protest in the national capital over the alleged NEET UG exam paper leak. The minister also held a meeting with the doctors at the hospital. Mr. Nadda also visited Lady Harding Medical College and Hospital and met the injured protesters who are admitted there. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has accused the Congress and the leader of the opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of using students as political tools to create disruption during the monsoon session of Parliament. In a social media post, Mr. Pradhan stated that Mr. Gandhi and other Congress leaders staged a protest outside the Prime Minister's residence, causing inconvenience to the public and disregarding established security protocols. Mr. Pradhan added that even after the government conveyed its readiness for a comprehensive discussion on the NEET issue, the Congress chose political spectacle over democratic debate. The French Parliament has passed a landmark bill barring children under the age of 15 from using social media platforms. We have a report.
12: The measure will make France the first country in the European Union to approve a blanket ban on social media as concerns grow worldwide over the harmful effects of digital content on kids. The ban will not cover access to online encyclopedias, educational or scientific directories. President Emmanuel Macron, who championed the ban as a signature initiative of his second term, called Parliament's approval a major step forward. The French leader has pushed for the ban to come into effect by September, ahead of the new school year. However, a review to determine whether it complies with the French constitution could delay its implementation. A growing number of countries are taking steps to restrict social media access amid multiplying warnings over its harmful effects on children. Komati Parekh, Akashwani News, Delhi.
5: India has delivered relief materials, including food items and family tents, to Afghanistan's National Disaster Management Authority to support the affected communities in the wake of the floods in Nuristan. In a social media post, External Affairs Ministry said, India stands with the Afghan people at this difficult time. On to sports. In China Open Badminton, PV Sindhu will take on compatriot Unnati Huda, and Lakshya Sen will get his men's singles campaign underway today. Ayush Shetty will take on Alvi Farhan in the singles opening round today. Men's doubles pair M.R. Arjun and Hariharan Amsa Karunam. Mixed doubles pair Rohan Kapoor, Ruthvika Shivani Gadde and Tanisha Krasto Dhruv Kapila will also be in action today. Now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
13: Thank you, Anuja. The dailies have covered the Prime Minister's call to the NDA MPs to reach out to youth and dispel their fears of any future occurrence of an exam paper leak. In an express quoting the Prime Minister says, future of youth is beyond politics, calls for foolproof and timely exams. Quoting the Home Ministry, Times of India states, 50% quota for ex-Agnivis in Central Armed Police Forces, Assam Rifles posts. India soon to get first dengue vaccine for people aged 4 to 60 years, informs the statesman. An op-ed in the Tribune writes on how India's private sector has entered an exciting phase with Skyroots Aerospace launching Vikram 1 rocket. Condemning the attack on commercial vessel, Russian envoy summoned over killing of four Indians, writes the Economic Times. A headline in Hindustan Times writes, AI to drive planning audits, fraud detection under Viksit Bharat Ji Ramji, humans to take final call. And finally, Financial Express mentions about a QS survey declaring Delhi the most affordable for students in the world, doing well on employer demand as well. And with that, it's back to you, Anuja.
5: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Roddy Murmu calls for significant expansion of economic engagement between India and North Macedonia, urges businesses from both countries to move beyond trade and build long-term partnerships. India to hold a three-day meeting of BRICS health ministers in Chandigarh beginning today. Indian Navy to commission indigenous anti-submarine warfare shallow watercraft INS Malwan at Karwar in Karnataka today. Uttar Pradesh cabinet approves scheme to provide free scooty to meritorious female students of the state. India reaffirms its commitment to rule-based multilateral trading system at WTO Trade Policy Review in Geneva, and PV Sindhu to take on compatriot Unnati Huda in China Open Badminton Tournament today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
14: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी राबतों में नुमाया तौसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की 3 रोजा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारवार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आपदोस शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तिजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर मबनी कसीर रुखी तिजारती निजाम के तई अपने अहद का अदा किया है और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को वसत देने के लिए कहा है। उन्होंने दोनों मुल्कों के ताजिरों से कहा है कि वो तिजारत के अलावा भी सरगर्मियां जारी रखें और सरमायाकारी टेक्नोलॉजी नीज इख्तिरा पर मबनी तवील मुद्दती शराकत दारी कायम करें। इस गोपजे के मकाम पर भारत शिमाली मकदूनिया तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा कि उनके दौरे से, जो किसी भारतीय सदर का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है, इन ताल्लुकात को मुस्तकम करने के भारत के मजबूत इरादे की अक्कासी होती है। सदर मुर्मू ने शिमाली मकदूनिया को डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे में भी भारत के साथ शराकत दारी कायम करने के लिए मदऊ किया, जिससे माली शमूलियत को फरोग देने में भारत के UPI प्लेटफॉर्म की कामयाबी का अंदाजा होता है।
6: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
14: शिमाली मकदूनिया के सदर जमहूरिया के दौरे की खबरें देने वाली हमारी नामा निगार की एक रिपोर्ट।
15: सदर मुर्मू ने कहा कि भारत की दवासाजी की सनद शिमाली मकदूनिया में سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے. یہ سرمایہ کاری وسیع تر بلقان اور یوروپی مارکیٹس کے لیے دوائیں اور طبی آلات مل کر تیار کرنے کے لیے کی جائے گی. انہوں نے خوراک کی ڈبہ بندی، گولڈن چین، لاجسٹک، بار بار استعمال ہونے والی توانائی، مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور اسٹارٹ اپ ایکو نظام کے شعبوں میں شراکت داری کی بھی حوصلہ افزائی کی. صدر جمہوریہ نے شمالی مقدونیا کو دعوت دی کہ وہ بین الاقوامی سمشی اتحاد، قدرتی آفات سے مطابقت رکھنے والے بنیادی ڈھانچے اور عالمی بایو ایندھن اتحاد جیسے مشترکہ اقدامات میں شرکت کریں. انہوں نے عالمی آڈیول ویزل اور تفریحی سمٹ ویوز میں شرکت کی بھی دعوت دی جو بھارت میں اگلے سال منعقد ہوگی. شمالی مقدونیا سے صبح شری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں شعیبہ.
14: برکس ملکوں کے وزراء صحت کی 3 روزہ میٹنگ آج چنڈی گڑھ میں شروع ہو رہی ہے. اس کا مقصد سبھی کے لیے صحت کی سہولیات، ڈیجیٹل ہیلتھ، وبائی بیماریوں سے نمٹنے کی تیاری اور معیاری حفظان صحت تک مساویانہ رسائی دستیاب کرانا ہے. اس میٹنگ میں برکس ممبر ملکوں کے وزراء صحت کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیدار شرکت کریں گے. ایک رپورٹ.
16: برکس وزراء صحت کی 16ویں میٹنگ مضبوطی، اختراع، باہمی تعاون اور پائیداری کے لیے تعمیر تھیم کے ذریعے اہم عالمی صحت ترجیحات کے سلسلے میں مشترکہ اقدام کو آگے بڑھانے کے تئیں بھارت کے عزم کی عکاسی کرتی ہے. ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صحت کی مرکزی سیکرٹری پونیا سلیلا سری واستو نے بتایا کہ یہ وزارتی میٹنگ ہیلتھ سیکیورٹی، وبائی بیماریوں سے نمٹنے کی تیاری، ڈیجیٹل ہیلتھ، اختراع، سستی دواؤں کی فراہمی اور طبی نظام جیسے شعبوں میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانے پر مرکوز ہوگی. آج اعلیٰ عہدیداروں کی میٹنگ کے ساتھ ہی باضابطہ پروگرام کا آغاز ہوگا جس کے بعد کل صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کی صدارت میں برکس وزراء صحت کی 16ویں میٹنگ منعقد ہوگی. اس میٹنگ میں وزراء عوامی صحت سے متعلق اہم عالمی اور علاقائی ترجیحات پر تبادلہ خیال کریں گے. دلی سے سومیا شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں کونین حیدر.
14: بھارتی بحریہ آئی این ایس مالوان کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی. یہ ماہے طرز کے آبدوز شکن جنگی جہاز کی دوسری شکل ہے جو گہرے پانی میں اپنی کارکردگی انجام دیتا ہے. یہ تقریب آج کرناٹک کے کاروار علاقے میں منعقد ہوگی. آئی این ایس مالوان کو کام کاج میں شامل کیا جانا بحری جہازوں کو بھارت میں ہی تیار کیے جانے والے پروگرام کے تحت ایک اہم قدم ہے. اس تقریب کی صدارت فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ کریں گے جس میں بحریہ کے دیگر سرکردہ افسران بھی شرکت کریں گے. اتر پردیش سرکار نے اعلیٰ تعلیم میں خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی اور خواتین کے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے کے واقعات میں کمی لانے کے لیے ایک بڑی پہل کے طور پر ریاست کی ہونہار طالبات کو مفت اسکوٹی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کابینہ میٹنگ میں رانی لکشمی اسکوٹی یوجنا پر عمل درآمد سے متعلق رہنما خطوط کی منظوری دی گئی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
17: ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے بتایا ہے کہ گریجویٹ لڑکیوں میں سے شروع میں سرکردہ 5% طالبات کی فہرست تیار کی جائے گی. اس کے بعد ان میں سے طالبات کو ان کی قابلیت کی بنیاد پر منتخب کیا جائے گا. اس سرکاری اسکیم کے تحت طالبات کو نہ صرف اسکوٹی فراہم کی جائے گی بلکہ انہیں بیمہ، رجسٹریشن، ہیلمٹ، لازمی متعلقہ سامان اور 4 لیٹر پیٹرول بھی فراہم کیا جائے گا. معذور طالبات، شہید فوجیوں اور بے گھر افراد کی بیٹیوں کے لیے آمدنی کی حد کی شرائط میں رعایت دی جائے گی. لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے شمیم عرفان.
14: بھارت نے اصولوں پر مبنی، شفاف اور کسی طرح کی تفریق سے پاک کثیر ملکی تجارتی نظام کے تئیں اپنے عزم کو دہرایا ہے. بھارت نے اپنی اس رائے کا اظہار عالمی تجارتی تنظیم ڈبلیو ٹی او میں تجارتی پالیسی کے اپنے 8ویں جائزے کے دوران کیا جس سے عالمی تجارت میں ملک کے بڑھتے ہوئے رول کا اندازہ ہوتا ہے. تجارت کے سیکرٹری راجیش اگروال نے عالمی تجارتی نظام کے ساتھ بھارت کی سرگرمیوں اور تجارتی معاہدوں کا ایک وسیع تر نیٹورک قائم کر کے تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کی کوششوں پر زور دیا. انہوں نے نرم روی پر مبنی غیر ملکی راست سرمایہ کاری کے نظام اور ترقی پذیر ملکوں کے مابین تعاون کی لگاتار حمایت پر بھی زور دیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں تجارت کے محکمے نے کہا کہ بھارت سب کی شمولیت والی عالمی ترقی کو آگے بڑھانے میں ایک قابل اعتبار اور قابل انحصار شراکت دار ہے. ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के हालिया केस में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज करने का अहद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए कई इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने कल पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही, जिसे अब मंगल मिलन भी कहा जाता है। इधर सरकार ने कहा है कि वो नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने के केस और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस कराने के लिए तैयार है। कल शाम नई दिल्ली में नामनिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया कि वो सरकार की यकीन दहानी के बावजूद नीट से वाबस्ता मामलात पर बहस कराने के अपने पहले के मुतालबे से पीछे हट गए हैं।
18: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
14: इससे पहले दिन में कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी के दीगर अरकान के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। बाद में दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के सरकर्दा लीडरों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नीट समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव समेत अपोजिशन के सभी लीडरों को रिहा कर दिया, जिन्हें लोक कल्याण मार्ग के नजदीक एहतजाज करने पर हिरासत में लिया गया था। इधर दिल्ली पुलिस ने एक मुबैना वाकये में मौत होने के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में पुलिस ने कहा है कि किसी की भी मौत नहीं हुई है। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया है कि वो गैर मुसद्दका जानकारी पर न तो भरोसा करें और न ही इसे शेयर करें। दिल्ली पुलिस ने आवाम को सलाह दी है कि वो दुरुस्त और मुसद्दका जानकारी के लिए सिर्फ सरकारी वसीलों पर भरोसा करें। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा कल नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और नीट यूजी इम्तिहान का पर्चा मुबैना तौर पर लीक होने के मामले पर कौमी राजधानी में एहतजाज के दौरान जख्मी होने वालों की सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मीटिंग भी की। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भी गए और वहां दाखिल सभी जख्मी मुजाहिरीन से मुलाकात की। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में अपोजिशन की लीडर राहुल गांधी पर इल्जाम लगाया है कि वो पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दौरान रखना पैदा करने के लिए तलबा को सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब प्रधान ने कहा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज करते हुए जनाब राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर रहनुमाओं ने वजीर आजम की रिहायशगाह के बाहर एहतजाज किया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनाब धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार ने नीट मुआहदे पर जामे बहस कराने के लिए अपनी आमादगी से मुत्तला कर दिया था, इसके बावजूद कांग्रेस ने जमहूरी बहस मुबाहसे के बजाय सियासी तमाशा करने का रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का मकसद तलबा के लिए कोई हल तलाश करना नहीं बल्कि सियासी सुर्खियों में आने के लिए रखना डालना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुंग को कौमी राजधानी के सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुंतकिल किए जाने का हुक्म दिया है। अदालत ने वांगचुक की अहलिया गीतांजलि अंगमो की दाखिल करदा दरखास्त की समाअत करते हुए यह हुक्म जारी किया है। मरकजी सरकार की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल मुंतकिल करने पर सरकार को कोई एतराज नहीं है। फ्रांस की पार्लियामेंट ने एक खसूसी बिल को मंजूरी दी है, जिसके तहत 15 साल तक की उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करने से बाज रखा गया है। फ्रांस की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के कानून साज अरकान ने कल इस बिल के हक में वोट दिया। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के जुमरे में पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा, जबकि आयुष शेट्टी का सामना अलवी फरहान से होगा। एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की मर्दों की डबल्स जोड़ी रोहन कपूर और रुत्विका शिवानी गद्दे, नीज तानिशा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स डबल जोड़ी आज अपने अपने मैच खेलेंगी। इधर एचएस प्रणॉय पहले राउंड में ही मलेशिया के लियोन जुंग हाउ से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। खवातीन के सिंगल्स में देविका सिहाग थाईलैंड की खिलाड़ी बुसानन ओंगबाम रुंगफन से हार गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
16: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेष सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के तीन मुल्कों के सरकारी दौरे से मुतालिक खबर को अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। अखबार ने सदर जमहूरिया के इस बयान को नुमाया किया है कि इक्तसादी तआवुन भारत और शिमाली मकदूनिया के दो तरफा ताल्लुकात की इंतहाई अहम बुनियाद है। वजारत खारजा ने भारत में रूस के सिफारत खाने के नाजिमुल उमूर को तलब करके यूक्रेन में तिजारती जहाज पर हमले में चार भारतीय मल्लाहों की मौत पर एहतजाज दर्ज कराया। इस खबर को प्रताप समेत कई अखबारात ने अपने पहले सफ़े पर पेश किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद अहम बैन अलावामी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं। हूसियों के बहरी नाकाबंदी किए जाने पर सख्त जवाब दिया जाएगा, सऊदी अरब का इंतबाह।
14: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और शिमाली मकदूनिया के दरमियान इक्तसादी राब्तों में नुमाया तौसी की जरूरत उजागर की है और दोनों मुल्कों के कारोबारी इदारों पर जोर दिया है कि वो तिजारत से आगे बढ़कर तवील मुद्दती साझेदारी कायम करें। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए सेहत की तीन रोज़ा मीटिंग आज चंडीगढ़ में शुरू हो रही है। भारतीय बहरिया आज कर्नाटक में कारोबार के मकाम पर मुल्क में ही बनाए गए आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज INS मालवान को अपने बेड़े में शामिल करेगी। उत्तर प्रदेश काबीना ने रियासत में अच्छी तालीमी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटी फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी है। भारत ने जिनेवा में WTO के तजारती पॉलिसी जायजे में जाब्तों पर अपनी कसीर रुखी तजारती निजाम के तहत अपने अहद का इरादा किया है। और आज चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में PV सिंधु का मुकाबला अपनी वतन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
19: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात
20: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। गोल्डन हिट्स सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज महान पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन है और दोस्तों, जो भी श्रोता या जो भी फिल्म संगीत को पसंद करते हैं और मुकेश को पसंद करते हैं, मुकेश के गीतों को सुनने के बाद उन्हें कहीं ना कहीं अपने आसपास पाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कुछ ऐसे ही गीत से करने वाले हैं ताकि हमारे श्रोताओं को मुकेश के उनके आसपास ही होने का एहसास भी हो जाए। और दोस्तों, इस गीत के माध्यम से हम आज मौसम की भी करेंगे बात, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा है।

ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में, फिल्म का नाम छलिया। गीत रचना कमर जलालाबादी की थी और संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने। और दोस्तों देखिएगा, तारीफ़ हुस्न की ही होती है और हुस्न में कभी तो चेहरे की बात होती है, कभी चाल की बात होती है और कभी नज़रों की बात होती है। क्योंकि देखिएगा, नज़रें जब किसी को देखती है ना प्यार मोहब्बत के साथ, तो इश्क जमा हो ही जाता है।

अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म रंगोली के इस प्यारे से गीत में, जिसे लिखा शैलेंद्र ने और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं जरूरी संदेश।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। दोस्तों, नजरें तो हर किसी के पास होती हैं, लेकिन नजरिया सबका अलग अलग होता है देखने का। देखिएगा, इन नजरों से कोई तो शर्मा कर देखता है, कोई घूर कर देखता है, कोई प्यार करके देखता है, कोई गुस्से से देखता है और कोई इशारों में देखता है। देखने का नज़रिया सबका अपना अपना होता है।

अभी आपने सुना आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म बेवकूफ का ये गीत, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया SD बर्मन ने। और दोस्तों देखिएगा, कभी कभी दिल जो है वो आँखों की बातों को, आँखों के जज्बातों को नहीं समझ पाता है, तब कुछ ना कुछ गुनगुना कर ही बताना पड़ता है।

मुकेश और सुमन कल्याणपुर को आप सुन रहे थे फिल्म साथी के इस प्यारे से गीत में, जिसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया नौशाद ने। दोस्तों देखिएगा, जिन नज़रों से हम देखते हैं, जिन नज़रों से हमारा नज़रिया तय होता है, उन्हीं नज़रों से बचकर भी कई काम किए जाते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग जो हैं इन नज़रों से बचते बचाते अपने काम करते हैं और ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि अगर उन्हें किसी ने देख लिया तो क्या होगा।

फिल्म रसिया के इस गीत में आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर और कमल बड़ौत को। गीत रचना मधुर की थी और संगीत परदेसी ने दिया था। अब ये संदेश।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। और दोस्तों देखिएगा, वक्त बहुत तेज़ी से बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। तो रहते वक्त में हम कुछ और गीतों का लेंगे आनंद। फिलहाल ये प्यारा सा गीत मोहम्मद रवि की आवाज़ में, गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम झुक गया आसमान।

श्रोताओं, जैसा कि आज महान पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन है और इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमने लिया था मुकेश की ही आवाज़ में एक प्यारे से गीत का आनंद, तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम चरण में अब चलते चलते सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में और साथ में लता मंगेशकर की भी आवाज़ में धरती कहे पुकार के फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुनेंगे जिले की हलचल।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं जिले की हलचल।
2: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए वाराणसी और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का।
3: वाराणसी में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं ग्राम्य विकास विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत प्रथम पंच सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और उत्तराखंड के लगभग 500 ग्राम पंचायत प्रधानों ने भाग लेकर ग्रामीण विकास सुशासन और सशक्त पंचायतों के निर्माण पर व्यापक विचार विमर्श किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता गांवों तक विकास की हर योजना का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से जन भागीदारी बढ़ाने तथा सरकारी योजनाओं को पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को अधिक सक्षम जवाबदेह और विकासोन्मुखी बनाना है। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के 350 बिहार के 75 झारखंड के 50 तथा उत्तराखंड के 25 ग्राम प्रधानों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को विकसित ग्राम पंचायतों की अवधारणा ग्राम स्वराज सुशासन पारदर्शिता जवाबदेही और जन सहभागिता आधारित विकास मॉडल की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर ग्राम प्रधानों ने प्रधानमंत्री आवास योजना मनरेगा स्वयं सहायता समूह ग्रामीण सड़क स्वच्छ भारत मिशन तथा अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने गांवों के विकास को नई दिशा और गति दी है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा करते हुए इन्हें गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। सम्मेलन में पंचायतों की संस्थागत तैयारी विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम स्तर पर पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ग्राम प्रधान प्रियंका सिंह ने कहा सभी ग्राम प्रधान ग्रामीण विकास को जन भागीदारी से नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ काम करेंगे। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय कबीचौरा अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल के व्यापक विस्तार एवं आधुनिकीकरण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि लगभग 315 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल को 9 मंजिला अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पूरा होने के बाद पूर्वांचल के लाखों मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होगी। नए अस्पताल में कार्डियोलॉजी न्यूरोसाइंस कैंसर उपचार आधुनिक ऑपरेशन थिएटर 50 से अधिक आईसीयू बेड 100 से अधिक एचडीयू बेड अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट तथा मातृ एवं शिशु चिकित्सा सहित कई सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं शुरू की जाएंगी। निरीक्षण के दौरान ब्रजेश पाठक ने वार्डों का जायजा लिया मरीजों से मुलाकात कर उपचार की गुणवत्ता की जानकारी ली तथा चिकित्सकों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता दवाओं की उपलब्धता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हर हाल में सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता पूर्वक आधुनिक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। कबीचौरा अस्पताल का यह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट न केवल वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल के स्वास्थ्य ढांचे को नई मजबूती प्रदान करेगा। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को अन्य शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा
4: मंडली चिकित्सालय की जो सुविधाएं हैं वो भी रहेंगी और अतिरिक्त भी सुविधाएं आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाएंगे और बेहतर उच्चीकृत सेवाएं करेंगे एमआरआई सीटी डायलिसिस अन्य सुविधाओं को भी बेहतर से बेहतर कराएंगे। जो भी आवश्यकताएं हैं वाराणसी की मरीजों के हित में सब कुछ पूरे करेंगे।
3: प्रदेश में 24 मार्च से 5 जुलाई 2026 तक संचालित 100 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में वाराणसी मंडल ने अग्रणी उपलब्धि हासिल करते हुए विभिन्न प्रमुख सूचकांकों पर 100% प्रदर्शन दर्ज किया है। अभियान के अंतर्गत गांव-गांव एवं शहर-शहर व्यापक स्तर पर टीबी की स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार की सेवाएं प्रदान की गयी। अभियान के दौरान हाई रिस्क गाँवों का 100% आच्छादन सुनिश्चित किया गया। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर एनडी शर्मा ने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर संभावित टीबी मरीजों की पहचान की गई तथा चिन्हित मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराया गया। अभियान में वाराणसी मंडल के चारों जनपद वाराणसी, चंदौली, जौनपुर एवं गाजीपुर ने सक्रिय सहभागिता निभाई।
2: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का।
5: मऊ में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षकों एवं शिक्षा कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए निरंतर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना इसी दिशा में एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी पहल है जो शिक्षकों तथा उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करेगी। श्री शर्मा ने कहा कि शिक्षा समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। शिक्षक नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि
6: मऊ जिले के लगभग 9000 शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है और शिक्षक को ही नहीं बल्कि उसके परिवार जनों को भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और माध्यमिक शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, रसोइयों को भी इसका लाभ मिलने वाला है।
5: मऊ जिले में बाढ़ एवं तट कटान से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला अधिकारी आनंद वर्धन ने सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित ग्राम परसिया देवार एवं धर्मपुर विसुनपुर के मध्य प्रस्तावित तट कटान निरोधक परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं की विस्तार से समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जिलाधिकारी को परियोजना का विस्तृत प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि परियोजना की कुल स्वीकृत लागत 566.16 लाख रुपए है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ एवं कटान प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि परियोजना के प्रत्येक चरण का क्रियान्वयन निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य नदी की धारा को सुचारू रूप से प्रवाहित करते हुए तट को सुरक्षित बनाना, नदी के दाएं तट को अस्थायित्व प्रदान करना तथा आसपास के गांवों, कृषि भूमि एवं पक्के मकानों को कटान से बचाना है। मऊ के विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पोषण अभियान के अंतर्गत जिला पोषण समिति की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर जनपद में संचालित पोषण संबंधी कार्यक्रमों, संभव अभियान 6.0 तथा आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी रंजीत कुमार ने संभव अभियान 6.0 के 5 प्रमुख घटकों, सामुदायिक जन जागरूकता एवं सहभागिता, कुपोषण की शीघ्र एवं समयबद्ध पहचान, आवश्यक सेवाओं से लाभार्थियों को जोड़ना, नियमित अनुवर्ती अनुश्रवण तथा आवश्यकता अनुसार संदर्भन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संभव अभियान 6.0 की थीम गर्भा अवस्था से बाल्या अवस्था तक पोषण सुरक्षा है, जिसके अंतर्गत जीवन चक्र आधारित दृष्टिकोण अपनाते हुए गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार के लिए समन्वित प्रयास किए जाएंगे। साथ ही गंभीर एवं मध्यम कुपोषण की रोकथाम और प्रभावी प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं तथा इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी चिन्हित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनका ई कवच पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। मऊ जिले में चलाए जा रहे विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव ने अभियान को जन भागीदारी के माध्यम से सफल बनाने तथा प्रत्येक नागरिक नागरिक तक स्वच्छता एवं रोगों से बचाव का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया है। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए साफ सफाई, जल भराव की रोकथाम, फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव तथा व्यापक जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। मऊ जिले में जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान के अंतर्गत पुलिस कार्यालय में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने पुलिस विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जल संरक्षण, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सक्रिय योगदान देने की शपथ दिलाई।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:25 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। धरती गाती है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में लीजिए आपको आज हम सुनवा रहे हैं लोक कलाकार सेठ पाल सिंह आर्य और साथियों की आवाज़ में रागनी। तो लीजिए प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की ये पहली रागनी।

आकाशवाणी नजीबाबाद से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में आपको सुनवाई जा रही हैं सेठ पाल सिंह आर्य और साथियों की आवाज़ में रागनी। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम की ये एक और रागनी।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस संदेश के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है, और इस कार्यक्रम में आपको सुनवाई जा रही हैं सेठ पाल सिंह आर्य और साथियों की आवाज़ में रागनी।

0: इसी रागनी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है। कार्यक्रम में आपने सुनी सेठपाल सिंह आर्य और साथियों की आवाज में रागनी। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत तुम्हारे। गीत तुम्हारे कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह, और मेरे साथ
1: और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त लोकेंद्र। आप सभी श्रोताओं को हम दोनों का
0: प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपका है, आप ही के लिए है, क्योंकि इस कार्यक्रम से सीधे तौर पर आप जुड़ जाते हैं अपने व्हाट्सएप मैसेजेस और पत्रों के माध्यम से। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आप इस कार्यक्रम में हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर सुन सकते हैं अपनी पसंद का गीत। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9457078288 यानी 9457078288। और श्रोता हूँ, आपसे एक और गुजारिश करना चाहेंगे कि एक बार मैसेज भेजने के बाद आप उसे रिपीट ना करें। हमारी हर चंद कोशिश होगी कि आपके सभी मैसेजेस को शामिल किया जाए। तो लोकेंद्र, क्या हम कार्यक्रम की शुरुआत करें एक मैसेज को पढ़ने के लिए?
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता हूँ, हमारे पास ये मैसेज पहुँचा है इंदु नौटियाल, योगेश चंद्र नौटियाल, कनिका नौटियाल, कार्तिक नौटियाल, जस्सू नैथानी, पुनीता गौड़, मीनाक्षी डबराल, पूनम भारद्वाज और सुषमा का। ये भेजने वाले हैं कलाल घाटी, कर्ण नगरी, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल से। और ये दूसरा मैसेज भी हमारे पास पौड़ी गढ़वाल से ही और कोटद्वार से ही ये मैसेज भेजा गया है। और भेजने वाले हैं रजनी नौटियाल, अन्वेषा नौटियाल, वेदांश नौटियाल, जयवीर सिंह रावत, प्रशांत नेगी, दिनकर बर्थवाल, प्रवीण नौडियाल, मनोज रावत, हीरा सिंह रावत, आशीष बिस्ट, अजय सिंह और मोनू सिंह।
1: और ये अगला व्हाट्सएप मैसेज मैं पढ़ता हूँ। जेल रोड जालंधर से आप हैं अमरजीत सोनम कौर, परमजीत असमा कौर, धर्मजीत फातिमा कौर। और ये व्हाट्सएप मैसेज इसी गीत को सुनने के लिए हम तक लिख भेजा है। आप हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से आप हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। आप हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा।
0: और ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें प्राप्त हुआ है जनपद बिजनौर नजीबाबाद बुंदकी रोड से अंश टोंक, देव टोंक, साकेत टोंक, राजेंद्र टोंक का। और ये मैसेज रेलगाड़ी श्रोता टोली नजीबाबाद जनपद बिजनौर से महबूब सैफी, मोहम्मद यूसुफ, विनय कौशिक, रवि अरोड़ा, चंद्रशेखर ठाकुर, मोहम्मद उमर, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद फरमान का।
1: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कौसर भी इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास मैसेज भेजते हैं। कोहका भिलाई से आप हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। छटिया पोखर डुमराव से फातिमा वली वेलदार, डब्लू वली वेलदार, असमा वली वेलदार, सोनम वली वेलदार, बिहार भवन दिल्ली से सरफुद्दीन कोटरिया और सुरित रमेश कोटरिया इसी गीत को सुनने के लिए हम तक ये मैसेज भेजते हैं।
0: तो लोकेंद्र, हम अपने श्रोताओं की पसंद का सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत वीर राजेंद्र की आवाज़ में।

0: लोकेंद्र, जो गीत अभी हम सुन रहे थे, हमें लगता है कि आज हमारे श्रोताओं ने खास तौर से ये गीत इसलिए भी सुनना चाहा होगा क्योंकि आज राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस है और
1: बिल्कुल सही
0: ये
1: कहा आपने चरणजीत।
0: और इस खास दिन को हम 22 जुलाई 1947 की याद में मनाते हैं क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय झंडे का अंगीकरण हुआ था।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो चरणजीत, फिर अगला मैसेज लेते हैं। हमारे
0: जी
1: श्रोताओं ने
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे मैसेज हम तक लिख भेजे हैं अगले गीत के लिए।
0: जी
1: तो श्रोताओं से हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नाम इस गीत के साथ शामिल हो, आप अपनी पसंद का जो भी गीत सुनना चाहते हैं, तो आप हमें अभी व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9457078288 इस नंबर पर। तो चरणजीत, मैं अगला मैसेज लेता हूँ।
0: जी
1: आप हैं पवन कुमार, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश से। आपने लिखा है कि हमें अपनी पसंद का गीत सुनना है, तो आपकी पसंद का गीत हम अभी आपको सुनवा रहे हैं। और अगला पत्र छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, विट्ठल जाधव, अनसुईया जाधव और पवन राजे जाधव ने हम तक लिखकर भेजा है। आप हैं सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से।
0: जी हाँ, और ये मैसेज हमें मिला है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतना नाहटा और इनके परिवार के अन्य सदस्यों का ये मैसेज। गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी और ग्राम लसूड़िया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से इन्होंने मैसेज लिख भेजा है।
1: गोल्डन रेडियो श्रोता संघ, राज पैलेस, मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा इसी गीत को सुनना चाहते हैं। और शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से हैं मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार।
0: और ये अगला मैसेज जो कि मिला है जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से, और लिखने वाले हैं बहार हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
1: आप हैं वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र, मनोज और पूरा इनका भ्याण परिवार। लिखते हैं गांव जेवरा हिसार, हरियाणा से। आप हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना, कृष्णा पार्क, दिल्ली से हम तक मैसेज आपका पहुंचा है। आपने लिखा है आसाम से, आप हैं हितेंद्र दास।
0: और ये मैसेज अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत और

0: इन्होंने ये मैसेज लिख भेजा है पूना जंक्शन मस्तानपुरा से।
1: आपने मैसेज लिखकर भेजा है, आप हैं ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना गोंडाने, प्रणय प्रसिद्धि और हीरामन सेंडे, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी और बाबू अंसारी का।
0: मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता ने भी मैसेज हमें लिखा है, और ये मैसेज हमें भेजा है चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी, माया साहू और साहू परिवार के अन्य सदस्यों ने।
1: गणेश अविका आर्ट श्रीरामपुर से आप हैं अशोक कुमार, अविका जीविका, सानू कुंभार और अर्चना कुंभार।
0: और ये मैसेज हमें मिला है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से हमें ये मैसेज लिख भेजा है। और ये अगला मैसेज लोकेंद्र,
1: ये अगला मैसेज हम तक पहुंचा है ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, आपने लिखा है कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से। प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय का मैसेज भी हम तक मिला है, आप हैं दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से।
0: और शाही मार्केट सिहोरा जनपद बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना चौधरी, अदीप चौधरी और कदीर चौधरी ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है। और इसके साथ ही ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है किशोर नगर अमरावती से हीरामणि शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गोंडाने का।
1: तो चरणजीत, तो फिर सुनवाते हैं अपने श्रोताओं
0: जी
1: को
0: हाँ
1: फिल्म
0: बिल्कुल,
1: शागिर्द का ये गीत, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे के युगल स्वर में, गीत इस
0: मजरूह सुल्तानपुरी का है और
1: और संगीत
0: संगीत
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल।

अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, तन्हाई में अगर कहीं आ जाए वो नजर कहीं, कहिए हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है ऐ

तन्हाई में ऐ हसी इतनी दूरी भली नहीं, आया मौसम बहार का रख ले दिल बेकरार का, मेरे हाथों में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा।

0: इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम गीत तुम्हारे में बहुत बहुत स्वागत। हम एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दें जो अभी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं कि आप भी अपने नाम और पते को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर अपनी पसंद का कोई गीत सुन सकते हैं। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिएगा 9457078288 यानी 9457078288। और ये हमें एक व्हाट्सएप मैसेज इसी बीच प्राप्त हो चुका है। दाऊद सराय सहारनपुर से भेजने वाले हैं अनमर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और ज़रीफ साबरी। इसके साथ ही हमें ये मैसेज कहाँ से मिला है?
1: आप हैं एम असलम सैफ़ी, जैबुनिशा बेगम, अकरम सैफ़ी, जाहिद सैफ़ी, सद्दाम सैफ़ी, सोनी और आबाद खान। आपने लिखा है दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासगंज से।
0: और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, डॉक्टर दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवार, नजमा बेगम नाज, सरिता गौतम और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
1: आप हैं पुराना बस स्टैंड नगर पंचायत बढ़ापुर जनपद बिजनौर से एम ताहिर और एम उजैफ।
0: और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज नाज, सलमा नाज, असद अरहाम और मोहम्मद आलम हाशमी। इसके साथ ही ये लोकेंद्र कहाँ से है मैसेज?
1: ये मैसेज
0: जी हाँ
1: गांव गाधरोना पोस्ट लंडोरा रुड़की से आप हैं मदनगिरी विमला देवी, बलरामगिरी मधु, भारत सोनिया, सिमरन, गोविंद, वंशिका और इनके परिवार के सभी सदस्य।
0: और लोकेंद्र देखिएगा हमें लगातार कुछ रिपीट मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं, तो हम अपने श्रोताओं से बता दें कि आप कृपया रिपीट मैसेज ना भेजें। जो मैसेज एक बार आप भेज चुके हैं आप प्रतीक्षा करें, हम हर चंद कोशिश करेंगे कि आपके मैसेजेस को शामिल किया जाए।
1: गाँव हिपरसोगा तहसील औसा जिला लातूर से आप हैं उस्मान शेख फौजी, सायरा बानू शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख।
0: और ये मैसेज हमें मिला है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया का झज्जर हरियाणा से। एक मैसेज जलालाबाद से हमें देखिएगा, ये भी रिपीट मैसेज हमें प्राप्त हुआ है।
1: अभी हमने

0: मैसेज।
1: ये अगला मैसेज
0: आप हैं सनावत से शेख मूसा मोहसिन ने हमें लिखकर भेजा है,
1: और ये मैसेज मिला है हमें आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए और संजीव डाबेराव का।
0: शेरवानी स्कूल गंजडंडवारा से आप हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का।
1: और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है, ये इन्होंने इमेज हम तक भेजी है, और ये मैसेज मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, हैप्पी आनंद और पीयूष कुमार का हम तक पहुंचा है। और ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, देखेगा सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी ने मैसेज भेजा है ऊपरकोट बुलंदशहर से।
0: कुमार हिड़ा सहारनपुर से, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम सद्दाम और इनके सभी परिवार वाले।
1: चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी जिंदल और खुशदिल परिवार के सदस्यों ने ये मैसेज हम तक लिख भेजा है। और ये अगला मैसेज
0: पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव और सत्यम आनंद। और बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से आप हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत।
1: और तो लोकेंद्र, इन्होंने सुनना चाहे अपनी पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम खूबसूरत, आवाज़ें हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की, गीत रचना संजय छैल की है और संगीत जतिन ललित ने दिया है। तो

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: श्रोताओ, 954 किलो हर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट मोबाइल फोन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर इस समय ट्यून किया है आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र, और आप इस समय सुन रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित आपकी पसंद का गीतों का ये कार्यक्रम गीत तुम्हारे। श्रोताओ, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी पसंद का गीत इस कार्यक्रम में आपके नाम के साथ और आपकी पसंद के साथ शामिल हो, तो आप हमें बिल्कुल अभी व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 9457078288, और आपकी पसंद को, आपके फिल्मी गीतों को आपके लिए हम प्रस्तुत करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं। मैं हूं आपका दोस्त लोकेंद्र, और मेरे साथ हैं,
2: जी हाँ, मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र चरणजीत सिंह।
1: तो चरणजीत सिंह जी, अगला गीत सुनने के लिए बहुत सारे हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज और मेरे हाथ में बहुत सारे पत्र हैं, ये पत्र मैं लेना चाहूँगा। आप हैं शासी नगर बीट शहर से, आप हैं किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल, साइरा सबकाल और विशाल सबकाल।
2: जी हाँ, और ये अगला पत्र जो कि हमें मिला है, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट का, और ये अगला पत्र किनका है?
1: ये हैं अमरजीत सोनम कौर, परमजीत धर्मजीत फातिमा कौर, आप हैं जेल रोड जालंधर से।
2: और ये पत्र जो कि हमें मिला है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी ने भी हमें पत्र लिख भेजा है।
1: आप हैं सरगुजा मैन पार्ट से रूबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया, रेशमा, जूट मिल रायगढ़ से डब्लू बेलदार, आदिबा, सरफुद्दीन बेलदार और आसमा बेलदार।
2: और ये अगला पत्र,
1: ये इन्होंने जगह का नाम इसमें नहीं लिखा है, लिखने वाले हैं

0: सलमान अख्तर
1: जी हाँ, ये बसी किरतपुर से जनपद बिजनौर से लिख रहे हैं।
0: लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू का ये हमारे पास पत्र आया है। और ये व्हाट्सएप मैसेज किसका है चंद्र
1: जी? बिहार स्टेट से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। मोहम्मद याकूब आसमा फकीर, मोहम्मद यूसुफ आसमा फकीर, मोहम्मद सलीम आसमा फकीर, मोहम्मद कलीम आसमा फकीर का।
0: और चरणजीत, ये मैसेज आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है इसको?
1: जी हाँ बिल्कुल, जैन मंदिर वली गुली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी का भी मैसेज हम तक पहुंचा है।
0: कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता इसी गीत को सुनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ महासमुंद से आप हैं कलीम आसमा, सलीम आसमा, याकूब और यूसुफ आसमा।
1: जी बिल्कुल, तो आइए श्रोताओं सुनते हैं आपकी पसंद का कार्यक्रम का ये अगला गीत,
0: फिल्म तीसरी कसम से। और गीत को लिखा है मुकेश ने और इस गीत के लिए शब्द रचना है?
1: जी हाँ, शब्द रचना शैलेंद्र की है, बोल मुकेश ने इसका आवाज दी है और संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: इस प्यारे से गीत के साथ आइए श्रोता हूँ, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमारी स्क्रीन पर इस समय लोकेंद्र दिखाई दे रहे हैं उन्हें शामिल कर लेते हैं।
1: बिल्कुल, ये मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद, राहत अली, जाकिर हुसैन और वकील अहमद ने हमें लिख भेजा है गांव भोजपुर तगा सहारनपुर से। आप हैं, ये पत्र मेरे हाथ में है। आपने लिखा है पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब, गांधी चौक, बाड़मेर, राजस्थान से। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, दिनेश चौहान, राम देवरा, बाबूराम चैपाल और खुदाब छणखीला। अगला व्हाट्सएप
0: जी हाँ,
1: मैसेज
0: मैसेज हम तक
1: आप
0: पहुंचा
1: लीजिए
0: है।
1: चरणजीत।
0: नई बस्ती गंज डुंडवारा से यासीन हाशमी, नाजमा हाशमी, तौसीफ हाशमी, तैमूर हाशमी, कलीम हाशमी का भी मैसेज हम तक पहुंचा है। दतरंगी के से लिख रहे हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा और उनके परिवार के सदस्य, सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता अंसारी, नंदिनी, अंजलि ने हमें मैसेज लिख भेजा है कृष्ण की नगरी मथुरा से। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचा है।
1: आप हैं लिखने वाले नाजनी तबस्सुम, अफजल इब्राहिम, मोहम्मद इफ्तखार इब्राहिम, बरका काना से।
0: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है बागपत उत्तर प्रदेश से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया और ढींगिया परिवार के अन्य सदस्य। और ये अगला मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है।
1: आप हैं, आपने लिखा है गांव टोरोवाल से, जिला नवांशहर, पंजाब से। आप हैं गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, प्रशांत थांदी, प्रियंक थांदी और वामिका और वाणी थांदी।
0: और गुजरात के गांधीग्राम से हमें लिख भेजा है मैसेज प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी और इनके परिवार के अन्य सदस्यों ने। एक मैसेज हम तक पहुंचा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार बोड़ाना और इनके परिवार के अन्य सदस्य। सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहिणी, रितु, मुकेश जगताप ने भी मैसेज हमें लिख भेजा है।
1: आप हैं नेहरू चौक पैठण से, डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ, गीता, ओम और सुभाष जाधव का।
0: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है मास्टर खिल्लू, परवेज, इमरान अनाज, नवाज़ शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव का गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। और ये अगला मैसेज कहाँ से है लोकेंद्र?
1: ये लिख भेजा है मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से, आप हैं सोपान तायडे, विजया तायडे और जिंगाम विदर्भ से, बसंत राव भोजने और पीएस निहावकर ने। आप हैं गांव और पोस्ट राहुल नंगली से, आप हैं आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान, प्रिंस राजपूत, कनिष्का चौहान और भव्य चौहान।
0: और ये मैसेज है जिला मुरादाबाद के ग्राम दूल्हापुर से,
1: मुकेश
0: मुकेश कश्यप।
1: कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ये मैसेज हमें लिखकर भेजते हैं।
0: और ये मैसेज हमें मिला है करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजिंदर कौर जौड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत ने।
1: प्रकाश वीर राजपूत हमें मैसेज लिखकर भेजते हैं कबीर नगर लोनी से। कमलेश जयपुरिया आपने लिखा है डोंडी लोहारा बालोद से। रजनी सिंह चौहान, पिंकी और दुर्गा कुमारी ने लिखा है चंद्रनगर से। और लालचंद मिश्रा, कुमकुम मिश्रा हमें लिखते हैं जेल रोड रायगढ़ से।
0: ये अगला मैसेज हमें मिला है फिरदौस काकू, अब्दुल अंसारी, हुमैरा अंसारी, हिफ्जा अंसारी, जिक्रा अंसारी, हबीबा अंसारी, हलीमा अंसारी, हसन चिट्टू ये मैसेज लिख रहे हैं। और ये लिख रहे हैं शाहगंज आगरा से।
1: करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और साथ में सोएब खान भी हैं, ये पत्र हमें लिखकर भेजते हैं। सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी ने भी हमें इसी गीत को सुनने के लिए पत्र लिखकर भेजा है।
0: और अगला मैसेज जो कि हमें प्राप्त हो रहा है खैल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से मैसेज लिख रहे हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू, भाविक सिक्का और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
1: एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अम्भई सिल्लोड से, छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से आप लिखते हैं। अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोटके, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घोटके।
0: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है मैं हूं ना। आवाजें हैं सोनू निगम, अल्ताफ साबरी और हाशिम साबरी। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और
1: संगीत तैयार किया है अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत तुम्हारे
1: जी बिल्कुल
0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से। तो चरणजीत जी, आगे हम अगला मैसेज लेते हैं। आप हैं बलहार शाह से, सूरज लोंढे, प्राची लोंढे और एकलव्य लोंढे।
1: और ये मैसेज हम तक पहुंचा है सरगुजा मैनपाट से, रूबीना थापा, सोनम थापा, सोनिया थापा, रेशम थापा और इनके परिवार के अन्य सदस्य हैं। ये अगला मैसेज जो कि हम तक पहुंचा है दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमनिया जिला गाजीपुर से, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से, विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने भी हमें मैसेज लिख भेजा है, रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब का मैसेज हम तक पहुंचा है।
0: आप हैं जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से, रिजवान खान, आयशा सबिया, अनस और रेहान ने हमें लिखकर भेजा है।
1: फुलोंग निजामाबाद तेलंगाना से हमें मैसेज लिखकर भेज रहे
0: एम ए
1: हैं।
0: वहीद रुमानी और इनके साथी।
1: जी हाँ, और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार, राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश, राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, राहुल, गुरशबद, राहुल ने भी हमें मैसेज लिख भेजा है।
0: सहारनपुर से आप हैं सोनाली, आशा नारंग और सुरेश नारंग।
1: रफत सईद, राशिद, असद, फिरोजा, मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज, इन्होंने मोहल्ला बारादरी, महमूद खान रामपुर से हमें मैसेज लिख भेजा है। और ये अगला मैसेज हम तक पहुंचा है, ये भी देखिएगा, रिपीट मैसेज देखिएगा हमारे श्रोता।
0: बार बार हम निवेदन कर रहे हैं अपने श्रोताओं से कि देखिए, जिन लोगों ने एक बार जिनके मैसेज शामिल हो गए, कृपया वो दोबारा ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लाइन में रहते हैं वो छूट जाते हैं।
1: सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, सर्वद देशमुख, प्रणाली देशमुख, सानवी देशमुख, कल्पना देशमुख ने ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से ये मैसेज हमें भेजा है।
0: गांव कैरो, जिला तरण, पंजाब से गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता शम्मी, रजनी आकाशदीप, अनहद और पोतरा गुरशब्द।
1: ये मैसेज 5 स्टार रेडियो श्रोता संघ जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया ने हमें लिख भेजा है।
0: दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। तो चरणजीत, किस फिल्म का गीत ये हमारे श्रोता सुनना चाह रहे हैं?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये सुनना चाह रहे हैं आनंद फिल्म का गीत, जिसे आवाज़ दी है मुकेश ने, गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत सलिल चौधरी ने दिया है।
2: मैंने

0: आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से फिल्म संगीत का, फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम गीत तुम्हारे। और हमारे पास ये एक और मैसेज पहुंच चुका है डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये का।
1: आप हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती कुमारी।
0: और ये मैसेज प्रभा रानी जटोलिया, राधिका जाधव ने लिखा है, जेल रोड नजीबाबाद से।
1: आप शहर दिल्ली से लिखते हैं, मनमोहन चुग, मीठी चुग और खट्टी
0: खट्टी चुग। और डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, राज अंसारी और फातिमा नाज अंसारी ने भी हमें ये मैसेज लिख भेजा है। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा ने नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हमें मैसेज भेजा है। और ये अगला मैसेज,
1: ओम कुमार, आरती कुमारी, विद्या कुमारी, आराध्या कुमारी, कुमकुम गुड़िया, विजय सुरलकर मोताला महाराष्ट्र से लिखकर भेजते हैं।
0: और रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर ने हमें मैसेज लिख भेजा है
1: जसपुर उत्तराखंड से।
0: और ये अगला मैसेज,
1: आप हैं हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर, मीनाक्षी कान्हा और मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी। आप लिखते हैं बागरी मोहल्ला रटलाई, जिला झालावाड़, राजस्थान से।
0: और ये मैसेज है मालियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन और संयम जैन, मुस्कान जैन और जीवीएम जैन।
1: आपने लिखकर भेजा है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से, उमा सिंह, माहेश्वरी देवी, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी और आरुष शौर्य, दिनेश और इनके परिवार के सभी लोग।
0: ये मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद जैद, मोहम्मद आरिश, जुबिया हुरैन, अक्षा रानी, इंशा अरिबा, अनाबिया आयरा, मोहम्मद जावेद ने हमें मैसेज लिख भेजा है, गांव जहानाबाद नजीबाबाद जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से।
1: आप हैं मारहरा दरवाजा एटा से, नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम, यशप और रसीद अब्बासी, गांव जुझेला कला, थाना शिवाला कला, जनपद बिजनौर से। राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, साइना महविश, मोहम्मद अफान और अदीना नूर।
0: ये मैसेज हम तक पहुंचा है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से। देखिएगा, ये मैसेज भी इन्होंने हमें रिपीट किया है और हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बार बार मैसेज रिपीट ना करें। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हमें मैसेज भेज रहे हैं नारायण खर्चे, ललिता, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति, प्रयाग चौधरी और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
1: ग्राम लोहेडी, जिला महोबा उत्तराखंड, माफ़ कीजिएगा, जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आप हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद, रागनी रिया, रेनू, दिव्यांशी आराधना, रोनिका यादव, चंद्रेश गोहर और सुनील पाठक।
0: और ये

0: मैसेज हम तक पहुंचा है अनिल विनोचा, कनिका अरोड़ा, सहज अरोड़ा, गीत अरोड़ा, इनके परिवार के अन्य सदस्यों का, नगीना जनपद बिजनौर से। और ये भी मैसेज देखिएगा, हमें रिपीट मिल रहे हैं, आज तो रिपीट मैसेज बहुत हैं हमारे पास।
1: किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान और सबीहा अंजुमन खान ने हमें मैसेज लिखकर भेजा है।
0: मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया शोभा, राहुल ज्योति, अतुल पायल, प्रियांश वर्मा, ऋषि वर्मा ने भी मैसेज लिख भेजा है।
1: आप हैं हाशमी परिवार से, आपने पत्र लिखा है। आप हैं सैयद आलम हाशमी, नाज पैलेस, अजमेर शरीफ से।
0: जी हाँ, और ये मैसेज हमें मिला है
1: मोहम्मद आसिफ शेख, बेगम रूमा शेख, माहिरा शेख, नौमान शेख, सुलेमान शेख, शेख मोहम्मद कलीम, बेबी मरियम ने हमें ये मैसेज लिखकर भेजा है। और इन्होंने लिखा है नाला सोपारा मुंबई से।
0: कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा ने मैसेज भेजा है दादरी गेट भिवानी से। और श्रोताओं, ये मैसेज हम पढ़ रहे हैं जो कि हमें प्राप्त हुआ है। लाल कुर्ती रोड कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा का।
1: वीरम गांव से आप हैं प्रमिला प्रदीप और अनुश्री प्रदीप, बुलंदशहर से नरेंद्र कुमार डोम, सरिता बत्रा, करुणा बत्रा, डॉली और सुमन बत्रा, रिंगनी से सुनील कुमार और आशा देवी, चंद्रनगर राजनांद गांव से आप हैं रविशंकर जयपुरिया और प्रभा फरसजू।
0: तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आप ही की पसंद का कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। फिल्म का नाम मेरे देश की धरती, जिसे आवाज़ दी सुखविंदर ने। गीत रचना अजीम शिराजी की है और संगीत विक्रम मोंट्रोस का है।

0: का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, उम्मीद करते हैं आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। तो समय की बाध्यता के चलते हम जिन श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेजेस को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके हैं, तो वे कृपया निराश ना हो, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से। हम उम्मीद करेंगे कि आपने आने वाले कार्यक्रमों में आपके मैसेजेस को हम ज़रूर शामिल करें और आपको अभी की पसंद के गीत सुनवाएं। फिलहाल आज का गीत तुम्हारे कार्यक्रम संपन्न करने की मुझे यानी चरणजीत सिंह
1: और मुझे लोकेंद्र को अनुमति दीजिए।
0: नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनते हैं लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में फिल्म करण अर्जुन का ये गीत। शब्द रचना है इंदीवर की और संगीत राजेश रोशन का है।

अभी आपने लता मंगेशकर और साथियों को सुना फिल्म करण अर्जुन में। श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये गीत फिल्म बाजीगर से। गायक कलाकार हैं आशा भोसले और विनोद राठौर। गीत के लिए शब्द रचना है रानी मलिक की और संगीत है अनु मलिक का।

श्रोताओं, आशा भोसले और विनोद राठौर को अभी आप सुन रहे थे फिल्म बाजीगर में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर। इस गीत के लिए शब्द रचना है असद भोपाली और देव कोहली की। संगीत तैयार किया है राम लक्ष्मण ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ चितपट संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोता।

0: तो मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
0: झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठित रहें और बिखर कर कचरा न बने।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद एकता और संगठित रहने का सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। श्रोताओं, हमें पहला संदेश मिला है कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। लिखते हैं,
0: डॉक्टर कामिल बुल के 24 तारीख को सुने, बेल्जियम में जन्मे कैसे भारत को अपना कर्मभूमि बना लिया, रामचरितमानस पर शोध किया और कामिल बुल के से कामिल बुल के बाबा बन गए। बहुत अच्छा लगा इतनी अच्छी जानकारी और प्रस्तुति के लिए। उमंग टीम को बहुत बहुत बधाई।
1: और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर का।
0: भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा और सुरेंद्र कौर रंधावा जी का।
1: और गणेशवाड़ी कोल्हापुर महाराष्ट्र से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार जी का।
0: पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। एक बार फिर से प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए के अंतर्गत आज की कड़ी। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं भारत के अनूठे मेलों की।
0: ऐसे मेलों की जो प्रयास है समुदायों को उनकी संस्कृति से जोड़ने का। इनके बारे में लोगों को अधिक पता नहीं है, लेकिन वे अपने आप में सचमुच अद्भुत हैं, जीवंत हैं और प्रेरणा देने वाले भी। तो कल हमने चर्चा की थी असम राज्य के जॉनबील मेले की, जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का आज भी प्रचलन है।
1: आज हम चलेंगे एक और सुंदर और मनोरम उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय राज्य नागालैंड और जानेंगे एक और मेले के बारे में। इसे हॉर्नबिल मेले के नाम से जाना जाता है। तो विमलेश जी, अब चर्चा को आगे बढ़ाइए।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, हॉर्नबिल महोत्सव या मेला नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। इसे त्योहारों का त्योहार यानी फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अजीत जी, अब जानते हैं कि ये कब मनाया जाता है?
1: जी विमलेश जी, हॉर्नबिल मेला हर साल 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है।
0: जी,
1: ये कोहिमा के पास किसामा हेरिटेज विलेज में आयोजित किया जाता है। लेकिन विमलेश जी, एक स्वाभाविक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो ये है कि इस उत्सव या मेले का नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा?
0: अजीत जी, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने।
1: जी,
0: इसका जवाब भी उतना ही सुंदर है। हॉर्नबिल एक पक्षी है जो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये जबरदस्त उड़ान भर सकता है। इसके पंख इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब ये उड़ता है तो उसके पंखों की फूं फूं जैसी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है।
1: जी विमलेश जी, पूर्वोत्तर भारत में विशेषकर नागालैंड में इस पक्षी को यानी हॉर्नबिल पक्षी को साहस, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
0: जी, यही वजह है कि नगा परंपराओं में विशेषकर सर के आभूषणों में हॉर्नबिल पक्षी का प्रतिरूप अवश्य दिखाई देता है। आइए अब जानते हैं कि क्या होता है हॉर्नबिल मेले में।
1: श्रोताओं, इस मेले में रंग बिरंगे पारंपरिक नृत्य देखने को मिलते हैं।
0: जी,
1: जिनमें सबसे लोकप्रिय और आकर्षक है युद्ध नृत्य।
0: जी,
1: युद्ध नृत्य में पुरुष योद्धा पारंपरिक हथियार लेकर नृत्य करते हैं। तेज ड्रम की ताल, वॉर क्राई और तालबद्ध पैरों की गति के साथ ये नृत्य होता है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक बहुत विशेष बात तो हम भूल ही गए थे। ये तो बता दें कि इस मेले के दौरान एक बड़ी खास प्रदर्शनी होती है।
0: जी,
1: जिसे मोरुंग कहते हैं।
0: जी,
1: ये मोरुंग होता क्या है?
0: अजीत जी, मोरुंग नागालैंड की जनजातियों का युवा आवास हुआ करता था। ये बांस और लकड़ी से बना हुआ बड़ा सामुदायिक भवन होता था।
1: जी, प्रत्येक गांव में कम से कम एक मोरुंग अवश्य होता था। वहां जनजातीय इतिहास, युद्ध कौशल, वाद्य संगीत और लकड़ी के हस्त कौशल सिखाए जाते थे।
0: जी, यहाँ हस्तशिल्प, हैंडलूम यानी हस्तकरघा, स्थानीय व्यंजन इत्यादि प्रचुरता से मिलते हैं।
1: श्रोताओं, ये उत्सव नागालैंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन है।
0: जी,
1: यहाँ आकर लोग असली नागा जनजातीय जीवन, आतिथ्य और उनकी परंपराओं की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी नागालैंड के बेहद खास मेले हॉर्नबिल उत्सव की।
0: जी,
1: कभी नागालैंड जाएं तो इस मेले का आनंद जरूर लें।
0: जी,
1: तो अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: मोरुंग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मोरुंग किसे कहते हैं? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर।

0: audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश हमें भेज सकते हैं। और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है सुंदरिया।
1: कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में एक प्यारी गाय सुंदरिया की कहानी बताई गई है और उसके माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया है कि पशुओं में भी भावनाएं और संवेदनाएं होती हैं।
2: एक समय की बात है, हरियाणा के एक गांव में एक किसान रहता था। नाम था हीरा सिंह। निर्धनता के कारण बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चलता था। उसके पास एक गाय थी, नाम था सुंदरिया। उस गाय के कारण हीरा सिंह से गांव वालों को बड़ी ईर्ष्या होती थी। निर्धनता का ये हाल था कि हीरा सिंह सुंदरिया के लिए चारा भी नहीं जुटा पाता था। वो भी गाय को बहुत प्यार करता था। वो चाहता था कि किसी प्रकार गाय को अच्छा चारा मिल सके, लेकिन तंगी पीछा नहीं छोड़ती थी। इसलिए कई बार उसके मन में एक विचार आया।
3: अब तो सुंदरिया को पालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। कहां से आएगा उसके लिए चारा? यहां तो परिवार के खाने के लाले पड़े हुए हैं। सोचता हूं उसे किसी धनी किसान को बेच दूं, कम से कम अच्छा चारा तो मिलेगा उसे।
2: लेकिन हीरा सिंह अपने बड़े बेटे जवाहर सिंह से डरता था, क्योंकि उसे सुंदरिया गाय से बहुत लगाव था। जवाहर सिंह सुंदरिया को प्यार से मौसी बुलाता था। समय बीतता गया और आखिर परिवार की दरिद्रता समाप्त करने के लिए हीरा सिंह नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया। वहाँ एक सेठ के यहाँ उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ ने कहा,
4: हीरा सिंह, शहर में आजकल दूध की बड़ी किल्लत हो रही है।
3: जी मालिक, ये बात तो है।
4: पता नहीं जो दूध तुम दुकानों से लाते हो वो ठीक भी है या नहीं। बहुत मिलावट चल रही है। तुम तो हरियाणा के हो, सुना है वहां की गायें बड़ी अच्छी और दुधारू होती हैं। एक काम करो, तुम हमारे लिए किसी अच्छी गाय का प्रबंध कर दो।
3: जी मालिक, कोशिश करता हूं। वैसे एक गाय है मेरी निगाह में।
4: अच्छा,
3: ऐसी कि साक्षात कामधेनु। दूध भी 15 सेर से ज्यादा ही उतरता है और उसके 200 रुपए तक लग चुके हैं।
4: भाई, इतनी अच्छी गाय है तो 10 रुपए अधिक हम दे देंगे। ये लो 100 रुपए, बाकी तुम्हारे आने पर मिल जाएंगे।
3: जी मालिक।
2: दरअसल हीरा सिंह के मन में उसकी प्यारी गाय सुंदरिया ही थी। सोचने लगा, यहाँ आएगी तो अच्छा चारा भी मिलेगा और मैं उसकी सेवा भी कर लूंगा। हीरा सिंह उसी दिन गांव चला गया। जैसे तैसे अपने बेटे जवाहर को समझाया और गाय लेकर दिल्ली आ गया। सेठ जी ने गाय को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। ऐसी स्वस्थ सुंदर गाय उन्होंने पहले न देखी थी। दूसरे दिन सेठ जी ने पास के एक ग्वाले को बुलाया और गाय उसके सुपुर्द कर दी। हीरा सिंह का दिल भरा जा रहा था। उसने सेठ जी से कहा,
3: सेठ जी, गाय की नौकरी पर मुझे ही लगा दीजिए, चाहे पगार कम ही दीजिए।
4: यह नहीं हो सकता हीरा सिंह। भाई, हमें तुम जैसा दूसरा ईमानदार और मेहनती चौकीदार कहां मिलेगा? तुम्हें तो यहीं ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।
2: ग्वाले ने सुंदरिया को ले जाने के लिए पूरा जोर लगा दिया, लेकिन गाय टस से मस नहीं हुई। अपनी भोली आंखों से वो हीरा सिंह को ही देख रही थी, मानो कह रही थी, तुम्हें छोड़कर मैं कहां जाऊं। हीरा सिंह ने गाय को थपथपाया, पुचकारा और बोल उठा,
3: मेरी प्यारी सुंदरिया, अब चली जाओ ना, मैं यही तो हूं तुम्हारे पास। तुम चिंता ना करो।

0: मैं तुम्हें देखने आता रहूंगा मेरी प्यारी सुंदरी।
1: अनमने मन से सुंदरिया चल दी। लेकिन अगले ही दिन कुछ विचित्र हुआ। सेठ जी ने हीरा सिंह को बुलाया।
2: हीरा सिंह, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आज गाय का 5 सेर दूध भी नहीं उतरा। तुम तो कहते थे कि 15 सेर से भी ज्यादा दूध मिलेगा।
0: सेठ जी, कल ही तो मैंने पूरा 15 सेर दूध दुहकर आपको दिया था, भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा?
2: ये बात तो है, लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो कल फिर देखते हैं।
0: जी सेठ जी।
1: लेकिन दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेठ जी को गुस्सा आ गया। बोले,
2: हीरा सिंह, तुमने सचमुच मुझे धोखा दिया है। गाय को ले जाओ और मेरे पैसे वापस करो।
0: लेकिन मालिक, पैसे तो मैं गांव भेज चुका हूँ और उसमें से काफी मकान की मरम्मत में खर्च हो गए। अब पैसे कहाँ से लौटाऊं?
2: तो ठीक है, पैसा मैं तुम्हारी पगार से काट लूंगा।
1: अब रोज रोज यही शिकायत आने लगी। कभी गाय दूध बहुत कम देती, कभी चारे को मुंह तक नहीं लगाती। हाँ, एक बात जरूर थी, जब हीरा सिंह उसे देखने जाता तो बहुत प्रसन्न हो जाती और चारा भी खा लेती। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हीरा सिंह को निहारती रहती, मानो कह रही हो, मुझे वहाँ क्यों भेज दिया। एक रात की बात है, हीरा सिंह अपने कमरे में सो रहा था कि तभी
0: सुंदरिया, तुम? मेरी प्यारी सुंदरिया।
1: वो अपराधी भाव से उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, क्षमा करना, मेरा वहां मन नहीं लगा, इसलिए रस्सी तोड़ कर आई हूँ। मुझे तो तुम्हारे संग ही रहना है। उस मूक गाय की आंखों में वेदना थी। हीरा सिंह भाव विभोर हो उठा। वो सुंदरिया के गले से लिपट कर देर तक सिसकता रहा।
0: अब तू कहीं नहीं जाएगी, हम कहाँ चलेंगे? मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम्हें बेच दिया। लेकिन सुंदरिया, वो तो तुम्हारे भले के लिए ही तो था। लेकिन अब हम साथ रहेंगे। हाँ, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं करूंगा। मैं सुबह ही सेठ जी से बात करूंगा।
2: आओ हीरा सिंह, कुछ बात बनी? गाय कैसी?
0: सेठ जी, मैं गाय को आज ही गांव ले जाऊंगा।
2: लेकिन उसके लिए जो पैसे तुमने लिए हैं, उनका क्या होगा?
0: सेठ जी, मैं उसे चुकाने के लिए मुफ्त में आपकी चाकरी करने के लिए तैयार हूं। रुपए जब चुकता हो जाएं, तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं भी छुट्टी कर लूंगा। सुंदरिया का दुख मुझसे नहीं देखा जाता सेठ जी।
1: इतना कहकर उसने गाय की डोर थाम ली और कहा,
0: सेठ जी, गाय को गांव छोड़कर मैं आपकी सेवा में फिर आ जाऊंगा और रुपए वसूल होने तक मैं आपके यहाँ काम करूंगा। नमस्ते।
1: हीरा सिंह ने गाय को पुचकारा, थपथपाया और चलने लगा। सेठ जी का मन भी भर आया था। कहने लगे,
2: हीरा सिंह, इस प्यारी गैया के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। अरे, तुमसे यहां मुफ्त में काम करवाकर क्या मुझे पाप नहीं लगेगा? मान लो कि मेरे रुपए भी वसूल हो गए। जाओ हीरा सिंह, जाओ।
0: जी सेठ जी।
2: खुशी से जाओ हीरा सिंह, और हाँ, सुंदरिया का खूब ख्याल रखना, और जब कभी भी समय मिले हमसे मिलने जरूर आना।
0: जी, धन्यवाद सेठ जी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सुंदरिया। आशा है कि आपको जरूर ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है मेरा प्यारा दोस्त।
4: नमस्कार श्रोताओं, प्रेरक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है।
5: ये कहानी है पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य मेघालय की। लेकिन कहानी सुनने से पहले आइए लेते हैं मेघालय राज्य की थोड़ी जानकारी। मेघालय शब्द दो शब्दों के मेल या संधि से बना है, मेघ और आलय।
4: मेघ यानी बादल और आलय यानी घर, तो मेघालय का अर्थ हुआ बादलों का घर। साथियों, प्राकृतिक सुंदरता में मेघालय का कोई सानी नहीं है।
5: जी हाँ साथियों, यहाँ जब तब अनायास ही उमड़ते बादल, ऊंचे ऊंचे पर्वत, कल कल करती नदियाँ और हरे भरे जंगल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं।
4: मेघालय की राजधानी है शिलांग। ये कहानी शिलांग की है।
5: यूजीन लगभग 15 वर्ष का एक किशोर है। आज शिलांग शहर के पुराने बाजार में यूजीन चला जा रहा था। उसकी आंखें लगातार दुकानों के साइन बोर्ड्स पर ही टिक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई खास दुकान खोज रहा हो।
6: यही कहीं तो थी वो दुकान, कहाँ है वो? अब ये तो रही वो फूल वालों की दुकान, उसके बाद हाँ वो रही।
5: उसे वो दुकान मिल गई थी। साइन बोर्ड पर एक पिल्ले की सुंदर सी तस्वीर थी और उसके नीचे लिखा था पपीज फॉर सेल।
4: यूजीन को कुत्तों से बहुत लगाव था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो भी एक प्यारा सा कुत्ता पाले जो उसका दोस्त बन सके और उसके साथ खेल सके।
5: बात वास्तव में ये थी कि स्कूल में सहपाठी यूजीन के साथ रहने और खेलने से थोड़ा कतराते थे।
4: कुछ सोचकर वो दुकान में दाखिल हुआ।
6: हाँ, यहाँ से अंदर चलता हूँ। अरे वाह, कितनी सुंदर दुकान है और ले प्यारे प्यारे पपीज भी हैं। आजा आजा।
5: उसने कई बार अपने घर में कहा था कि वो एक प्यारा सा पिल्ला पालना चाहता है, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई थी। किसी पशु को पालना काफी जिम्मेदारी का काम होता है। एक पिल्ले को पालने के लिए यूजीन के माता पिता तैयार नहीं थे।
4: लेकिन अब यूजीन बड़ा हो गया है, अब वो खुद पिल्ले का ध्यान रख सकता है। इसीलिए आखिरकार वो मान ही गए। और आज
5: यूजीन पिल्ला खरीद सकता है अपनी पसंद का। यूजीन सीधा काउंटर पर दुकानदार के पास चला गया और बोला,
6: नमस्ते मैडम।
7: नमस्ते बेटा।
6: मेरा नाम यूजीन है, मैं एक पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे उसका दाम बताएंगी?
7: देखो बेटा यूजीन, हमारे पास तो ढेर सारे पपीज हैं, सभी नस्ल के। लेकिन बेटा ये बताओ, क्या तुम सच में खरीदना चाहते हो?
6: जी बिल्कुल, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं?
7: बेटा बात ये है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा तो है नहीं, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस देखो और चले जाओ?
6: नहीं,
7: क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं, देखने की जिद करते हैं, सारे बिल्ले देखते हैं और अंत में लिए बिना ही चले जाते हैं। इससे हमारा समय बर्बाद होता है ना, तो
6: नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं सच में खरीदूंगा। आप उनके दाम बताइए तो सही।
7: यूजीन, देखो बेटा, सबसे कम दाम के हमारे पास लगभग 2000 रुपए के पिल्ले हैं, फिर 3000 और ऐसे ही। मेरा मतलब नस्ल के हिसाब से और भी महंगे हैं।
6: अच्छा,
7: क्या तुम इतना पैसा दे पाओगे?
6: ओहो, अभी इस समय तो मेरे पास 1500 रुपए ही हैं। अब ये तो मैं आपको अभी तुरंत दे सकता हूँ, बाकी पैसे आपको कल दे सकता हूँ। मैं पापा से बात कर चुका हूँ, वो मुझे मेरी पसंद का पिल्ला लेने के लिए कह रहे थे। आप मुझसे कल तक ले लीजिए।
7: बेटा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। समझो मेरी बात, वो क्या है कि अगर अभी तुम्हें पपी चाहिए तो तुम्हें पूरा पैसा भी अभी ही चुकाना होगा, समझे ना?
6: ठीक है मैडम, पर आप मुझे पपी दिखाइए तो सही, मैं आपको इसका मूल्य चुका दूंगा आज ही शाम तक। अब आया हूं तो पसंद करके ही जाऊंगा। अभी 1500 दूंगा और जब बाकी पैसे लाऊंगा तब मैं आपसे पिल्ला ले लूंगा।
7: ठीक है। शेल्बिलिन, शेल्बिलिन, अरे कहाँ हो भाई?
8: हाँ जी, बताइए।
7: देखो सारे पपीज ले आओ, ग्राहक कब से खड़े हैं, ध्यान रखा करो।
8: हाँ हाँ, अभी लाता है, बस एक मिनट।
4: थोड़ी ही देर में सामने एक छोटा सा दरवाजा खुला और 5-6 प्यारे प्यारे पिल्ले कूं कूं करते हुए सामने आए। वो ऐसे लग रहे थे मानो ऊन के गोले हों। सब के सब बहुत ही प्यारे लग रहे थे।
5: यूजीन ने देखा कि उनमें एक पिल्ला था जो उछल कूद नहीं मचा रहा था। उसके सामने के दोनों पांव तो काम कर रहे थे लेकिन पीछे के दोनों पांव घिसट रहे थे। वो धीरे धीरे घिसटता हुआ सबसे पीछे पीछे आ रहा था।
7: अरे शेल्बिलिन, तुमसे कितनी बार कहा है इसे मत लाया करो, तुम्हें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती क्या? तुम फिर से इस पिल्ले को ले आए, हटाओ इसे।
8: ये तो बहुत शैतान है, पीछे पीछे आ ही जाता है, अभी ले जाता हूँ इसे, चलो शाबाश, वापस चलो।
6: एक मिनट, अब इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चल रहा है? आजा आजा, इधर आ।
7: ये जन से ऐसा ही पैदा हुआ है, सही होता तो इसकी बहुत कीमत होती, अब तो बोझ ही है हमारे लिए।
6: मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, कितनी कीमत होगी इसकी?
7: हैं? अच्छा, समझ गई बेटा, समझ गई, मुझसे मजाक कर रहे हो ना? अरे ये देखो, ये वाला कितना सुंदर है। महंगा तो है लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं इस वाले पिल्ले को खरीदने के लिए।
6: नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे। वो वाला कितने का है?
7: अरे बेटा, कैसी बातें करते हो, ये बेकार है। अरे बिन पैर का पिल्ला, बहुत से लोग आते हैं इस दुकान में, हम तो इसे छुपाई देते हैं।
6: क्या?
7: वैसे भी ये भला किस काम का, कौन खरीदेगा इसे?
6: मैडम, मैं खरीदूंगा इसे, मैं ऐसे ही खरीदूंगा।
7: मगर क्यों? तुम्हें पता है ये तुम्हारे साथ खेल नहीं पाएगा, तुम आखिर इसे क्यों खरीदना चाहते हो?
6: मुझे यही चाहिए।
7: देखो बेटा, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम अभी जोश जोश में ऐसा कह रहे हो, शायद इसकी हालत पर तुम्हें दया आ रही होगी, है ना?
6: नहीं।
7: लेकिन सोचो, कुछ ही दिनों में अगर ये बीमार हो गया तो तुम इसे सड़कों पर या कहीं और छोड़ दोगे। और देखो, अगर ऐसा हुआ तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा।
6: जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ,

0: मैं इसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा, ये अपने इन्हीं कमजोर पैरों पर चलेगा, चलेगा ना मेरे साथ, बनेगा ना मेरा दोस्त। अल्ले।
1: अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो फिर इसे यूं ही ले जाओ।
0: यूं ही?
1: हाँ, अब इसकी भला क्या कीमत?
0: क्या मतलब? अगर इसकी टांगे खराब हैं, तो क्या इसकी कोई कीमत नहीं है?
1: अच्छा अच्छा, समझी समझी, स्वाभिमानी हो, मुफ्त में कुछ नहीं लोगे, अच्छी बात है। तो ऐसा करो, इसके तुम बस 50 रुपए दे दो, खुश?
0: 50 रुपए क्यों? ये तो इसका अपमान हुआ ना। इस नस्ल के दूसरे पिल्लों की जितनी कीमत है वो ही इसकी भी है। मैं आपको इसके पूरे पैसे दूंगा।
1: पर बेटा ये तो
0: बताइए ना, इसकी नस्ल की कितनी कीमत है?
1: बहुत महंगी है, अब 2000 रुपए, मेरा मतलब है कि।
0: तो यही इसकी कीमत भी है। अब ये रहे 1500 रुपए, और अब ये मेरा हुआ, मेरा दोस्त है ना, है ना मेरा दोस्त, तू यूजीन का दोस्त, तुम्हें शाम तक ले जाऊंगा दोस्त।
1: देखो बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं और जानवरों के लिए तुम्हारे इस प्यार का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन बेटा क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुमने इस पपी में ऐसा क्या देखा कि तुमने इसको ही चुना, वो भी इतनी कीमत देकर? आखिर क्यों बेटा?
0: आप पूछते हैं क्यों? ये देखिए मैडम, ये देखिए।
2: यूजीन नीचे झुका और उसने धीरे धीरे अपनी पैंट ऊपर उठाई। दुकानदार ने देखा यूजीन का बायां पांव घुटने से कटा हुआ था, नीचे का आधा पैर कृत्रिम था, वहां धातु का पांव लगा हुआ था जिसके सहारे वो थोड़ा मुश्किल से लेकिन बिना सहारे के चल सकता था।
1: अरे बेटा, ये तुम्हारा?
0: जी मैडम, आधा पैर नहीं है मेरा। अब बताएं मेरी क्या कीमत है आप जैसे लोगों के बीच? मैं भी इस पपी की तरह कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, तो हो गया ना मैं भी बेकार बोझ।
1: अरे अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें करते हो, वो तो मैं बस।
0: मैं भी मौका मिलते ही सबसे खुलना मिलना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी ये कटी टांग ने मुझे सबके बराबर नहीं होने दिया, और 5 साल की उम्र से जानता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है
1: बेटा।
0: इसलिए मुझे लगता है कि ये पापी मुझे मेरी कटी टांग से नहीं पहचानेगा, मुझे मेरी दोस्ती और मेरे प्यार से पहचानेगा। मैं नहीं चाहता ये अभी से मेरी तरह आजादी को, प्यार को तरसे। आज से, अभी से ये मेरा हुआ, आजा मेरा दोस्त, आजा।
1: यूजीन बेटा, इस पपी को तुमसे बेहतर भला कौन समझेगा, और शायद ये किसी और के साथ उतना प्यार भी ना पा सके जो इसका अधिकार है। इसे तुम्हें सौंपकर मैं भी निश्चिंत रहूंगी। ये लो, ये अब तुम्हारा हुआ, लो।
0: आजा।
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा प्यारा दोस्त, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
6: श्रोता अभी सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग और आज रात्रि 8 बजे संसद समीक्षा। ये सभी कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज शाम 5 बजे मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम के अंतर्गत श्रोता सुनेंगे किसानों की आय दुगनी करने हेतु जानकारी, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कृषि मंडी यानी ई नाम योजना के विषय में जानकारी। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा आज शाम 5:15 पर। इसमें आज क्रम रहेंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट, लव स्टोरीज और बूस्टर्स। किसान भाइयों के दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में आज शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे चर्चा संतुलित दाना मिश्रण प्रधानमंत्री संपदा योजना के विषय में। और इस कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे भेंट वार्ता, नए फलदार वृक्षों की रोपाई करते समय सावधानियां। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आज शाम 6:45 पर आप सुनेंगे वार्ता भारतीय संविधान में लोक कल्याण के तत्व, वार्ताकार रहेंगे डॉक्टर अमित कुमार सिंह। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आज संध्या 7:20 पर कानून की बात, ये कार्यक्रम आज संध्या 7:32 पर आप हमारे लखनऊ केंद्र से सुन सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में आज संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे शब्द, कलाकार रहेंगे भाई हरजिंदर सिंह। आपसे कुछ ही देर बाद दोपहर 12:05 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित रवि शंकर से सितार वादन, आप प्रस्तुत करेंगे राग मधुवंती। घर संसार कार्यक्रम में आज दोपहर 1:15 पर क्रम रहेगा महारा घर आंगन भोर से सांझ तक। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा प्रकृति के करीब रहने के फायदे और भारतीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई के उपलक्ष में। आज दोपहर 1:45 पर लोकधारा कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुन सकेंगे कुमाऊनी लोकगीत, कलाकार रहेंगे भानुराम सुकोटी। हमारे आज के फिल्म संगीत के कार्यक्रमों का आनंद हमारे श्रोता ले सकेंगे। आज दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम मिड डे मेलोडी, दोपहर 2:30 पर व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम संदेश.com में कार्यक्रम छाया गीत के अंतर्गत आज शाम 6:55 पर गीत संध्या कार्यक्रम रात्रि 8 बजे और रात्रि 8:30 कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:05 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं पंडित रविशंकर का सितार वादन, आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मधुवंती। विलंबित एवं द्रुत गत 3 ताल में रचना निबद्ध है।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे पंडित रविशंकर का सितार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मधुवंती। रचना विलंबित और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध थी। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां दे दें। आज रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आज रात्रि 8 बजे कार्यक्रम संसद समीक्षा और रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग हमारे श्रोता सुन सकेंगे। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कानून की बात, ये कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे आज संध्या 7:32 पर। इस कार्यक्रम को हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। विविधा कार्यक्रम में आज शाम 6:45 पर हमारे श्रोता सुनेंगे डॉक्टर अमित कुमार सिंह की वार्ता, भारतीय संविधान में लोक कल्याण के तत्व। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी प्रसारित किया जाएगा आज शाम 5:15 पर। इसमें आज के क्रम होंगे बूझो तो जाने, कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट, लव स्टोरीज और बूस्टर्स। कृषि जगत कार्यक्रम में आज शाम 6:05 पर किसान भाई सुनेंगे भेंट वार्ता, नए फलदार वृक्षों की रोपाई करते समय सावधानियां। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ जानकारियां। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मिड डे मेलोडी। श्रोताओं स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी में। कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत फिल्म अंदाज से, उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में। शब्द रचना समीर की है और संगीत नदीम सरवण का है।

0: अभी आपने उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वर में फिल्म अंदाज का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनते हैं ये गीत जिसको फिल्म बादल से लिया है। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति। शब्द रचना है समीर की और संगीत है अनु मलिक का।

0: अभी आपने सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को सुना फिल्म बादल में। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRVP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
0: श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म तुम्बिन का ये गीत अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के युगल स्वर में। शब्द रचना है फैज अहमद फैज की और संगीत निखिल विनय का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं अलका याग्निक और अभिजीत के युगल स्वर में फिल्म राज का ये गीत। शब्द रचना समीर की है और संगीत नदीम श्रवण का है।

अभी आपने फिल्म राज का ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप कार्यक्रम मिड डे मेलोडी सुन रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक और गीत अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में, फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं से। गीत समीर का है और संगीत अनु मलिक का।

0: अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू के युगल स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये गीत हम आपके दिल में रहते हैं इस फिल्म से। इसी के साथ मिड डे मेलोडी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजे हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा, पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को बधाई दी।

0: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उपलब्धि, पर्यावरण अनुकूल परिवहन और मानवता के हित में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग की दिशा में भारत की प्रगति को और मजबूत करेगी। इसके बाद सभापति ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन को स्थगित कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार में आईएनएस कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत आईएनएस मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। आईएनएस मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध पोतों में से दूसरा युद्ध पोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
1: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैव कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने स्वतः

0: आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की। बैठक के दौरान उन्होंने हिंद प्रशांत पर आसियान के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए क्षेत्रीय चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया। समुद्री और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों तथा आपात कार्रवाई जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। तीर्थयात्रियों को यात्रा फिर शुरू होने के संबंध में आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेने की सलाह दी गई है। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. following opposition protests over various issues, including the NEET paper leak case. When the Lok Sabha reassembled after the first adjournment at 12 noon, the opposition was on the feet protesting on the paper leak issue. Speaker Om Birla urged the opposition to cooperate for smooth functioning of the House. Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that the government is fully prepared for a discussion on the NEET paper leak issue. He stated that the government is ready for discussion since day one. The minister said any discussion in the House must be conducted under established rules and requires proper arrangements. He requested floor leaders of all parties for the duration and the rule under which the discussion will be held. Mr. Rijiju emphasized that the government wants a meaningful and constructive discussion involving all sides, keeping in mind the future of the youth of the country. K.C. Venugopal of the Congress and

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल रियासती काबीना की मीटिंग में 18 तजावीज को मंजूरी दी गई। काबीना की मीटिंग के बाद फैसलों का इंकशाफ करते हुए वजीर खजाना और पार्लिमानी अमूर के वजीर सुरेश खन्ना ने कहा कि काबीना ने विंध्या एक्सप्रेसवे को मंजूरी दे दी है। ये 333 किलोमीटर लंबा होगा, जो प्रयागराज से शुरू होकर भदोई से मिर्जापुर के रास्ते सोनभद्र जाएगा। इस पर 26,315 करोड़ रूपये लागत आएगी। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी स्कीम के तहत ग्रेजुएट तालिबात को मुफ्त स्कूटर फराहम किए जाने के बारे में रियासत के आला तालीम के वजीर योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस स्कीम से इन लोगों को फायदा पहुंचेगा जिनकी खानदानी आमदनी की हद सालाना 12 लाख रुपए से कम है। आला तालीम के वजीर ने कहा कि इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाली तालिबात के लिए ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना लाजमी होगा। यह कदम आला तालीम में लड़कियों की शराकतदारी बढ़ाने और ड्रॉप आउट की शरह को कम करने के लिए उठाया गया है। हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
1: योजना के तहत सरकार न केवल स्कूटर बल्कि उसका बीमा, पंजीकरण, हेलमेट, आवश्यक सहायक उपकरण और 4 लीटर पेट्रोल भी मुहैया कराएगी। दिव्यांग छात्राओं, शहीदों की बेटियों और गरीब परिवारों की बेटियों के लिए आय सीमा की शर्त में छूट भी दी जाएगी। राज्य सरकार का कहना है कि ये योजना उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाएगी और खासतौर पर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों की छात्राओं के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक पहुँचना आसान बनाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसके अलावा रियासती काबीना ने उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बस बेड़े के लिए 250

0: नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी जैसी तजावीज को मंजूरी दे दी। आग और हंगामी खिदमात को मजीद मौसर बनाने के लिए 25,78,00,000 रुपए की तजावीज और यूपी आउटसोर्स सर्विसेज कॉरपोरेशन को 20,00,00,000 रुपए के बिला सूद कर्ज की फराहमी के लिए तजावीज की भी मंजूरी दी गई। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल श्रावस्ती में 396,00,00,000 रुपए से ज्यादा के 83 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में श्रावस्ती, जो कि पुरजोश इजला में से एक है, तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। कल ही वजीर आला ने बहराइच के महसी और नानपारा असेंबली हल्कों के लिए 352,00,00,000 रुपए से ज्यादा के 70 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि रियासत ने गुज़िश्ता 9 सालों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में डबल इंजन वाली हुकूमत के आने के बाद तरक्याती कामों और तरक्की के जरिए एक नई शिनाख्त हासिल की है।
1: जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज अयोध्या में एक अहम मीटिंग करेगा। भगवान श्री राम लला मंदिर के चढ़ावे से मुतल्लिक जारी तनाजों के दरमियान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मीटिंग के दौरान जनरल सेक्रेटरी के ओहदे और ट्रस्टी के 3 खाली ओहदों पर गौर करेगा। राम मंदिर के पहले सीईओ के इंतखाब के अमल को भी हतमी शक्ल दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी आज रियासत भर के तमाम 403 असेंबली हलकों में एक साथ बूथ कॉन्फ्रेंसों का इनकाद कर रही है। इस तकरीब से बीजेपी की तंजीमी ताकत में एक नई जहत शामिल होने की उम्मीद है। बीजेपी के पास रियासत में कुल 1,77,516 बूथ हैं। इन तमाम बूथों पर बैक वक्त कॉन्फ्रेंसों का इनकाद करके यूपी बीजेपी एक रिकॉर्ड कायम करने वाली है। इस मौके पर यूपी बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी लहरपुर सीतापुर में, बरेली में होने वाली कॉन्फ्रेंस में नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य शिरकत करेंगे, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, लखनऊ में होने वाली कॉन्फ्रेंस की कयादत वजीर तवानाई अरविंद कुमार शर्मा करेंगे। ये जामे प्रोग्राम पार्टी की जमीनी सतह पर तैयारियों को मजबूत बनाने और आइंदा इंतखाबी हिकमत अमली को बाइख्तियार बनाने का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम की वजह से श्री अमरनाथ यात्रा और माता वैष्णो देवी यात्रा चौथे दिन भी शुरू नहीं हो सकी। इंतजामिया ने इन जायरीन को हफ्ते की शाम को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की खराब मौसम की पेशगोई के पेश नजर रोक दिया था। और राजधानी लखनऊ समेत रियासत के कई जिला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश की वजह से रियासत में कई नदियों की सतहयाब में इजाफा हुआ है। शारदा नदी पलियाकला लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाराबंकी में जहां घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब है, वहीं पीलीभीत में दरियाए शारदा के पानी की सतह भी उत्तराखंड के पहाड़ों में मुसलसल बारिश की वजह से काफी बढ़ गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर संसार।

राम राम श्रोता बहनों, और स्वागत तमसे भी का, और आज थारे साथ थारी बहन अंजना। और बताओ बहनों, सब राजी खुशी, थारे घर परिवार है सब कुशल मंगल? और रही बात मारी तो बहनों, हम भी एकदम चौके हैं और थारे से बतियाए रहे हैं। और तुम सभी जानो कि इस समय बरसात का मौसम है, बारिश हो जा तो गर्मी में थोड़ी राहत मिल जा और मन को खूब भावे, पर बारिश ना हो तो उमस भी खूब होवे है इस समय, जो हमारे को खूब परेशान करे है। तो सावधानी तो बहनों जरूरी है। और गांव की बात कर ले तो गांव में हरियाली खूब मिले है, या यूं कह दे कि हमारी ग्रामीण बहनें एकदम प्रकृति के करीब रह हैं, तो गलत ना ही होगा, क्योंकि प्रकृति के बीच रह करके आनंद भी खूब मिले हैं, वो शायद कहीं ना मिलता, क्योंकि ये प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। सुबह की ताजी हवा, पेड़ पौधों की हरियाली, पक्षियों की चहचहाट और खुले आसमान के नीचे कुछ पल बिताना हमारे मन को खूब सुकून देवे है, तनाव और चिंता भी छुमंतर हो जावे, मन एकदम शांत, और साथ ही हमारी प्रकृति शारीरिक रूप से भी सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करे है। सुबह शाम हरी घास पर टहलना, खुले वातावरण के बीच समय बिताना शरीर के लिए बहनों खूब फायदेमंद होता है। ये प्रकृति हमें केवल देती ही ना, बल्कि हमें बहुत कुछ सिखावे भी है। अब देखो ना, हमारे पेड़ पौधे बिना स्वार्थ के फल फूल साग सब्जी सब देवे हैं, नदियां निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देवे हैं, जो ऋतुओं को भी बदलती हैं, क्योंकि भाई देखो, जब पेड़ पौधे हैं तो हमारी ऋतुएं समय पर अपने में परिवर्तन कर ले हैं, और ऋतुओं का बदलाव हमें जीवन में परिवर्तन करने को स्वीकार भी करना सिखावे है। इसीलिए बहनों, हमें व्यस्त जीवन से प्रकृति के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है और इस समय हमारी बहनें अपने घर के आसपास पौधे लगाकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बना सके हैं। तो श्रोता बहनों, प्रकृति हमें यही संदेश देवे है कि प्रकृति से जुड़ाव केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन में शांति, संतुलन और अच्छा सोच भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होवेगा, और अच्छा सब कुछ होवेगा तो हमारा घर परिवार, हमारा मन, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो बहनों, जरूर इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए अच्छा अच्छा सोचें और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगावें और अपने वातावरण को सुंदर और मनोरम बना लें। और वैसे ही बहनों, जब हम ग्रामीण जीवन की दिनचर्या की बात करें तो हमारा जीवन तो प्रकृति के इतने करीब है कि बस हम जानते हैं कि सब कुछ अच्छा है, और सब जाने भी हैं हमारी ग्रामीण बहनें कि कब क्या कौन सा पौधा रोपना है, वो सब जाने हैं। सही समय पर यदि हमारी बहनें सही पौधे रोपें, भाई उन्हें पता होगा कि किस समय कौन सा पौधा रोपना सही रहेगा, कौन से पेड़ पौधे हमें फल किस समय देंगे, कौन सी सब्जी हमें किस समय मिलेगी, तो इस तरह से वो पौधे अगर रोपें, साथ ही जो लंबे समय तक हमें फल दे वो पौधे रोपें, क्योंकि बरसात का मौसम है तो सच हमारा जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो मनोरम बनता चला जाएगा और हम आने वाली पीढ़ी को भी बहुत कुछ दे पाएंगे। इसलिए बहनों, इस बरसात के मौसम में अपने आप को और अपनी पीढ़ी को फायदा पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक फल पौधे रोपें और अपने जीवन को सफल बना लें। और अब सुनने में कुछ जरूरी संदेश।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: इस संदेशों के बाद एक बार फिर स्वागत कार्यक्रम घर संसार है। बहनों तुम सभी जानो कि आज है माह का चौथा बुधवार और आज क्रम रहे हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक जो दैनिक दिनचर्या पर आधारित हो। और इस कार्यक्रम में हम अपनी श्रोता बहनों के बीच से ही किसी एक श्रोता बहन को आमंत्रित कर रहे हैं। तो बहनों आज हमने आमंत्रित किया है बड़िया कोटद्वार से वीरेंद्र कौर को। तो आइए जानते हैं उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में और आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारी बहन तनप्रीत कौर।
1: आप में से ही एक श्रोता बहन को आज हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियोज में हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक के क्रम में। तो चलिए जानते हैं उनसे उनका परिचय। आप बताइए आपका क्या नाम है?
2: वरिंदर कौर मैम।
1: वरिंदर, वरिंदर आप कहाँ से आई हैं?
2: हम बढ़िया से आए हैं।
1: आपके घर परिवार में कौन कौन है वरिंदर?
2: मेरे घर परिवार में मेरी सास जी हैं, ससुर जी हैं और मेरे हस्बैंड हैं, दो बच्चे हैं।
1: दो बच्चे हैं?
2: हाँ जी।
1: कितने बड़े हैं आपके बच्चे?
2: बच्चे एक 13 साल की बेटी है और 9 साल का बेटा है।
1: वो पढ़ते हैं बच्चे?
2: हाँ जी, बढ़िया में पढ़ते हैं, क्रिजंती स्कूल में।
1: तो आपके घर में आपने बताया कि सास ससुर हैं।
2: हाँ
1: तो
2: जी।
1: आप संयुक्त परिवार में रहती हैं?
2: हाँ जी।
1: तो आपको कैसा लगता है संयुक्त परिवार
2: बहुत
1: में रहकर?
2: अच्छा लगता है, जैसे मतलब बहुत बड़ों का सिर पे हाथ रहता है, कहीं भी जाना हो तो कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, घर में रह सकते हैं।
1: तो आपको अच्छा लगता है कि आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं और उनकी छांव में रहना, यानी कि देखिए बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो एक पेड़ की तरह होते
2: हाँ
1: हैं,
2: जी। हाँ
1: तो
2: जी।
1: उनकी जो छांव होती है वो बहुत ही ठंडी होती है।
2: हाँ जी।
1: फल तो नहीं देते लेकिन उनकी जो छांव होती है बहुत
2: बहुत
1: ठंडी होती
2: ठंडी
1: है। तो
2: होती।
1: इससे अगर घर में हमारे बड़े बुजुर्ग हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं,
2: हाँ जी।
1: क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बड़े बुजुर्गों से सीखने को मिलती हैं।
2: हाँ जी।
1: क्या आपने पशु भी पाल रखे हैं?
2: हाँ जी, पशु भी पाले हुए हैं।
1: अच्छा, कितने पशु हैं आपके पास?
2: हमारे पास 4 गायें हैं, 2 भैंस हैं।
1: 4 गायें हैं और
2: दो
1: दो
2: दो
1: भैंसे हैं।
2: हाँ जी।
1: तो
2: हाँ
1: काफी दूध हो
2: जी।
1: जाता
2: हाँ
1: होगा,
2: जी, दूध
1: तो
2: काफी है।
1: दूध सारा घर में ही आप
2: जितना
1: इस्तेमाल करते हो?
2: हमें घर के लिए चाहिए होता है उतना रख लेते हैं, बाकी दे देते हैं।
1: अच्छा, बाकी बेच देते हो?
2: हाँ जी।
1: सारा दूध बेच देते हो या फिर कुछ बनाते भी हो उससे? कि जैसे अब घर में आजकल तो लोग बहुत सारी मिठाइयां बनाने लगे
2: हाँ
1: और
2: जी।
1: उससे हम घी भी निकाल सकते
2: घी,
1: हैं।
2: पनीर, मतलब सब कुछ घर का ही बना हुआ, खुद बनाते हैं हम।
1: अच्छा,
2: हाँ जी।
1: घी को पनीर को इस्तेमाल करते हो घर पे ही या
2: हाँ
1: फिर
2: जी।
1: बेच देते
2: नहीं
1: हो?
2: नहीं घर के लिए ही।
1: घर के
2: हाँ
1: लिए।
2: जी, खुद अपने आप खाने के लिए, मतलब
1: अच्छा, घी आप बेचते
2: नहीं
1: नहीं?
2: बेचते नहीं है, खाने के लिए।
1: अच्छा, तो अच्छी बात है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपने पशु पाल रखे हैं और उनकी सेवा मतलब उनका काम सब कौन करता है घर में?
2: काम सारा मेरे हस्बैंड ही करते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ जी।
1: तो आप उनके साथ उनका हाथ नहीं बटाती?
2: थोड़ा बहुत कभी कभी कभी कर लेते हैं, नहीं तो वैसे खुद ही करते हैं, अपने आप ही
1: जैसे
2: करते
1: उनको
2: हैं।
1: नहलाना धुलाना
2: नहीं नहीं वो ही करते
1: चारा
2: हैं।
1: डालना,
2: नहीं वो ही
1: बहुत
2: कर
1: सारे काम होते हैं पशुओं के तो।
2: हाँ जी, वो खुद ही करते हैं, हम नहीं करते।
1: अच्छा,
2: हाँ जी।
1: लेकिन आपको पता तो होगा कि कैसे किया जाता है?
2: हाँ जी, वैसे पता है, जैसे कभी कहीं गए हुए हैं फिर हम कर लेते हैं, वैसे नहीं करते।
1: अच्छा, तो
2: अगर
1: सब
2: घर,
1: जानती हैं आप लेकिन कि
2: हाँ
1: उन्हें कैसे
2: जी,
1: नहलाना धुलाना
2: कैसे
1: है,
2: कैसे करना है। हाँ
1: क्या
2: जी,
1: उन्हें देना है।
2: देना है। हाँ जी।
1: जैसे कभी कोई पशु बीमार हो गया तो उसका उसके लिए क्या करते हैं?
2: उसके लिए इलाज डॉक्टर को फोन कर देते हैं।
1: अच्छा,
2: हाँ जी।
1: कुछ घरेलू उपचार भी किए जा सकते हैं? जैसे अगर हमारा कोई पशु बीमार हो जाता है तो कुछ घरेलू उपचार भी किए जाते हैं?
2: वैसे तो डॉक्टर को ही बुलाते हैं, घरेलू उपचार तो नहीं करते।
1: तो इस पशुओं का जो चारा वारा है वो सब खेतों से ही आ जाता
2: हाँ
1: होगा?
2: जी, हमारे खुद के ही खेत हैं, खुद खुद ही उगाते हैं, खुद ही ले आते हैं।
1: खेतों में जाती हो आप,
2: हाँ जी।
1: खेती बाड़ी करना जानती हो?
2: हाँ जी।
1: खेत में आजकल क्या क्या उगा रखा है आपने?
2: आज तो वैसे अब तो धान है।
1: अच्छा,
2: हाँ जी, धान की फसल है। तो उड़द है, जैसे गन्ना भी है, और मक्का, बाजरा, ये तो पशुओं का चारा है। मक्का और चारा, ये पशुओं का चारा है।
1: अच्छा, तो और क्या क्या चीजें उगाते हो आप?
2: इस मौसम में तो फिलहाल यही,
1: तो कब जाती हो आप खेतों में?
2: जैसे घर का सारा काम निपटा के सुबह ही चले जाते हैं, एक चक्कर लगाते हैं बस।
1: अच्छा,
2: हाँ
1: थोड़ी
2: जी।
1: देर के लिए खेतों में जाते हो,
2: हाँ जी, थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
1: मतलब खेती बाड़ी भी आप जानती हो,
2: हाँ जी।
1: लेकिन यह है कि सब काम जो है वो आपके पति कर लेते हैं
2: हाँ
1: और
2: जी,
1: आप उनका थोड़ा हाथ बटा देती हो
2: हाथ
1: साथ
2: बटा
1: पे।
2: देते हैं थोड़ा।
1: और घर में जैसे बच्चे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद आपका क्या काम रहता है, क्या करती हो?
2: उसके बाद बस घर का सारा काम करके फिर मैं स्टिचिंग करती हूँ, मतलब कपड़े सिलती हूँ।
1: अच्छा, आपको कपड़े सिलना आता है?
2: हाँ जी।
1: कपड़े सिलने, क्या क्या सिल लेती हो वरिंदर?
2: बस सूट, जैसे कोई ड्रेस वगैरह बस।
1: अच्छा, सूट सिल लेती हो?
2: हाँ जी।
1: अच्छा, ड्रेस सिल लेती हो, बच्चों के कपड़े सिल लेती हो?
2: हाँ जी। हाँ
1: अच्छा,
2: जी।
1: तो अच्छी बात है, कोई हुनर होना चाहिए और हुनर को अगर हम अपना काम बना ले तो वो बहुत बढ़िया होता है। तो अगर अपने लिए सीती हो या कोई जैसे दे गया तो तब भी सिल लिए?
2: डेली भी नहीं सिलती, जैसे अपने सिल ले फिर कोई दे गया उसके सिल दिए बस।
1: तो अच्छी बात है, चलिए कि इससे एक आमदनी भी हो जाती है और अपने घर का भी काम हो गया, और अगर हम फ्री बैठे हैं अगर हम तो हम अपना कपड़े सिल लें तो इससे अच्छी बात नहीं है। अपना हुनर है अपने हाथ में तो बढ़िया है।
2: हाँ जी।
1: और उसके बाद जैसे तुमने अपना सारा घर का काम निपटा लिया, उसके बाद फिर सिलाई कढ़ाई भी कर ली जो भी, तो फिर शाम के समय में क्या करती हो? बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं
2: फिर
1: क्या दिनचर्या रहती है तुम्हारी?
2: फिर मैं अपने बच्चों को कुछ पढ़ाती हूँ, उनका काम देखती हूँ। मेरा बेटा जो है वो छोटा है, उसे समझ नहीं आती मतलब पढ़ाई में कुछ, उसको याद करवाने में मदद कर देती हूँ।
1: अच्छा,
2: हाँ जी,
1: पढ़ा लेती हो।
2: हाँ जी।
1: कहाँ तक पढ़ी हो वरिंदर आप?
2: मैं 10th तक ही पढ़ी हूँ।
1: 10th तक पढ़े हो?
2: हाँ
1: जी। दसवीं क्लास करी है तुमने?
2: हाँ जी।
1: अच्छा, थोड़ा बहुत पढ़ा लेती हो बच्चों?
2: हाँ जी,
1: को
2: बेटी तो पढ़ लेती है, बेटी 6th क्लास में है वो तो पढ़ लेती है, बेटे से नहीं पढ़ा जाता, उसको लेके बैठना पड़ता है मतलब
1: पढ़ाती
2: पढ़ाने
1: हो आप?
2: पड़ता है उसे।
1: तो अच्छी बात है, देखिए बच्चों को पढ़ाना फिर उन्हें देखना। जैसे आपको कभी ये नहीं हुआ कि मैं आगे पढ़ूं वरिंदर, कि पढ़ना चाहिए था मुझे?
2: हुआ था दीदी, वैसे हमारे घर का थोड़ा माहौल वैसा था, उन्होंने पढ़ने के लिए ज्यादा आगे नहीं,
1: क्यों, क्या माहौल क्या नहीं था?
2: जैसे गांव में बड़ी दूर घर था मतलब डेरे पे रहते थे।
1: अच्छा।
2: हाँ जी, आने जाने की सुविधा नहीं थी।
1: अच्छा।
2: हाँ जी।
1: तो मतलब इसलिए आप आगे नहीं पढ़
2: आगे
1: पाई?
2: नहीं पढ़, जब टाइम
1: अब
2: निकल
1: नहीं लगता
2: गया।
1: कभी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए था?
2: नहीं नहीं अभी तो मैम टाइम निकल गया।
1: नहीं ऐसा कुछ नहीं होता वरिंदर, देखिए पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अब तो गांव गांव में हर जगह पढ़ाई मुफ्त में दी जाती है, हर जगह गांव गांव में पढ़ाया जाता है, फीस भी कुछ नहीं है,
2: हाँ
1: लेकिन
2: जी।
1: पढ़ना चाहिए।
2: हाँ जी।
1: अगर तुम्हारा मन है तो तुम पढ़ सकती हो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम आगे नहीं पढ़ सकती।
2: हाँ जी।
1: तुम्हारा कभी मन हुआ कि मुझे कुछ और करना चाहिए था अगर मैं नहीं पढ़ पाई? क्या हॉबी है तुम, क्या करना चाहती हो, क्या अच्छा लगता है तुम्हें?
2: बस मुझे तो बस अब तो शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, अब तो बस यही है कि सिलाई ही है, बस यही कर लें वही ठीक है।
1: समय देख के तुम इस काम को भी आगे बढ़ा सकती हो,
2: हाँ जी। हाँ जी।
1: और जिससे कि आमदनी में भी, देखिए पति हमारे कमा रहे हैं लेकिन हमें उनकी आमदनी में हमें भी थोड़ा
2: हाथ बटाना
1: हाथ
2: चाहिए।
1: बटाना चाहिए ताकि
2: जी।
1: हम आगे बढ़ सकें। देखिए आजकल पैसा एक हर इंसान की जरूरत है,
2: हाँ जी। हाँ
1: तो
2: जी।
1: इससे हम अपने उनके भी साथ हाथ बटाकर आगे बढ़ सकते हैं।
2: हाँ जी।
1: जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं,
2: हाँ जी।
1: माता पिता हैं, सास ससुर हैं,
2: हाँ,
1: ठीक है,
2: 60 या 65 के होंगे।
1: तो
2: हाँ जी।
1: उनकी आप सेवा करते हो,
2: हाँ जी।
1: उनके साथ कैसे

0: कुछ खाने पीने के लिए, उनकी दवाई का ध्यान रखना।
1: ये सब चीजें आप देखती
0: हाँ
1: होंगी।
0: जी
1: बच्चे जब आपके स्कूल से आ जाते हैं दोपहर को,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: उसके बाद क्या दिनचर्या रहती है आपकी?
0: उसके बाद कुछ नहीं, बस उन्हें पढ़ा लेती हूँ। जब वो स्कूल से आ जाते हैं तो खाना पीना खाते हैं, तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठते हैं, खेलते हैं। उसके बाद फिर मैं उन्हें ट्यूशन के लिए भेजती हूँ। शाम के टाइम 5 बजे ट्यूशन जाते हैं, उन्हें ट्यूशन भेजती हूँ। फिर ट्यूशन से आ जाते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर खाना खाकर फिर सो जाते हैं।
1: खाना सारा घर का आप खुद ही बनाते हो?
0: हाँ जी खुद ही बनाते
1: अच्छा,
0: हैं।
1: तीनों टाइम आप ही बनाते हो
0: हाँ
1: खाना।
0: जी
1: और कपड़े धोना, घर की साफ सफाई, ये सब कौन करता है?
0: ये सब मैं ही करती हूँ खुद।
1: आप ही करते हो
0: हाँ
1: खुद,
0: जी
1: तो इतना टाइम मिल जाता है आपको।
0: हाँ जी
1: अच्छा, कि सुबह पहले उठ के सबसे पहले क्या करती हो आप?
0: सबसे पहले उठ के नहा धो के पाठ करके और फिर बच्चों को खाना बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, बच्चों के लिए दूध बनाना,
1: हाँ जी,
0: ये सारे काम करती हूँ। फिर उन्हें उठाना, रेडी करना, स्कूल भेजना,
1: अच्छा, स्कूल भेजने के बाद फिर,
0: फिर बस अपना घर का काम करती हूँ सारा।
1: और फिर खेतों में चली जाती
0: हाँ
1: हो।
0: जी
1: खेतों से आने के बाद फिर
0: खाना वगैरह खाते हैं, मम्मी पापा को देते हैं, खुद खाते हैं, और खा के फिर बस इतनी देर में बच्चे आ जाते हैं, फिर उन्हें पढ़ाते हैं।
1: बस सारा दिन यही दिनचर्या रहती है।
0: हाँ जी
1: बड़ों की सेवा हो गई, बच्चों को पढ़ाना, घर
0: हाँ
1: के
0: जी
1: काम काज,
0: हाँ
1: यही
0: जी
1: सब में सारा दिन निकल जाता है, तो
0: हाँ जी
1: इसमें पता ही नहीं चलता कि कैसे है।
0: कैसे निकल
1: तो
0: गया दिन।
1: अपने लिए कभी सोचा कि वक्त निकालना चाहिए था मुझे?
0: मन में तो बहुत आता था, पर क्या करें, जब घर में इतना फंस गई तो बस निकल ही नहीं पाए। अब बस यही सोचा है कि बस जो कुछ भी है यही है सब।
1: परिवार तो हमारे लिए सब कुछ है ही है,
0: हाँ जी
1: लेकिन अपने लिए कुछ वक्त निकालना भी बहुत जरूरी है।
0: हाँ जी
1: जब कभी तो दिन में थोड़ा सा टाइम मिलता होगा, कुछ तो टाइम मिलता होगा कि अपने लिए मैं निकालूं 1 घंटा या 2 घंटे, तो उसमें क्या करती हो? कुछ सुनना पसंद करती हो, कुछ करना पसंद करती हो, कुछ तो रहता होगा कि हाँ इस टाइम मैं क्या करूं?
0: बस फोन देख लेते हैं थोड़ी देर, बस थोड़े गाने सुन लेते हैं।
1: अच्छा, गाने सुनने का शौक है,
0: हाँ जी
1: तो चलिए कोई गाना सुना दो। ठीक है वरिंदर।
0: सोना सोना सोनिए नी रूप दा नजारा, सोना सोना सोनिए नी रूप दा नजारा।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा गाती हो आप तो, बहुत अच्छा गाना सुनाया वरिंदर आपने तो। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ कुछ इंसान की कुछ शौक होने चाहिए जिससे कि इंसान को जिंदा रहने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और घर गृहस्थी का काम अपनी जगह है, लेकिन ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं अपने इंसान के जीवन में। शौक होना, बरकरार रखना, उसे बहुत जरूरी है।
0: हाँ जी
1: तो चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा वरिंदर,
0: हाँ
1: आप
0: जी
1: हमारे स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया मैम, थैंक यू।
2: हमारा घर आंगन फोर से सांझ तक बहनों इस क्रम में अभी तम सभी सुन रही थी वीरेंद्र कौर को, और आपसे बातचीत कर रही थी बहन तनप्रीत कौर। तो बहनों, जाना कि बहन वीरेंद्र कौर किस प्रकार पूरे दिन अपने कार्य को संपन्न करें, साथ ही अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना, बच्चों को पढ़ाना, खेती किसानी को देखना, खेतों पर जाना, ये सभी काम काज अच्छे से संभाल लेवे, साथ ही अपने शौक यानी सिलाई को भी महत्व देवे, यानी उसके लिए भी समय निकाल लेवे। कहने का तात्पर्य यह है बहनों कि जब पूरे परिवार के लिए समर्पण भाव हमारी बहनें रखे हैं, तो अपने लिए भी वक्त जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने आप को तनाव से दूर करें और स्वस्थ भी रहें। तो बहनों, अपने शौक भी पूरे करें और अपने खान पान का भी जरूर ध्यान रखें। और आइए अब चलते हैं मनोरंजन की ओर, क्योंकि जीवन के लिए सब कुछ जरूरी है। और संगीत की बात करें तो यह संगीत मन में उमंग भरे है, तनाव को दूर करता है और हमारे काम करने की क्षमता को भी बढ़ावे है। तभी तो न जाने कब से सभी तीज त्योहारों पर, उत्सव पर हमारी बहनें ढोलक की थाप पर नाचे नाचती हैं, गाती हैं और मनोरंजन करती हैं। साथ ही आस पड़ोस की महिलाएं जब इकट्ठा हुए हैं, तो गाँव में, घर परिवार में हंसी खुशी के माहौल से सकारात्मकता का भाव आवे है, जिससे हमारे सभी काम काज बड़े ही अच्छे ढंग से हो जावे। तो चलिए, देर किस बात की, थारे को करवा सुनवाते हैं ये प्यारा सा नोक झोक भरा गीत लतिका चौहान की आवाज में।

लीना गए बेदर्दी बहनों, अभी तम सभी ने सुना है प्यारा सा लोकगीत लतिका चौहान की आवाज में। उम्मीद करें कि जरूर पसंद आया होगा। और देखो बहनों, ये रेडियो बड़े काम की चीज है, जो हमारा घर बैठे मनोरंजन करावे है। दुनिया की, देश की खबरें, शिक्षा से संबंधित खबरें, प्रधानमंत्री जी के मन की बात, खेती किसानी की बात, मौसम की जानकारी, ये सब हम अपने घरों में कामकाज करते हुए एकदम प्राप्त कर ले। अब तुम ये सोच रही होंगी हम आज ये क्या बात करने बैठ गए। तो बहनों सुनो, कल यानी 23 जुलाई को हम मनावे हैं भारतीय प्रसारण दिवस। और ये दिवस भारत में विशेष महत्व रखे है, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को मुंबई स्टेशन से प्रसारण की शुरुआत हुई थी। और उस समय सेवा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के माध्यम से संचालित होती थी। इसके बाद भारत में रेडियो प्रसारण का लगातार विस्तार हुआ और 8 जून 1936 को इस सेवा का नाम आकाशवाणी रखा गया। रेडियो ने भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बहनों। और एक समय था जब दूर दराज के गांवों और कस्बों में सूचना पहुंचाने का सबसे प्रभावी माध्यम रेडियो ही हुआ करता था। खेती किसानी से जुड़ी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, शिक्षा संबंधी जानकारी, देश विदेश की खबरें हमें रेडियो के माध्यम से बड़ी सरलता के साथ मिल जाती है। या यूं कह दें कि रेडियो ने हर वर्ग तक अपनी जगह बनाई है, अपनी पहुंच बनाई है, तो गलत ना होगा। बहनों, आकाशवाणी का उद्देश्य केवल समाचार सुनना या मनोरंजन करना ही ना है, बल्कि समाज को जागरूक और शिक्षित करना भी है। इसका आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, इसी भावना को दर्शावे है। स्थानीय भाषा और बोली में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम श्रोताओं को अपनेपन का अनुभव करावे हैं। जैसे हमारा घर आंगन भोर से सांझ तक अभी आपने सुना, और ये जो हमारा कार्यक्रम है घर संसार, ये हमारा बोली में ही प्रसारित होता है। तो थारे को खूब भावे है और हमें थारी चिट्ठी पत्री भी मिले हैं कि भाई बोली में ये कार्यक्रम हमारे को खूब अच्छा लगा है। तो बहनों, तम सभी को रेडियो प्रसारण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब हमारे कार्यक्रम का समय संपन्न होने को है, लेकिन थारे से ये जरूर जानना चाहेंगे कि आज का ये थारा को ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, जरूर बताना। और लेकिन चलने से पहले थारे को हम भी बता दें अपना पता, तो पता नोट करें, कार्यक्रम घर संसार द्वारा केंद्र देशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246763। पता एक बार फिर से सुन ले, कार्यक्रम घर संसार द्वारा केंद्र देशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 246763। तो बहनों, इस पते पर चिट्ठी पत्री जरूर डालियो, क्योंकि थारी चिट्ठी पत्री का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अब अगले कार्यक्रम तक के लिए अपनी बहन अंजना को दे अनुमति। बहनों, राम राम।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 1:45 हुए हैं। लोकधारा कार्यक्रम में आज सुनते हैं कुमाऊनी लोकगीत। कलाकार हैं भानुराम सुकोटी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत कुमाऊनी लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं भानु राम सुकोटी।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से श्रोताओं, आप इस समय लोकधारा कार्यक्रम के अंतर्गत कुमाऊनी लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं भानुराम सुकोटी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। और चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस चर्चा के लिए नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र पर गहन चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि बहस जितनी भी लंबी चले उतनी लंबी होनी चाहिए और यथाशीघ्र शुरू होनी चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर खुली चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस तरह की बाधाएं खड़ी की जिससे प्रतीत होता है कि वे संवाद में शामिल नहीं होना चाहते।
1: देखिए, जो ऑपोजिशन पार्टी बोलना चाहते वो तो बोलना ही है चर्चा के दौरान, हम मना नहीं कर सकते। लेकिन चर्चा को रोकने के लिए आप अगर कंडीशन डालेंगे तो इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। हमने जब खुले दिल से ऑफर किए सरकार की ओर से कि हम चर्चा चाहते हैं, तो उसको व्यवधान डालने के लिए कोई कंडीशन ऐसा डालेंगे ताकि चर्चा ही ना हो, ये तो ठीक बात नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास के पास विरोध प्रदर्शन करना विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को दर्शाता है।
2: संवैधानिक पद पे रह के संविधान की गरिमा को तार तार किया, उनका ये आचरण बहुत ही खतरनाक मंशा से वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करके कांग्रेस पार्टी पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि विद्यार्थियों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों के साथ है और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने युवा नेतृत्व वाले विकास के मंत्र को विकसित भारत को मजबूत करने की नींव बनाया है।
3: आप सब जानते हैं कि नीट जैसा एग्जाम जिसमें 20 से 22 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उसकी तैयारी में 6 महीने लगते हैं, लेकिन मात्र 37 डेज में नीट का री एग्जामिनेशन किया गया और रिजल्ट भी मात्र 25 दिन में आप सभी के सामने ला खड़ा कर दिया गया। जो री एग्जामिनेशन हुई उसमें टेक्नोलॉजी को लेवरेज करा गया ताकि कहीं पर भी अगर किसी भी प्रकार का लूप होल हो उसको कर्ब किया जाए, उसको प्लग इन किया जाए।
0: सुश्री स्वराज ने बताया कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पेपर लीक के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया और अब वे सभी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कल प्रधानमंत्री आवास के गेट के बाहर बिना अनुमति धरने पर बैठने की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास की गरिमा को जानते हुए भी श्री गांधी ने गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। भाजपा सांसद ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले और विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। इससे पहले जब लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू करने के लिए एकत्रित हुई तो अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। इस कारण लोकसभा को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार इस मामले पर चर्चा के लिए तैयार है और चर्चा के समय को लेकर सभी को एकमत होना चाहिए। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा में भी यही स्थिति देखने को मिली। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष ने नीट मामले पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रश्नकाल संसदीय कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये सदस्यों का अधिकार है।
4: आजादी के 50 साल बाद सदन ने यह संकल्प लिया था कि किसी भी हालत में क्वेश्चन आवर और जीरो आवर चलाएंगे। ये मेंबर्स के आवर है। आपके प्रश्नों को उत्तर तैयार करने में कितना श्रम जाता है और जनता का धन जाता है, आप इसकी कल्पना करिए। आपको प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, प्लीज अपनी सीट पर बैठिए और क्वेश्चन आवर चलने दीजिए।
0: बार बार अपील करने के बावजूद विपक्षी सदस्यों ने उपसभापति की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण सदन को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रहेंगे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना ने आज कर्नाटक के कारवार INS कादम्बा नौसेना बेस पर माही श्रेणी के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्धपोत INS मालवन को बेड़े में शामिल कर लिया। INS मालवन 8 पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों में से दूसरा युद्धपोत है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का उपयोग किया गया है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल ने आत्मनिर्भरता की दिशा में नौसेना के प्रयासों की सराहना की।
5: आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत करीब आई जा रहे हैं। बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था, हम लोगों ने देर करी है बल्कि, बिकॉज वेरियस सेक्टर्स टेक डिफरेंट टाइम्स टू ग्रो एंड आई थिंक इन एज फार एज नेवल शिप बिल्डिंग इज कंसर्न, इंडिया हैज ऑलवेज हैड एन एज एंड वी हैड कैरीड आवर लेगेसी फॉरवर्ड एंड इन मेकिंग शिप्स। सो वेरी गुड प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन आत्मनिर्भरता एज फार एज शिप बिल्डिंग इज कंसर्न।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पहली बार सभी सेनाओं की महिला सदस्य समुद्री अभियान समुद्र प्रदक्षिणा ने न केवल पृथ्वी का चक्कर लगाया बल्कि इस असाधारण उपलब्धि से करोड़ों भारतीयों को गौरवान्वित भी किया। उन्होंने IASV त्रिवेणी को आत्मनिर्भर भारत और भारत के नवाचार क्षमताओं और आत्मविश्वास का जीवंत उदाहरण बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। एक संयुक्त वक्तव्य में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका ने एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही आसियान की एकता और केंद्रीय भूमिका के लिए अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की।
6: In this era of volatility and disruption,
7: उथल पुथल के इस दौर में आपूर्ति श्रृंखला पर सबसे अधिक दबाव दिख रहा है। ऊर्जा, भोजन और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है। वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा। साथ ही भारत और आसियान दोनों ही अपने भविष्य को लेकर उम्मीद से भरे हैं, इसलिए चुनौतियों का सामना करते हुए भी हमें मौकों पर पूरी तरह ध्यान देना चाहिए।
0: बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारतीय अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को हुरमूज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण की अनुमति देना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता के लिए एक बेहद खतरनाक कदम होगा। डॉक्टर जयशंकर ने आज फिलीपींस के मनीला में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान फिलीपींस, रूस और सिंगापुर के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होगी। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। 16 जिलों में पानी भरा हुआ है। राज्य में बाढ़ में 21 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की कुल संख्या 31 हो गई है।
8: आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में 872 गांव अभी भी जलमग्न हैं और 5,64,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 24,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पानी में डूबी हुई है। कामरूप और कामरूप महानगर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां 4,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। राज्य सरकार ने 71 राहत शिविर और 202 राहत वितरण केंद्र स्थापित किए हैं। इन शिविरों में 12,000 से अधिक लोगों को आश्रय दिया गया है, जबकि 1,00,000 से अधिक प्रभावित लोगों को राहत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। NDRF, SDRF, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत कार्य में लगातार जुटी हुई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: जम्मू कश्मीर में कटरा और त्रिकुटा पहाड़ियों में खराब मौसम के कारण आज लगातार चौथे दिन भी श्री माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित रही। चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के आयुष शेट्टी ने आज पुरुष सिंगल्स में इंडोनेशिया के अलवी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 753 अंक गिरकर 76,717 पर और निफ्टी 202 अंक की गिरावट के साथ 23,986 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में किसी भी नियम के तहत चर्चा के लिए तैयार। सरकार ने कहा, युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। युद्धपोत INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्रों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यम समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश.com में, और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त लोकेंद्र। श्रोताओं, व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको गीत सुनवाएंगे और उन गीतों से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। उन प्रश्नों के आप हमें उत्तर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप मैसेज जानते हैं, बहुत सारे नए श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम व्हाट्सएप मैसेज के लिए व्हाट्सएप नंबर एक बार बता देते हैं, 9457078288 9457078288 इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कार्यक्रम में ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और कुमार सानू। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है नुसरत फतेह अली खान ने। आपको बताना है ये गीत किस फिल्म से लिया गया है। हम आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप आनंद लीजिए इस गीत का।

0: श्रोताओं, अभी आपने ये गीत सुना। आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम संदेश.com सुन रहे हैं। हमने पूछा था यह गीत किस फिल्म से लिया गया है। इसका सही आंसर है फिल्म कच्चे धागे, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमें इस फिल्म का उत्तर लिखकर भेजा है। इस गीत के बारे में जो हमने फिल्म पूछी थी, ये एक बेहद जोशीला और रोमांटिक गीत, 90 के दशक का बॉलीवुड ट्रैक आपने सुना। गाने में सैफ अली खान और नम्रता शिरोडकर के बीच रोमांटिक केमिस्ट्री को इसमें फिल्माया गया है। फिल्म कच्चे धागे एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें इस गाने ने एक बेहतरीन रोमांटिक मोड़ दिया था। तो सही उत्तर हमें लिखकर भेजा है, आप हैं काशीपुर से मोहित कुमार, अमरोहा नई बस्ती पतई कालसा से बाहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद सिफान सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, अनाबिया अलीशा और इनके परिवार के सभी लोग। अगला सही उत्तर हमें लिखकर भेजा है, आप हैं विलेज एंड पोस्ट राहु नंगली से आचार्य सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, अक्षत चौहान, राघव चौहान, कनिष्का चौहान, भव्या चौहान और इनके परिवार के सभी सदस्य। धनेरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू ने सही उत्तर लिखकर भेजा है। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयसा, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी और मोहिनी ने ये पत्र हमें मिला है, ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद से। धन्यवाद सभी श्रोताओं का, आपने प्रतिभाग किया और सही उत्तर लिखकर भेजा। कार्यक्रम में अगला गीत सुनने से पहले ये संदेश।
1: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।

श्रोताओं, तो आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से आप इस समय कार्यक्रम संदेश.com सुन रहे हैं। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, इससे संबंधित हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, आप हमें उत्तर लिखकर भेजेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप जानते हैं 9454।

0: श्रोताओं, अभी आपने कभी खुशी कभी गम इस फिल्म का ये गीत सुना। हमने आपसे पूछा था कि ये गीत किस उत्सव पर फिल्माया गया है। इसका सही उत्तर है मेहंदी और सगाई के उत्सव पर, और बहुत सारे साथियों ने हमें सही उत्तर लिखकर भेजा है। आप हैं कुंडल वाड़ी महाराष्ट्र से, गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर। आप हैं काशीपुर से मोहित, और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। शाही मार्केट सिहारा बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अराफात चौधरी और अदीब चौधरी, कादिर चौधरी ने सही उत्तर लिखकर भेजा है।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: कार्यक्रम में श्रोताओं सुनते हैं ये गीत फिल्म हेलो ब्रदर से, सोनू निगम और जसपिंदर नरूला के युगल स्वर में। गीत को लिखा है फैज अनवर ने, संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने, और इस गीत में आपको बताना है कि ये गीत मुख्य रूप से, इस गीत की थीम क्या है।

श्रोताओं, अभी आपने हेलो ब्रदर फिल्म का ये गीत सुना। हमने पूछा था आपसे कि ये गीत की इस गीत की मुख्य थीम क्या है, तो बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही उत्तर लिखकर भेजा है। इस ये गाना श्रोताओं मुख्य रूप से दो भाइयों के बीच गहरे प्रेम और दोस्ती को समर्पित है। और सही उत्तर लिखकर भेजा है आप हैं मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशुल खान और अनुराज बेनाराया। पप्पू राजा खुशदिल ये हमें लिखकर भेजते हैं, इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा, ये लिखते हैं चकला बाजार समाना शहर पंजाब से। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, कार्तिक और परी खर्चे ने सही उत्तर लिखकर भेजा है। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम सचिन सतीश योगेश और इनके परिवार के सभी लोगों ने इस गीत से पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर लिखकर भेजा है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार ने भी सही उत्तर लिखकर भेजा है। आप हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साई गायकवाड़ ने भी सही उत्तर लिखकर भेजा है। ग्राम धूलापुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान और नरगिश खातून। कार्यक्रम में सुनते हैं एक और गीत, फिल्म बागवान से, अमिताभ बच्चन और अलका याग्निक के युगल स्वर में। इस गीत के लिए शब्द रचना समीर की है, संगीत आदेश श्रीवास्तव का है। और आपको फिर से बताना है कि इस गाने में, यानी इस गाने की मुख्य स्थिति क्या है, इस गाने के मुख्य भाव क्या हैं, जैसे प्रेम, देशभक्ति, विरह, खुशी या प्रेरणा, आप इस गाने को सुनकर बता सकते हैं।

0: वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है रूह प्यासी है।
1: इस गीत के भाव विरह के हैं, दुख के हैं। तो सही उत्तर हमें लिखकर भेजा है आप हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से सही उत्तर लिखकर भेजते हैं। आप हैं नई बस्ती अमरोहा से बहरुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, सिफान सिद्दीकी और बिटिया अलीशा सिद्दीकी। कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी हर्षिता, अभिषेक और इनके साथ के सभी दोस्तों ने लिखकर भेजा है। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आप हैं बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। मोहित कुमार काशीपुर से सही उत्तर लिखकर भेजते हैं। मुंबई से अनु शमशुल और अनुराज बेनारा सही उत्तर लिखकर भेजते हैं। ग्राम जुझैला थाना शिवाला करा बिजनौर से राशिद अंसारी इस गीत से संबंधित पूछे गए हमने थीम से सही उत्तर लिखकर भेजा है। तो श्रोताओं, अब कार्यक्रम संदेश.com संपन्न करने की अपने दोस्त लोकेंद्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारे संध्याकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी, जिनमें आज हम आपको जानकारी देंगे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय कृषि मंडी के बारे में। सामान्य जैविक खेती हमारे खेत की मिट्टी ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा ये फायदेमंद है हमारी सेहत के लिए भी। जैविक खेती खेती करने का वो तरीका है जिसमें हम रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, बल्कि खेती करने के इस तरीके में हम उर्वरकों की जगह पशुओं के गोबर और मूत्र से बने कीटनाशक और फसलों के अवशेष का इस्तेमाल करते हैं। जैविक खेती प्रकृति के नियमों के अनुसार की जाती है जिसमें मिट्टी की गुणवत्ता और जैव विविधता का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैविक खेती के कई फायदे हैं, जैसे मिट्टी ज्यादा उपजाऊ रहती है और मिट्टी प्रदूषित नहीं होती। किसानों को महंगी रासायनिक खाद बाजार से नहीं खरीदनी पड़ती। जैविक खेती करके जो फसलों के उत्पाद होते हैं उनकी बाजार में भी मांग ज्यादा होने के कारण वे अच्छे दाम पर बिकते हैं, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है। श्रोताओं, रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते इस्तेमाल ने हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति को कम कर दिया है। इसी समस्या को हल करने के लिए और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कई बड़ी और असरदार योजना शुरू की हैं, जिनमें दो सबसे मुख्य हैं। पहली परंपरागत कृषि विकास योजना और दूसरी राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन। परंपरागत कृषि विकास योजना का उद्देश्य किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए क्लस्टर में संगठित करना है। क्लस्टर में 50 या उससे अधिक किसानों का समूह बनाया जाता है। इस क्लस्टर में ऐसे किसान आते हैं जिनके पास 20 हेक्टेयर से कम खेती करने योग्य भूमि है। परंपरागत कृषि विकास योजना में पूरे क्लस्टर को एक साथ जैविक खेती में बदला जाता है। इस योजना में किसानों को 3 साल के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वित्तीय सहायता मिलती है। इस धनराशि का उपयोग किसान खाद और बीज खरीदने, जैविक खेती करने की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और अपने उत्पादों के मार्केटिंग में कर सकते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत तैयार फसलों को सरकार प्रमाण पत्र देती है, जिससे फसलों के अच्छे दाम मिलते हैं और ग्राहकों का भी विश्वास बढ़ता है। जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली दूसरी योजना यानी राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन, जिसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, इसमें खेती करने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पशुओं का गोबर और मूत्र। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। खेती करने के इस तरीके से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बनी रहती है। अगर आप भी जैविक खेती शुरू करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, जैविक खेती केवल एक बदलाव नहीं है बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा के लिए एक निवेश है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से, और अब कार्यक्रम में जानकारी राष्ट्रीय कृषि

ने देश के किसानों के लिए बाजार के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं, जिसे नाम दिया गया राष्ट्रीय कृषि बाजार। पहले हमारे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अपनी स्थानीय मंडी में जाना पड़ता था, या उन्हें अक्सर अपनी फसल के दाम पाने के लिए व्यापारियों या बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल पाता था, या यूं कहें कि व्यापारियों या दलालों की मनमानी सहनी पड़ती थी। इसी समस्या को हल करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो देश की अलग अलग लगभग 1500 मंडियों को एक बाजार के रूप में जोड़ता है, जिसके माध्यम से किसान लगभग 247 फसल उत्पादों को ऑनलाइन खरीद या बेच सकते हैं। किसान अब अपनी फसल को देश के किसी भी कोने में किसी भी व्यापारी को बेच सकते हैं। इस पोर्टल पर फसल की गुणवत्ता और मात्रा के आधार पर फसल के दाम तय किए जाते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार को ई नाम पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है। इस पोर्टल पर फसल की ऑनलाइन नीलामी होती है, जिससे धोखाधड़ी का गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। फसल की बिक्री होते ही भुगतान सीधे किसान के खाते में आ जाता है, जिससे किसान को फसल की दाम का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। मंडी में ही फसल की गुणवत्ता की जांच की सुविधा होती है, जिससे किसान को अपनी उपज की सही कीमत का पता चल जाता है। ई नाम पोर्टल का उपयोग करने के लिए किसान को अपना पंजीकरण कराना होता है, उसके बाद अपनी फसल की जांच करा के पोर्टल पर नीलामी के लिए रखा जाता है। सबसे अच्छी बोली लगाने वाले को किसान अपनी फसल बेच सकते हैं। सही मायनों में राष्ट्रीय कृषि बाजार एक ऐसी तकनीक है जो किसान को अपनी फसल बेचने की ताकत देती है।

श्रोताओं, आज मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम में हमने आपको जैविक खेती और राष्ट्रीय कृषि मंडी के बारे में जानकारी दी। ये दोनों ही योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में एक ज़रूरी कदम साबित हुई हैं। इसी के साथ कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं संपन्न होता है। अनुमति दीजिए, नमस्कार। अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर। संध्या के 5:10 हुए हैं। श्रोताओं, गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना सुनिए। थानाध्यक्ष थाना आदमपुर जनपद अमरोहा के हवाले से प्राप्त सूचना के अनुसार गुमशुदा व्यक्तियों की सूचना इस प्रकार है। सौरभ त्यागी पुत्र महेंद्र त्यागी जो ग्राम ढवारसी थाना आदमपुर जनपद अमरोहा के निवासी हैं, ये 30 मार्च 2024 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 24 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई लगभग 5 फीट 5 इंच, चेहरा गोल, आंख नाक सामान्य। इनकी ठोड़ी के ऊपर तिल का निशान है। इनके बारे में यदि आपको कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस नंबर पर सूचित करें 9454403668। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 9454403668। गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

आज रात 8 बजे प्रसारित की जाएगी संसद समीक्षा। रात 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

कानून की बात आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से शाम 7:30 पर। युववाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर क्रम रहेंगे यूथ कनेक्ट और लव स्टोरी। कृषि जगत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता से प्रमोद सिंह की बातचीत, जिसका विषय होगा नए फलदार वृक्षों की रोपाई करते समय सावधानी। कार्यक्रम का वक्त रहेगा संध्या 6:05 पर।

विविधा कार्यक्रम होगा शाम 6:45 पर, जिसमें डॉक्टर अमित कुमार सिंह की वार्ता का विषय होगा भारतीय संविधान में लोक कल्याण के महत्व। शब्द आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में शाम 7:45 पर, कलाकार होंगे भाई हरजिंदर सिंह। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की, और अब जानकारी हमारे कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। कल प्रातः 6:05 पर प्रसारित होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरितमानस गान आप सुनेंगे कल सुबह 6:30 पर। काव्यधारा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:45 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे विनीत प्रकाश गर्ग उर्फ हुड़दंग नगीनबी का काव्य पाठ। स्वास्थ्य चर्चा में कल जानकारी का विषय होगा घुटने का दर्द। कार्यक्रम का वक्त रहेगा कल सुबह 7:05 पर।

0: गुड इवनिंग लिसनर्स,
1: स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में।
0: मैं हूँ आपकी सगी दोस्त और आज की वन ऑफ द होस्ट नंदिनी, और मेरे साथ हैं एक यूनिक आवाज वाली साथी।
1: जी हाजिर हूँ मैं अपनी आवाज के साथ यूसुफा जैदी, और हाँ मेरी आवाज।
0: बस बस आकर यकीन कराने की जरूरत नहीं है।
1: यकीन तो आ ही जाएगा, मैं गाऊं ना गाऊं तुम रोस्टी ऐसा करती हो।
0: ओहो भाई तुम तो लड़ने ही लग गई।
1: लड़ने से ही हक मिलता है, इतिहास गवाह है।
0: वो हक मिल जाता है ठीक है, पर तुम्हारी बात पर ये फिलॉसफी सूट नहीं करती भाई।
1: अरे मेरे सूट और साड़ी को छोड़ो, लड़ने पर फोकस करो।
0: चलो ठीक है ऐसा ही सही। तो दोस्तों आज आपसे इनडायरेक्टली लड़ लेते हैं हम। अरे नहीं नहीं ऐसे हथियार से नहीं, प्यार से, सवाल से।
1: तो आज का बूझ तो जाने का सवाल रहेगा,
0: पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था?
1: सही जवाब आप दीजिए हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर।
0: और सवाल एक बार फिर सुन लीजिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आप दीजिए सवाल का जवाब। तब तक हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं कुछ जुगाड़, यानी कि प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस हंस कर लोट पोट,
0: क्योंकि ये है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
3: अरे सोनू जी, कहाँ चल दिए सुबह सुबह ये लोटा लेकर?
4: बस बस, आज हम जा रहे हैं, नहा के आएंगे।
3: नहा के आएंगे? तो घर का पानी का खत्म हो गया है, घर में नहाओ भाई।
4: नहीं, हम पाप धोएंगे आज, हम नदी में जाकर नहा कर आएंगे।
3: नदी में जाकर नहा कर आएंगे? अरे पाप धोने हैं तो घर पे नहाओ ना, वो भी साबुन के साथ, ताकि पाप भी जाए और कीटाणु भी।
4: अरे नहीं नहीं, पाप तो नदी में ही धुलते हैं, तुम्हें क्या पता?
3: शायद आपको नहीं पता, पाइपलाइन से वो वापस आपके ही घर आ जाएंगे।
1: जी हाँ, मजा आ गया।
5: मजा तो आ रहा होगा दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपके साथ, बनी हूँ मैं नंदिनी और मेरे साथ हैं यूसुफ। कहाँ हैं आप? ठीक ठाक तो हैं? अरे भाई, जहाँ भी है न्यूज ऑन एयर ऐप तो है ना?
3: जी है। और अगर आपको भी लगता है कि फुल ड्रामा है ये महीना,
5: कभी बारिश कभी पसीना,
3: तो खैर आप बताइए कैसे तैयारी चल रही है 15 अगस्त की?
5: क्या एनर्जी होती थी ना यूसुफ उस वक्त, क्या जोश होता था, सारा क्लास वर्क छोड़कर 15 अगस्त की तैयारी, मजा आता था, है ना दोस्तों? आप भी जाते थे?
3: एक मजेदार बात, आपने सोचा है कभी कि आखिर हमारा तिरंगा बना कैसे और कौन था वो दिमाग?
5: जी बिल्कुल, बात तो तुम्हारी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक काम करते हैं, थोड़ी नजाकत के साथ, थोड़ी नफासत के साथ बता देते हैं कि क्या हुआ था।
3: तो हमारे ध्वज का नाम है तिरंगा, 3 रंग से सजा है, केसरिया, सफेद और हरा। इस तिरंगे के दिल में रखा गया है एक चक्र,
5: वही चक्र जिसे अशोक चक्र कहते हैं। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत संघ का आधिकारिक ध्वज बन गया।
3: 22 से 15 तक का सफर ऐसे ही नहीं था।
5: सवाल बनता है कि आइडिया किसका था ये?
3: गांधी जी। गांधी जी ने ये बात सबसे पहले कही और उसके बाद गौर किया पिंगली वैक्या ने, उसमें चरखा था। और
5: फिर आता है एक और चेंज, हमारे गुलाब वाले नेहरू जी, उन्होंने चरखे को बल दिया चक्र से, अशोक चक्र जिसे हम देखते हैं।
3: एंड 15 अगस्त 1947 को ये झंडा फहराया गया, जिसे देखकर दिल में कुछ कुछ होता है।
5: मैं समझ गई यूसुफा।
3: हाउ क्यूट एंड स्मार्ट। तो मित्रों, देश के ध्वज सभी जाति वर्ग के लिए एक है, बट इतना आसान नहीं था, कई रंग आए और चले गए और आखिर में कौन जीते? 3 रंग। वो 3 रंग हमेशा के लिए हमारे तिरंगे में रह गए। ना निर्माण ध्वज का इतना आसान था और ना ही देश का आजाद होना।
5: सही बात है, अगर ध्वज के इतिहास पर हम बात करने के लिए बैठे तो कई घंटे कई दिन भी कम रह जाएंगे।
3: पर कम लफ्जों में ज्यादा बात कहनी हो तो आज है 22 जुलाई और आज है राष्ट्रीय ध्वज दिवस, तो बस सेलिब्रेट करते हैं।
5: तो तैयार हैं आप हमारे तिरंगे को सेलिब्रेट करने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को दिल में भरने के लिए? हम भी तैयार हैं और इन रंगों को आपके दिल में उतारते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

0: तो दोस्तों आज है वेंसडे और आपको पता है वेंसडे की खासियत होती है यूथ, यानी कि युवा। हम जाते हैं हमारे युवाओं के पास, उनको देते हैं उनका प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपनी पसंद की बात, अपने दिल की बात हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए बता सकें कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है।
1: तो इसी के लिए हमारा सेगमेंट है यूथ कनेक्ट, जिसके लिए हाजिर है हम अपने स्टूडियो से बाहर और जानने चाहते हैं अपने दोस्तों से कि आज के उनके क्या है विचार हमारे सब सेगमेंट को लेकर, जिसके लिए हमारे सब सेगमेंट हैं समय की सैर, हूबहू, गलत है तो सही है, अरे दीवानो मुझे पहचानो।
0: चलो फिर चलें यूसुफा, पहचान के आते हैं हमारे।

0: से बाहर, और जानने चाहते हैं अपने दोस्तों से कि आज के उनके क्या है विचार हमारे सब सेगमेंट को लेकर, जिसके लिए हमारे सब सेगमेंट हैं समय की सैर, हूबहू गलत है तो सही है, अरे दीवानो मुझे पहचानो।
1: चलो फिर चलें यूसुफा, पहचान के आते हैं हमारे।

0: साउथ जैन में बैठी हूँ अभी, और अभी मैं BSC का फॉर्म भरा है जो इसमें अभी नंबर नहीं आए लिस्ट, तो अब देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा फिलहाल।
1: ओके, तो मतलब अब ये देख सकते हैं कि इस आपकी बातों में भी जोश है कि आपको पढ़ना है, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो आई विश आपको मिल जाए क्योंकि आप खुद ही कोशिश कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 या 10 साल बाद आप अपने फ्यूचर देखती है, फ्यूचर में जाना चाहती है, तो क्या वो चीज़ है जो आप बदलना चाहेंगी या करना चाहेंगी?
0: तो जैसे अब मेरा 12th हुआ है अभी रिसेंटली, सो अब मैं जैसे इधर उधर कॉलेजेस के लिए देख रही हूँ कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में जाना है, और ना कोई गाइड करने वाला है कि क्या मतलब स्ट्रीम कौन से वगैरह। हमने अभी 12th में ली थी स्ट्रीम लाइक बायो, तो अब हम बायो से BSC करना आए थे, तो यहाँ पर BSC का बिल्कुल हमने फॉर्म वगैरह सबमिट करे तो अभी हमारा नेम नहीं आया। अगर हम मैथ्स लेते, अगर हमें सही हमें गाइड करने के लिए कि हमें ये वाली स्ट्रीम लेनी चाहिए, तो शायद मैथ्स ही हमारे पास, मैथ्स लेते हम और बायो थी हमारे पास, मैथ्स में अगर हम यहाँ पर फॉर्म भरते तो शायद हमारा नंबर आ भी जाता, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादातर बच्चों के नेम आए हैं यहाँ पर जो मैथ से BSC वगैरह करें हैं, बायो के बहुत कम बच्चों के नेम आए हैं। सो अब मुझे फ्यूचर का कुछ पता नहीं, फ्यूचर में क्या कर पाऊँ मैं।
1: ओके, तो ये भी एक अलग रंग है भाई दुनिया का, एक अनसर्टेनिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा?
0: सो बस मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी, जब आप 11th में आएँ तो आप अपनी सही स्ट्रीम चुनें, ताकि आप फ्यूचर में जाके जैसे लाइक अब मुझे पढ़ रहा है 12th के बाद कि कौन से कॉलेज और कौन सी मुझे स्ट्रीम लेनी चाहिए थी, अब मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ कि मुझे शायद मैथ्स ही लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैथ्स से BSC करना बहुत ईजी हो रहा है यहाँ पर, और मुझे दिल से मेरा वो था कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ही करूं, क्योंकि फाइनेंशली बहुत कंडीशन लोगों की ख़राब रहती हैं, ज़्यादातर जाते हैं कि सब लोग गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, लेकिन अब नंबर नहीं आ पा रहा है यहाँ पर। BSC बायो से कर मैथ से होता तो शायद आ भी जाता। सो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी स्ट्रीम वगैरह ठीक करें।
1: तो आप निराश मत होइए मरियम, क्योंकि अगर आपके अंदर इतनी होप है, अभी भी आप इतना सोच रही हैं, तो आगे जाके ऊपर वाला ज़रूर आपके लिए कुछ बेहतर करेगा।
0: हाँ, ये तो है।
1: चलिए, हमारी भी यही दुआ है कि आपका नेम आ जाए। थैंक यू हमसे बात करने के। तो गाइज, हमारे पास हमारी एक बड़ी काबिल साथी मौजूद हैं। सबसे पहले जानते हैं इनका नाम।
2: शादी बहर, माय नेम इज शादी बहर।
1: तो क्या करती हैं आप?
2: मैं BA कर रही हूँ।
1: अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो जिसके जैसा आप बनना चाहें, हमारे सेगमेंट हूबहू में, मतलब कोई जो आपको रिफ्लेक्ट करता हो, कोई भी हो सकता है, वो कौन है?
2: हाँ बिल्कुल, कोई भी हो सकता है, पर मैं ये बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह होना चाहूँगी, बिकॉज माय मॉम माय आइडल।
1: अच्छा, मम्मी तो सबकी फेवरेट होती है भाई, इतना सब कुछ करती है, लेकिन ऐसी क्या खास बात है जो आपको लगता है कि मेरी अम्मी में है और मुझ में तो होनी चाहिए?
2: मेरी अम्मी में, अम्मी तो मतलब मॉम तो सबकी मॉम होती हैं, पर मेरी अम्मी मेरी जान है और मैं उनकी तरह ही बनना चाहती हूँ, उनकी पॉजिटिविटी अपने अंदर लाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मेरे अंदर इतनी पॉजिटिविटी नहीं है, निगेटिविटी है, तो मैं यही चाहती हूँ कि उनकी जो पॉजिटिविटी है और जितना वो करती हैं उतना मैं करूँ उनके लिए, उनसे ज़्यादा।
1: तो अम्मी को थैंक यू बोलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से?
2: बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू अम्मी।
1: ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: थैंक यू।
1: तो साथियों, हमारे साथ एक और साथी मौजूद हैं, और चलते हैं उनकी तरफ और पूछते हैं कि क्या है उनका नाम।
3: मेरा नाम शालू है।
1: तो क्या करती हैं आप?
3: मैं स्टडी करती हूँ।
1: क्या स्टडी करती हैं?
3: मैं SSC की तैयारी कर रही हूँ।
1: ओके गुड, मतलब सिविल सर्विस की तरफ आप अग्रसर हैं?
3: यस।
1: अच्छा, तो आप इतना ज़्यादा मोटिवेशनल, आपका ड्रीम है, तो मैं आपकी लाइफ में पूछूंगी, कोई है जो आपको मोटिवेट करता हो, जो आपको इस तरफ आने की प्रेरणा देता हो?
3: मेरे पापा।
1: ओके, पापा मेरी जान। पापा तो सबके स्पेशल होते हैं, आपके लिए आपके पापा कैसे स्पेशल हैं?
3: कभी किसी चीज़ के लिए रोकते टोकते नहीं है, हमेशा पढ़ने की फुल आज़ादी दी है। कोई भी देखो, हम गांव से हैं, क्योंकि गांव का माहौल सभी को पता होता है, कैसा कल्चर होता है वहां का, सभी बोलते हैं कि इतना मत पढ़ाओ, लड़की की शादी कर दो, ये है वो है। पापा ने कभी किसी की नहीं सुनी, हमेशा विश्वास किया, एक विश्वास के साथ हमें भेजा पढ़ने के लिए, और हमेशा बोलते हैं कि अपने करियर पर ध्यान दो, बाकी बातों पर तुम ध्यान मत दो।
1: मैं हूँ संभालने के लिए।
3: बिल्कुल।
1: ओके, अच्छा, कोई एक मैसेज अपने पापा के लिए आप देना चाहेंगी? यहाँ
3: मेरे पापा बहुत अच्छे हैं,
1: पापा बहुत अच्छे।
3: तो मेरे पापा का सपना है कि मैं सक्सेस हो जाऊं, तो मैं उनके सपने को लेकर चल रही हूं और मैं उसको पूरा करूंगी।
1: ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
3: ओके, थैंक यू।
1: तो दोस्तों, हमारे साथ हमारी साथी जुड़ चुकी है। सबसे पहले जानते हैं इनका नाम।
4: माय नेम इज अतूपा खान।
1: तो अरूबा, कैसी हैं आप?
4: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
5: okay, तो हमारा सेगमेंट है अरे दीवानो मुझे पहचानो, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपने दोस्तों से पूछते हैं सवाल कि अगर आपको अपने अंदर की अच्छी बात बतानी है तो वो क्या होगी, और अगर एक बुरी बात बतानी है जो आपको पसंद

0: है वो क्या होगी? तो आपकी कौन सी अच्छी आदत है जो आपको बहुत पसंद है?
1: मेरी अच्छी आदत यह है कि मैं गुस्से में भी कंट्रोल रहती हूँ, मतलब ओवर रिएक्ट नहीं करती, ज़्यादा गुस्सा नहीं करती, नॉर्मल रहती हूँ, पॉजिटिव।
0: ओके, और एक बुरी आदत कौन सी है आपकी जो आप छोड़ना चाहेंगी?
1: मैं काम नहीं करती कुछ घर का, वो सीखूंगी धीरे धीरे करके।
0: तो आप चाहती हैं कि आप काम भी करें और उसके साथ अपना गुस्सा भी कंट्रोल करें?
1: ये तो सबके अंदर होनी चाहिए ये बात कि गुस्से में भी इंसान अपने आप को कंट्रोल करे, ज़्यादा वो ना करे,
2: अपने एंगर को कंस्ट्रक्टिवली यूज करे। चलिए, आप युवाओं को भी यही मैसेज देना चाहेंगी तो एक बार एक अपने शब्दों में कुछ मैसेज दे दीजिए।
1: मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि गुस्सा तो सबको आता है पर उस पर कंट्रोल करना चाहिए, नुकसान हो गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए अपना।
2: ओके, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा।
1: वेलकम।
2: करो
0: तो नंदनी, हमें मिल गए कुछ मज़ेदार से जवाब हमारी। तो नंदनी, हमें मिले हैं बहुत सारे मज़ेदार से जवाब, किसी ने हमें कुछ बताया, किसी ने कुछ। अब बारी है उस सेगमेंट की जो कि सबका हर दिल अजीज सेगमेंट है, सेगमेंट गलत है तो सही है, सब सेगमेंट गलत है तो सही है। तो नंदनी, हमें मिले हैं बहुत सारे अजीबोगरीब सवाल और इसी बात पर अब बारी है हमारे हर दिल अजीज सेगमेंट, सब सेगमेंट गलत है तो सही है कि, जिसके लिए हमारे पास मौजूद है हमारी एक प्यारी सी साथी। क्या है आपका नाम?
3: जानसारी।
0: हिफ्जा, तो कैसी हैं आप?
3: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हिफ्जा, हमारा एक सब सेगमेंट है जिसका नाम है गलत है तो सही है, जिसका कॉन्सेप्ट यह है कि हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उसमें आपको गलत आंसर देने हैं। तो उसके लिए रेडी हैं आप?
3: जी।
0: ओके, तो आसमान का रंग क्या होता है?
3: येलो।
0: एक साल में कितने महीने होते हैं?
3: 13।
0: आग गर्म होती है ठंडी?
3: ठंडी।
0: मुर्गी क्या खाती है?
3: अंडा।
0: ओके, चाय किस रंग की होती है?
3: वाइट।
0: 2 × 2 × 0 कितना होता है?
3: 1।
0: हमारे देश की राजधानी क्या है?
3: लखनऊ।
0: धुमक्खी क्या बनाती?
3: पानी।
0: सड़क पर गाड़ी चलती है या पानी में?
3: पानी में।
0: जूता क्यों पहनते हैं?
3: बैठने के लिए।
0: हिफ्जा, आपने हमें बहुत सारे बहुत मज़ेदार आंसर दिए हैं जो कि हमारे लिसनर को सुनकर भी काफ़ी मज़ा आएगा, तो कैसा लगा आपको?
3: अच्छा लगा,
0: थैंक यू हिफ्जा।
4: तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के जोशीले युवा जिन्होंने शेयर किए अपने विचार, अपने दिल की बातें और अपनी ख्वाहिशें। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा
5: और अगर आपको पसंद आया है तो सुनते रहिएगा हमारा प्रोग्राम युववाणी, यूथ कनेक्ट को करते हैं यहीं पर
4: एंड,
5: और सुनिए हमारे प्रोग्राम को आगे, देखते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में और क्या क्या है नया और खास।
0: नई निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नई विसाले मयसर तो आरजू ही सही। अब हम भी आरजू कर लेते हैं एक प्यारे से खूबसूरत से गीत का। मेरे ख्याल से आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं किसी गीत का, तो आना लीजिए फिर।

0: नजरों से नजरें मिली, दिल धड़कने लगे कि धड़कने लगे। है अजब सी चाहत का असर, दिल तड़पने लगे हम तड़पने लगे। आप सुन रहे हैं सेगमेंट लव स्टोरीज।
1: ले रहे थे सांसें, जिंदा नहीं थे कभी हम। कुछ रिश्ते यूं ही आंखों के सहारे सांसों की डोर पर बंधे चले जाते हैं, जिसका कोई और नहीं होता, कोई छोर नहीं होता, बस बंधे चले जाते हैं और फिर ऐसे पक्के धागों में बदल जाते हैं जिन्हें अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ही कुछ रिश्तों पर आज हमारी लव स्टोरी है, जो कि आपका फेवरेट सेगमेंट है। स्पेशल है लव स्टोरी सेगमेंट। आज आप सुनेंगे कहानी अनकहा रिश्ता एपिसोड 3, और प्रेजेंट किए है शिवानी ने।
2: नमस्कार दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है अनकहा रिश्ता, जिसका आज आप सुनेंगे एपिसोड नंबर 3। जी हाँ दोस्तों, कल हमने सुना था कि आज आर्यन ने सभी श्रोताओं को अपने बारे में 2 लाइन लिखने के लिए रिक्वेस्ट की थी, और नैना ने भी अपने बारे में वो 2 लाइन लिखी थी। और अब देखते हैं दोस्तों कि क्या वो मैसेज आरजे आर्यन पढ़ता है या नहीं। नेक्स्ट डे प्रोग्राम शुरू होता है। नैना हर रोज़ की तरह इंतज़ार करती है एक आवाज़ को सुनने के लिए। तभी आरजे आर्यन की आवाज़ आती है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक चीज़ बदल रही है। पहले मुझे लगता था दोस्तों कि मैं सिर्फ गाने सुनाता हूँ और लोग सुनकर सो जाते हैं, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि कोई सिर्फ सुन नहीं रहा है बल्कि महसूस कर रहा है। मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन हर रात एक मैसेज जरूर आता है। कभी उसमें लिखा होता है, आज का दिन थोड़ा मुश्किल था लेकिन आपकी आवाज़ सुनकर अच्छा लगा। कभी लिखा होता है, थैंक यू मुझे समझने के लिए। आज आर्यन आगे कहता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि ये कौन है, लेकिन हाँ एक बात तो है, अब मैं भी उसके मैसेज का इंतज़ार करने लगा हूँ। उधर नैना के लिए सिर्फ प्रोग्राम नहीं था, अब ये उसकी आदत बन चुका था।

0: दिन चाहे कैसा भी रहा हो, लेकिन रात 10 बजे वो आवाज जो उसे अब अकेला महसूस नहीं होने देती थी। एक रात आरजे आर्यन ने शो में कहा, दोस्तों कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम अकेले नहीं होते, बस हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिला होता जो बिना बोले भी हमें समझ ले। उधर नैना ने भी उस रात मैसेज टाइप किया और उसमें एक लाइन लिखी, कभी कभी एक आवाज भी दिल में ऐसी जगह बना लेती है जहाँ कोई और पहुंच ही नहीं पाता। वैसे दोस्तों कहते हैं कुछ रिश्ते मिलकर नहीं बनते, वो बस महसूस होकर बन जाते हैं। दोस्तों क्या नैना सिर्फ एक श्रोता है या फिर कोई ऐसा रिश्ता शुरू हो रहा है दोनों के बीच जिसका नाम अभी पता ही नहीं? दोस्तों ये जानने के लिए आपको सुनना होगा हमारा अनकहा रिश्ता का एपिसोड नंबर 4।
1: तो दोस्तों क्या आपको इंतजार रहेगा एपिसोड नंबर 4 का कि आखिर होने क्या वाला है इस अनकहे रिश्ते में? तो इंतजार आप करते रहिएगा, फिलहाल हम आपके दिमाग को थोड़ा एंटरटेन कर देते हैं, यानी कि अब हमारे सेगमेंट में जरूरत है खूबसूरत से गीत की।

0: तो दोस्तों हमने पूछा था आपसे भूजो तो जाने का सवाल, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, और जिसका सही जवाब है 5 नवंबर 1556।
1: और सही जवाब देने वाले हमारे साथी हैं दोमेंद्र नेथम, सुदर्शन शाह, पंडराजी नावकर, हीरामानी वर्मा, नानक खन्ना, जगदीश धाकर, जॉन डिकेस्ट्रो, गंगा सिंह रावत, दिनेश वर्मा, नदीम बाकी, अनिल बनोचा, मोहम्मद रफीक पवार, दिनेश वर्मा, भागवत लाडला जी, बी आई धाकर, मसरूर हसन, अनोखे लाल।
0: तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम, हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। हमारा खत लिखने के लिए पता है कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763। पता एक बार फिर से दोहरा देते हैं ताकि आपको और आसानी हो जाए। कार्यक्रम युवाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है 246763।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे जो लिसनर्स हैं उनका प्यार हम पर बना रहे तो उसके साथ हम सोशल मीडिया पर सारी अपडेट शेयर करते रहते हैं। तो हमारा फेसबुक अकाउंट है आकाशवाणी नजीबाबाद, इंस्टाग्राम भी आकाशवाणी नजीबाबाद, और यूट्यूब चैनल भी हमारा सेम है ताकि आपको ढूंढने के लिए कोई दिक्कत ना हो। आप साथ ही हमारे सारे प्ले कहानियाँ जो भी प्रोग्राम्स हमारे यूट्यूब चैनल हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर अपलोडेड हैं आप देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सारा प्यार दीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी साथी नंदिनी
0: और यूसुफ अज़ैदी को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज रात 8 बजे आप सुनेंगे संसद समीक्षा और रात 9:30 पर प्रसारित की जाएगी चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कानून की बात, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से शाम 7:30 पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की। इससे पहले सुबह अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग करने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
1: उधर राज्यसभा में भी इसी तरह की

0: स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही तीसरी बार स्थगन के बाद दोपहर में फिर शुरू हुई, तब भी विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन में चलाने में सहयोग करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
1: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा स्थिति के कारण झंडेवालान मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया है। इससे पहले 16 मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा की गई थी। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिये शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। शुरुआती खबरों के अनुसार सुरंग में 25 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि खराब मौसम के कारण बचाव कार्य प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में कल तक मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन तक तेज बारिश हो सकती है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज महिला सिंगल्स मुकाबले में सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को आपके भैया जितेंद्र कुमार की राम राम। और भाई सब राज्य खुशी? देखो भाई सब ठीक ठाक होंगे और हमारे भाइयों की खेती किसानी भी ठीक ठाक चल रही होगी। भैया देखो खरीफ में हमारे भाइयों ने इस समय भैया धान की फसल पूरी लगा कर तैयार कर ली होगी और भाई साथ ही साथ हमारे भाई इस समय अपने खेतों की निगरानी कर रहे होंगे। देखो भाई हमारी नकदी फसलों में मुख्य फसल गन्ना की है और गन्ने में भैया बरसात के मौसम में देखो बेलदार खरपतवार उग आते हैं, साथ ही साथ काफी ऐसे रोग हैं जो हमारे गन्ने में दिखाई देते हैं। जैसे भैया सभी किसान बहन भाई हमारे जागरूक हैं और जानते भी हैं कि भाई पोक्का बोइंग की ऊपर की जो गोप होती है वो भैया छड़ी नुमा हो जाती है, मुड़ जाती है, तो उसकी पहचान इस तरह से हमारे किसान भाइयों को हो जाती है और भैया पौधा हमारा पीला सा पड़ जाता है गन्ने का। तो भाई इस तरह से यदि आपकी फसल में कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो भाई आप समझ लें कि हमारे खेत में पोक्का बोइंग रोग के लक्षण आ गए हैं। साथ ही साथ भाई इस समय देखो जिससे हमारे किसान भाइयों की काफी नुकसान काफी हानि हुई है भाई रेड रोट जिसे लाल सड़न कहते हैं, गन्ने का कैंसर कहते हैं, उसके लक्षण भी इस उमस भरी गर्मी में अधिकतर दिखाई देते हैं। और जो हमारी CO0238 गन्ना प्रजाति है भाई उसमें तो रेड रोट निश्चित रूप से होगा यदि हमारे किसान भाई अपने खेत की समय से निगरानी करें और समय से भैया उसका निवारण करें, नियंत्रण करें, तो भाई आप इस रेड रोट को अपने खेत से नियंत्रण कर सकते हैं। अन्यथा भाई ये एक बहुत ही भयानक और कष्टदायी रोग है क्योंकि हमारी जो फसल है उसको ये पूरा नष्ट कर देती है। तो भाई इस रोग से आप अपनी फसल को समय से बचाएं और अपनी आमदनी में चार चांद लगाएं। खैर भाई देखो हमारे किसान भाई खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन करते हैं क्योंकि पशुपालन और खेती दोनों भाई एक दूसरे के ऐसे पूरक व्यवसाय हैं कि भाई एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। भाई खेती खेती हम कर रहे हैं, पशुपालन नहीं कर रहे हैं, तो भाई हमारी खेती से हमारे किसान भाइयों का इतनी उपज नहीं मिलने के कारण इसका यो है कि भाई हमारे खेतों को गोबर की सड़ी खाद चाहिए यानी देसी खाद चाहिए, तो भाई उसकी जरूरत की पूर्ति करने के लिए भाई हम जो है पशु रखने होंगे। और पशुओं के साथ साथ भैया यदि पशु रखते हैं हम तो भाई उससे हमारी डबल आमदनी हो जाती है। एक तो भाई हमारे खेतों के लिए गोबर की सड़ी खाद मिल जाहा, दूसरे भाई हमारे बालकों को हमारे बच्चों को जो है दूध पीने को मिल जाए करे जिससे भाई हमारे बालक जो है हष्ट पुष्ट बलिष्ठ रहते हैं और भाई अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो भाई घर का दूध हो जाहा कह दें ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो भाई इस तरह से जो है हमारे किसान भाई अपने कार्य करते भी रहते हैं समय समय से क्योंकि सभी भाई हमारे जागरूक हैं। तो भाई हम जो है देखो पशुओं का ध्यान रखना यानी पशुओं के खान पान का ध्यान रखना है, उन्हें किस तरह से हमारा चारा खिलाना है, किस तरह से दाना मिश्रण खिलाना है, थोड़ी सी बातचीत पशुओं संबंधित भी करो लें कि भाई पशुओं के लिए दाना मिश्रण का क्या महत्व है। तो भाई देखो पशुओं को अच्छा स्वस्थ और अधिक दूध प्राप्त करने के लिए हम हरे चारे के साथ साथ दाना मिश्रण बहुत जरूरी होता है। भाइयों संतुलित आहार से पशुओं को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन

0: और भाई बाकी जो है हमारे पशुओं को हरा चारा और भूसा खिला दें, और वो दाना मिश्रण भी भैया हरे चारा भूसे पर लगा कर खिलाए करें भाई। ऐसा नहीं है, हम जो है दाना अपने पशु को रक्त मिश्रण अच्छी तरह से पिलाना है, घोल कर पका कर जैसे भी आपको अच्छा लगे, तो इस तरह से भाई उसको अच्छा गुण देगा वो, और अच्छा दूध उत्पादन हमारे किसान भाइयों को मिलेगा। अब बात आती है कि भाई हम दाना मिश्रण तैयार कैसा करना है, इस दाना मिश्रण को बनाना कैसा है या कहाँ से हमें प्राप्त होगा। तो भाई यदि आप अपने घर पर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बाजार से भी दाना मिश्रण खरीद सकते हैं। दूसरे यदि कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो जागरूक हैं, जानकारी रखते हैं, और आजकल तो भैया देखो इंटरनेट का जमाना है, सभी के पास बड़े फोन हैं, तो भैया ज्यादातर हमारे किसान भाई जो है फोनों से देख ले हैं कि भाई कितना हमें क्या क्या मिलाना है, लेकिन भाई फिर भी थोड़ा सा किसान भाइयों को यदि हमारे किसान भाई घर पर बनाना चाहते हैं तो भाई थोड़ी सी बातचीत किसान भाइयों से हम भी करो लें कि भाई आपको क्या चीज कितनी मिलानी है। भाई इसमें दाना मिश्रण में हमें भैया ध्यान यो रखना है कि हमारे पशु के लिए उसमें ऊर्जा की पूरी मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, खनिज मिश्रण होना चाहिए। तो भाई उसके लिए यदि आप मक्का, गेहूं का चोकर, चना, सरसों या सोयाबीन की खली और मिनरल मिक्सचर तथा नमक उचित मात्रा में मिलाएं तो भाई वो उचित और संतुलित दाना मिश्रण हमारे पशु के लिए होता है। अब बात यो है कि ये कितनी कितनी मात्रा में हमें मिलाने हैं। तो भाई अगर मक्का की बात करें हम, मक्का का दाना आपको ले लें या पिसा हुआ मक्का ले लें या जो बाजरा ले लें, वो भैया आप 30 से 35 किलो ले लें, साथ ही साथ चोकर आप 30 किलो लें, खली 20 किलो लें, और चना भैया आप 10 से 12 किलो आप ले सकते हैं। और इसमें हमें मिलाना है मिनरल मिक्सचर 2 2 किलो और नमक 1 किलो। तो इस प्रकार यदि आपको 100 किलो दाना या 1 कुंटल दाना तैयार करना है तो इस प्रकार आपका ये दाना मिश्रण तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ आप अपने पशु को इसके साथ साथ थोड़ा सा गुड़ भी खिला सकते हैं, इसमें गुड़ मिलवा सकते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा दाना मिश्रण बनाने के संबंध में और भैया बनाने के बाद एक बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है कि दाना मिश्रण बनाने के बाद हम जहाँ रखना है ना वो, तो भाई उस जगह पर भैया नमी ना आती हो, या नमी हमारे दाना मिश्रण में, क्योंकि बरसात का मौसम है, हर चीज़ का हमें ख्याल रखना हो, तो भाई ख्याल हमारे किसान भाई रखे भी हैं, तो भाई उसको थोड़ा सा नमी से या प्लास्टर से ऊपर रखें, यानी कि जो हम जहाँ रखते हैं उसको उसमें थोड़ा ईंट रख लें, फंटी रख लें या कुछ इस तरह का सामान रख लें जिससे भैया वो जमीन के स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए और नमी सीधे उसको प्रभावित ना करे। दूसरे भाई हमें इतना दाना मिश्रण तैयार करना है, चाहे भाई 100 किलो यदि आपकी खपत है 15 दिन में 20 दिन में, तो भाई आप जो है 15 दिन का या 20 दिन का दाना मिश्रण बनावें। बरसात में अधिक लंबे समय का दाना मिश्रण बनाने से भाई कहीं ना कहीं जब मौसम में आर्द्रता होती है, नमी होती है, तो कहीं ना कहीं दाना मिश्रण भी हमारा प्रभावित होता है, और उसके बाद भाई हमारा पशु उसको खाने में थोड़ा सा असमंजस में आ जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि भाई हम अपने पशु को दाना मिश्रण खिलाते समय यदि हमारा पशु जो दिख रहा कि भाई हमारा पशु से जी देख कर नहीं खा रहा या लगाव से नहीं खा रहा, तो भाई आप उसमें 2-4 किलो गुड़ मिलाकर भी आप अपने पशु को खिला सकते हैं, क्योंकि भाई गुड़ मिलने से वो मीठा हो जाएगा और हमारा पशु जो है उसे चाव से खाएगा। लेकिन भाई हमें नमी का और दाना मिश्रण का ध्यान रखना है, साथ ही साथ अब हमें खिलाना कितना है थोड़ा सा ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। भाई ऐसा 1 कुंटल दाना मिश्रण बना रखा, एक दिन तो हमने खुला दिया अपने पशु को 10 किलो और एक दिन ना दिया भैया 1 किलो भी, तो इस चीज का भी ध्यान रखना कि भाई हम अपने पशु को भार के अनुसार 2.5 किलोग्राम दाना, और भाई यदि हमारा पशु 2.5 किलोग्राम दूध दे रहा है तो भाई उसको 1 किलो दाना दूध के ऊपर देना, जिससे भाई हमारा पशु जो है कमजोरी एहसास नहीं करने का। इस तरह से हमें अपने पशु को जितना हमारा पशु दूध दे रहा उतना ही हम दाना उसके लिए बढ़ा दें। तो इस प्रकार आप अपने पशु को दाना मिश्रण खिलावें, और दाना मिश्रण खिलाकर अपने पशु से अच्छा दुग्ध उत्पादन लें और अपनी आमदनी में 4 चांद लगाएं। तो भाई देखो बातचीत तो हम आपसे और भी करेंगे, साथ ही साथ कराएंगे आपका मनोरंजन भी, लेकिन इस समय कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: तो संदेश के बाद एक बार फिर हमारे सभी किसान बहन भाइयों का स्वागत है कार्यक्रम में। और भाई देखो, हम जो है पशुपालन कर रहे हैं, साथ ही साथ खेती किसानी कर रहे हैं, तो भाई पशुपालन को हम सह व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं। साथ ही हमारे कुछ किसान बहन भाई और नौजवान साथी आजकल खेती के साथ साथ सह व्यवसाय की ओर रुख भी कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो बढ़ती जनसंख्या और छोटी होती जोत की भूमि को देखते हुए ये जरूरी भी है। यदि हमें 12 महीने और परमानेंट आमदनी चाहिए तो भाई हमें सह व्यवसाय से जुड़ना होगा। और सह व्यवसाय के रूप में आप भैया मत्स्य पालन कर सकते हैं, यानी कि मछली पालन कर सकते हैं। क्योंकि मछली पालन हम इसलिए भी थोड़ा सा बता रहे हैं कि भाई मछली पालन जो है एक कम पूंजी का कम लागत का व्यवसाय है, और भाई इसे करके हमारे किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई मत्स्य पालन जब हम कर रहे हैं तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि मछली पालन से संबंधित कोई ऐसी योजना भी है या नहीं है, जिसका भैया हमारे किसान भाई हमारे नौजवान साथी अपने व्यवसाय में लाभ ले सकते हैं। तो भाई योजना के बारे में हम किसान भाइयों को थोड़ा सा बता दें कि भाई एक ऐसी योजना भी मत्स्य पालन से चल रही है, जिससे हमारे किसान भाई हमारे नौजवान साथी जो मत्स्य पालन से जुड़ना चाहते हैं तो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं भैया। तो भाई योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। भाई इस योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने ये बहुत ही कारगर कदम उठाया, और भाई ये ऐसी योजना है जो कि बहुत ही प्रमुख योजना है और इसे सुचारू रूप से भैया चलाया जा रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है मत्स्य पालन और मछुआरों की आय को बढ़ाना। भाई आधुनिक मत्स्य और संरचना विकसित करना, भाई रोजगार के अवसर बढ़ाना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं। और हमारे जो मछली पालक हैं वो भैया इसमें आर्थिक मदद भी ले सकते हैं, मछली पालन के लिए मदद ले सकते हैं, तालाब बनाने के लिए मदद ले सकते हैं, वायु फ्लोक बनाने के लिए, हैचरी आदि का व्यवसाय करने के लिए भाई वित्तीय सहायता हमारे किसान भाइयों को सरकार द्वारा दी जाती है। साथ ही साथ भाई इसमें जो है थोड़ी सी पात्र लाभार्थियों के बारे में बता दें हम कि किसे जो है कितनी छूट या कितना अनुदान मिलता है। तो भाई मछली के भंडारण, परिवहन और विपणन के लिए सहायता पात्र लाभार्थियों को लागत का सामान्यतः भैया 40% तक मिलता है, और महिलाओं को SC और ST जो पात्र हमारे श्रेणी में आते हैं उन्हें भैया 60% तक अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है, और भाई 40% जो है जो उपभोक्ता होते हैं वो वहन करते हैं। तो इस तरह से भैया आप मत्स्य पालन का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ ले सकते हैं। तो भाई इस तरह से आप जो है, और बात हम करेंगे कि इसमें आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। तो भाई आवेदन की जहां तक बात है तो इसमें मछुआरे होते हैं, जो मत्स्य किसान है, जो मत्स्य पालन करना चाहते हैं या कर रखा है, और भैया एक होता है स्वयं सहायता समूह जिसमें भैया जुड़े हुए होते हैं गांव के लोग, तो भैया वो भी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं और इस जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ किसान उत्पादक संगठन होते हैं वो भी इसका लाभ ले सकते हैं और भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो भाई देखो आमदनी से जब बात होती है तो हमारे किसान भाई आमदनी कई प्रकार से लेते हैं, यानी खेती के साथ साथ सह व्यवसाय कर लिया या खेती के साथ साथ भैया बाग लगा लिए। तो भाई आजकल जो बरसात का मौसम है इस समय हमारे किसान भाई कुछ जो शौकीन होते हैं वो बाग भी लगा देते हैं या नए पौधे फलदार वृक्ष लगा लेते हैं, तो भाई वो मेड़ों के किनारे भी लगा लेते हैं, पूरे खेत में भी लगा लेते हैं। तो इसी से संबंधित एक अपने किसान भाइयों के लिए हम जानकारी लेकर आए हैं। भाई जानकारी का विषय है नए फलदार वृक्षों की रोपाई करते समय सावधानी। भाई जानकारी दे रही हैं डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में प्रभारी डॉक्टर हैं, और उनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया प्रमोद सिंह। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
1: किसान भाइयों, हम अपने इस कार्यक्रम में आपको सभी फसलों के संबंध में जानकारी दिलवाते हैं, चाहे वो हमारी धान की फसल हो, गन्ने की फसल हो, चारे वाली फसलें हो या दूसरी फसलें हो। और भी

0: साथ ही साथ हम आपको बागवानी के संबंध में भी जानकारी देते रहते हैं और विशेषज्ञों से भी हम आपको जानकारी दिलवाते हैं। बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो कि नए बाग लगाते हैं, कुछ लगाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए, नए फलदार वृक्षों की अगर बात की जाए तो नए फलदार वृक्षों की रोपाई करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र नगीना जनपद बिजनौर की डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: डॉक्टर साहब, जो हम बात कर रहे हैं कि हमें नए फलदार वृक्षों की रोपाई करनी है, हमें कौन कौन सी सावधानियां उसमें बरतनी चाहिए, तो हम सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय हमारे जो किसान भाई हैं वो कौन कौन से बाग लगा सकते हैं।
1: सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर और नमस्कार किसान भाइयों। मैं आपको बता रही हूँ, इस समय में आप आम लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं, लीची लगा सकते हैं, आलू बुखारा लगा सकते हैं, आड़ू लगा सकते हैं, क्योंकि ये मौसम बहुत अनुकूल है। जो बरसात का समय होता है, हम लोग अनुशंसा करते हैं ऐसा कि इस टाइम पे बाग लगाना किसान भाइयों के लिए बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर बाग आम, अमरूद, लीची और नींबू, इन्हीं सभी के बाग हैं।
0: बिल्कुल आपने सही बताया डॉक्टर साहब। देखिए, जो हमारे किसान भाई नए बाग लगाएंगे, वो पौध की रोपाई करेंगे, तो उस समय बहुत सारी बातें उनको ध्यान में रखने की जरूरत होती है, तो वो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो किसान भाइयों को बरतनी चाहिए।
1: देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि बाग लगाना जो है वो दीर्घकालीन निवेश है, और यदि दीर्घकालीन निवेश है तो यदि आप स्टार्टिंग में यदि बाग लगाते समय कोई गलती हो जाती है तो बागवान भाई को इसके जो है परिणाम लंबे समय तक भुगतने पड़ते हैं, उसके दुष्परिणाम आते रहते हैं। और जो भी बाग लगाएं, बहुत सोच समझ कर प्रजातियों का चुनाव करते हुए, विधियों का पालन करते हुए, किस दूरी पे लगाना चाहिए, किस समय पे, किस मौसम पे पौधे लगाने चाहिए, किस टाइम पे पौधे लगाने चाहिए, किस दिशा में पौधे लगाने चाहिए, बाग का क्या विन्यास होना चाहिए, तो इन सब चीजों के लिए क्या भूमि की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो हमें हर बात का ध्यान रखना चाहिए।
0: आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमारे भाइयों को बहुत सारी बातें हैं जो नए बाग लगाते समय ध्यान में रखने की जरूरत उनको होती है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम आपसे अगर बात करें कि अगर कोई किसान भाई बाग की स्थापना करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, ये हम आपसे जान।
1: जी बिल्कुल, क्वेश्चन अच्छा किया है सवाल। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, जब भी किसान भाई बाग लगाना चाहते हैं, सबसे पहले वो उस स्थान को देख लें। दूसरा, प्रजातियों का चुनाव। देखिए, प्रजातियों का चुनाव बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि प्रजाति अच्छी है तो लॉन्ग टर्म तक आपको अच्छा फायदा देगी। तो प्रजातियों में आप क्यों ना सिर्फ एक प्रजाति की तरफ मत जाइए। मैं किसान भाइयों से यह आग्रह करूंगी कि अगर आप प्रजाति लगा रहे हैं तो उसमें आगेती प्रजाति, मध्यम प्रजाति, समय से तैयार होने वाली प्रजाति और देर से तैयार होने वाली प्रजाति, इन सभी प्रजातियों को आप सम्मिलित करें, क्योंकि इसका लाभ आपको जब हार्वेस्टिंग होगा, जब आप फलों की तुड़ाई करेंगे, तो वो सिर्फ एक चरण में नहीं होगा, वो कई चरणों में होगा। तो इससे क्या होगा, एक तो आपको एट ए टाइम एक ही समय पे फल नहीं मिलेगा, वो आपको कई चरण में मिलेगा, और जो मार्केट का प्राइस है, रेट है, वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो प्रजातियों के चुनाव में, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादातर आम के बाग हैं, तो आम के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आम में हमारे यहाँ ज्यादातर दशहरी, जो कि जून में आता है, और लंगड़ा और चौसा, जो कि आपका जुलाई और अगस्त में आता है, और दूसरा रामकेला है और गुलाब जामुन है, तो ये प्रजातियां हमारे यहाँ ज्यादा प्रचलन में है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो रंगीन किस्में हैं, रंगीन किस्मों की भारी डिमांड है, और भविष्य में रंगीन किस्में किसानों के लिए बहुत लाभकारी होंगी। उसमें से एक प्रजाति है आपकी अंबिका और दूसरी प्रजाति है अर्णिका। अच्छा। ये प्रजाति CISH लखनऊ, जो कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा निकाली गई है, और बहुत ही अच्छी प्रजाति है। ये तो आम की प्रजाति है। दूसरा अमरूद। अमरूद में आप देखेंगे लखनऊ 49 L49। अच्छा। जिसे हम सरदार भी बोलते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: तो उसका प्रचलन हमारे यहाँ पे ज्यादा है। और दूसरी वैरायटी जो CISH लखनऊ ने निकाली है वो है धवल, श्वेता, ललित। ये प्रजाति बहुत अच्छी है। और तीसरा है नींबू। नींबू भी हमारे यहाँ बहुत खेती कर रहे हैं किसान, हमारे बिजनौर जिले के जो कृषक हैं बहुत प्रोग्रेसिव हैं। और नींबू में एक प्रजाति आती है कागजी नींबू, नाम से ही प्रतीत होता है कि उसका छिलका कागज की तरह।

0: होता है और रस से भरा होता है, तो कागजी नींबू, दूसरा है प्रमालिनी, तीसरा है यूरेका वैरायटी। ये काफी अच्छी फेमस हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है। और एक लीची, देखिए लीची जो है मार्केट में बहुत अच्छा रेट दे जाती है हमारे कृषक बंधुओं
1: जी
0: को,
1: जी
0: तो लीची में हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा चलती है वो है बेदाना, और दूसरी है कलकत्ता लीची, तीसरा है एक वैरायटी देहरादून।
1: जी
0: इसमें फल जो है बड़े आकार के होते हैं और गुठली जो है छोटी होती है। तो हमारे कृषक बंधु से निवेदन है, प्रजातियों का चुनाव जब भी करें वो कृषि विज्ञान केंद्र से एक बार सलाह जरूर लें।
1: आपने बहुत सारी प्रजातियों के बारे में बताया, चाहे वो आम हो, नींबू हो, लीची हो, अमरूद हो, सभी के बारे में बताया। और हमारे जो भाई नए बाग लगाना चाह रहे हैं वो समझ भी रहे होंगे कि हमें अपने क्षेत्र के अनुसार कौन सी प्रजाति किस फल की लगानी है।
0: जी
1: ये सारी बातें आपने बताई हैं, लेकिन डॉक्टर साहब देखिए बहुत सारी बातें ध्यान में ये भी आती हैं किसान भाइयों के कि जो पौध हम लेकर आ रहे हैं या कहीं से लेकर आएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, कैसी पौध होनी चाहिए, कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए पौध को लेते समय।
0: देखिए, पौध सामग्री केवल सरकारी और मान्यता प्राप्त जो भी पौधशालाएं हैं वहां से लेना चाहिए,
1: जी जी जी
0: और दूसरा एनएचबी से जो अप्रूव्ड जो नर्सरीज होती हैं, यदि एनएचबी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, यदि वहां से उसको मान्यता नहीं मिली है तो वहां से पौधे कदापि ना ले। और उद्यान विभाग है आपका, यूनिवर्सिटीज हैं आपकी, एक्रेडिटेड नर्सरीज हैं जो मान्यता प्राप्त नर्सरीज हैं। और जब भी कृषक बंधु पौधे लें तो उसमें एक बात ध्यान रखें कि 10 से 15% पौधे अधिक उनसे सुरक्षित करवा लें, क्योंकि आपको पौधे लगाने के बाद कुछ पौधे 10 से 15% मरते हैं, तो आप गैप फिलिंग कर सकें।
1: अच्छा, तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। देखिए पौध भी हमारे किसान भाई ले लेते हैं, विश्वसनीय नर्सरी से वो लेकर आए हैं। अब उस पौध को जहां पर हमें रोपित करना है, उस भूमि को जो तैयार करना है, वो भूमि कैसी होनी चाहिए, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, ये बात भी हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब।
0: देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब भी हम बाग लगाते हैं तो ये सबसे बड़ा मेन रीजन है कि जब भी हम, जैसे आम है अमरूद है, जो भी पौधे हम लगाते हैं उसको 3 × 3 × 3 फिट यानी 3 फिट लंबा, 3 फिट चौड़ा और 3 फिट गहरा, आम और लीची, ये दोनों पौधों को आप जो है 3 3 फिट के गड्ढे बनाने पड़ेंगे और जून के माह में बनाने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, यदि आप अमरूद लगा रहे हैं या नींबू लगा रहे हैं, उसके लिए 2.5 2.5 फिट के आपको गड्ढे बनाने पड़ेंगे। दूसरा, बाग लगाने हेतु लगभग 1 माह पूर्व जो भी निर्धारित दूरियों पर गड्ढों की खुदाई के समय ऊपर की मिट्टी को एक तरफ और नीचे की मिट्टी को एक तरफ,
1: जी
0: ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं, जब ऊपर की मिट्टी चूंकि उपजाऊ कम होती है और नीचे की मिट्टी उपजाऊ ज्यादा होती
1: जी
0: है, तो जब भी आप नीचे की मिट्टी निकालते हैं उसमें आपको करना क्या है, गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद, करीब अगर 1 वर्ष का पौधा आप शुरू में बाग लगाना चाहते हैं तो 5 से 10 किलो सफिशियंट है। यदि आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप केचुआ खाद भी ले सकते हैं,
1: जी
0: साथ ही साथ नीम की यदि खली हो तो 1 किलो आप नीम की खल मिला लें। और दूसरा, यदि उसमें आपका दीमक और फंगस से बचाव के लिए आप ट्राइकोडर्मा 250 से 300 ग्राम ट्राइकोडर्मा जरूर यूज करें, तो ये। और दूसरा, जैसे आपका 1 साल का आम का पौधा है तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा आपको 100 ग्राम,
1: जी जी जी
0: फास्फोरस की मात्रा आपको 80 ग्राम, पोटास की मात्रा आपको 60 से 80 ग्राम। इसका मतलब ये है, यदि 10 वर्ष का पौधा है तो आपको 1 किलो नाइट्रोजन और इसी हिसाब से आपको फास्फोरस 750 ग्राम और 750 ग्राम पोटास, आपको इतना प्रति पौधा हर साल आपको खाद देना है। और खाद देने का तरीका यह है
1: जी
0: कि जब आपके आम की तुड़ाई हो जाए, फल आपका टूट चुका हो अगस्त माह में, तब आप सितंबर में, सितंबर हम लोग अनुशंसा करते हैं कि किसान भाई सितंबर में खाद पौधों को दे दे।
1: देखिए डॉक्टर साहब, हम नए बाग लगाने की बात कर रहे हैं और जो हमें उसमें उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, आपने उसके बारे में भी जानकारी दी। और साथ ही साथ आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि जिन भाइयों के बाग खड़े हुए हैं, पौधे पहले उन्होंने लगाए हैं, कितने वर्ष का वो पौधा है, उसके हिसाब से उसमें कितना हमें उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, ये सारी बात आपने बताई है। और हमारे
0: जी
1: किसान भाई इस बातचीत को बड़े ध्यान से सुन भी रहे
0: जी
1: हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात सामने आती है, आपने कहा कि हमें जून के महीने में गड्ढे खोदने चाहिए और ये सब तैयारी कर लेनी
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बिल्कुल
1: अब बाग लगाने का जो समय है, उचित समय की अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, तो कौन सा है?
0: हम लोग बरसात सीजन ही अनुशंसा करते हैं, लेकिन यदि कोई कृषक बंधु

0: बरसात के अलावा भी पौधा लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है बसंत ऋतु में, जैसे फरवरी मार्च में। लेकिन उस टाइम पे दिक्कतें क्या आती हैं किसान भाइयों के सामने, क्योंकि जो मई और जून की जो बहुत भीषण गर्मी होती है उससे नौ रोपित जो पौधा है उसे बचाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो यदि पानी की व्यवस्था है तो आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। आप जून जुलाई सबसे अच्छा मौसम है, मैं इसके लिए आपको बता दूं, जून में आप गड्ढे बनाकर छोड़ दीजिए, और गड्ढे मैंने आपको बताया 3 फिट लंबा, 3 फिट चौड़ा और 3 फिट गहरा आम और आपके लीची के लिए। अगर नींबू और अमरूद लगा रहे हैं ढाई ढाई फिट के गड्ढे बनाने पड़ेंगे। और जब भी आप गड्ढे बनाएं रस्सी की सीध में आप बनाएं, ताकि जब आपका बाग बाद में देखने में सुंदर लगे। तो इस हिसाब से, और जब भी आप गड्ढे की भराई करें तो आपको ध्यान रखना है कि गड्ढे की भराई करते समय आपको कम से कम 10 सेंटीमीटर ऊपर तक मिट्टी भरना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि अक्सर भूमि दबती है, जब दबती है तो फिर उसमें दिक्कतें आती हैं। तो आपको 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ऊपर तक आपको मिट्टी भरना है, और थावला बनाकर और सिंचाई कर देना।
1: जी, थावला भी बनाना है और हमें उसकी जब रोपाई करनी है। तो यहाँ ये बात भी हमारे किसान भाइयों के दिमाग में इस समय आ रही होगी कि जो पौधे से पौधे की दूरी है वो कितनी होनी चाहिए।
0: पौधे से पौधे की दूरी

0: है तो 8 × 10, 8 मीटर पौधे से पौधे की दूरी, और आपका 10 मीटर पंक्ति से पंक्ति की दूरी। और आम में जो एक लेट सीजन वाली लंगड़ा और चौसा, उसकी जो दूरी है वो ज्यादा रखते हैं हम दशहरी और आम्रपाली की
1: अच्छा
0: अपेक्षा।
1: जी,
0: उनका 5-5 मीटर दशहरी आम्रपाली का, और चौसा और लंगड़ा यदि कृषक बंधु ये लगाते हैं, क्योंकि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनका बाग बहुत ज्यादा है, तो 8 × 10 मीटर में 8-8 मीटर पौधे की दूरी और 10 मीटर जो है आपको पंक्ति से पंक्ति की दूरी। ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि भविष्य में जब पौधे बड़े आकार के हो जाते हैं तो उसमें ट्रैक्टर भी चलाना पड़ता है, जो भी कर्षण क्रियाएं हैं बहुत आसानी से हो सके,
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छे से हो जाए, इसके लिए हमें भविष्य का ध्यान भी रखना चाहिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला है कि जो बाग है वो दीर्घकालीन निवेश है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और देखिए डॉक्टर साहब, हम बाग लगा लेते हैं और उस पौध को जो हमने रोपित की है, उस पौध को बचाना, उसको जीवित रखना, ये बहुत बड़ा काम होता है। तो हमें उस पौध को किस प्रकार से जीवित रखना होगा, कैसे उसको एक अच्छा पेड़ बनाना होगा, इसके लिए हमें कौन कौन से काम?
0: जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, एक तो उसमें होता है जहां से कलम बांधी जाती है,
1: जी
0: तो एक
1: जी
0: होता है नीचे का पोर्शन मूल ग्रंथ और ऊपर का पोर्शन होता है सायन, जिसे हम बोलते हैं सांकुर। तो जो कलम बांधी होती है, तो हम कलम द्वारा तैयार आम के पौधे जब प्रक्षेत्र में लगाए जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि मूल ग्रंथि से कई कल्ले निकलते हैं, तो उन कल्लों को प्रारंभ में यदि हम नहीं निकालते हैं तो वो अल्टीमेटली करेगा क्या, सांकुर की वृद्धि को रोक देगा। तो सांकुर की वृद्धि को ना रोके इसलिए नीचे की जो भी वृद्धि होती है, जैसे आपने पौधा लगा दिया, यदि पौधों को प्रक्षेत्र में लगाने के लगभग 2 महीने बाद जिस स्थान पर कलम बांधी गई हो, उस कलम बांधने की जगह पन्नी बांधी होती है। जब भी हम बडिंग और ग्राफ्टिंग करते
1: हाँ
0: हैं
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वहां से पन्नी को बांधते हैं, तो जब भी प्रक्षेत्र में लग जाए पौधा, उसको चाकू की मदद से या किसी भी आपके पास जो भी चीज हो उसको काटकर हटा दें।
1: पन्नी को हटा दें।
0: जी, पन्नी को हटा दें।
1: अच्छा
0: ठीक है, दूसरा, प्रथम वर्ष में क्या करना है, काफी देखभाल की जरूरत होती है।
1: देखिए डॉक्टर साहब, आपने बरसात से कैसे बचाना है इस बारे में अभी तक हमारी कोई
0: जी
1: बातचीत नहीं हुई। बरसात होती है और इस मौसम में बरसात चल रही है, तो नव रोपित पौधों को हम बरसात से, या ज्यादा पानी अगर उस थामले में भर जाता है, तो कैसे बचाएंगे उसको?
0: देखिए, ऐसा है, बरसात में जैसा आपने बोला नवरोपित पौधे को, सबसे पहले तो मैंने आपसे बोला है कि आपको मिट्टी थोड़ा ऊपर तक भरना है। ये इसीलिए कहते हैं, यदि जो कृषक बंधु मिट्टी 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर तक ऊपर नहीं भरते हैं
1: जी जी
0: और
1: जी
0: अल्टीमेटली उन्होंने जुलाई में पौधा लगा दिया,
1: हाँ
0: तो वहां की मिट्टी दबेगी, तो जब दबेगी तो ऑलरेडी पौधा आपका डैमेज होगा। तो आपको कोशिश करना है कि जब भी आप पौधा लगाएं, एक तो आप समय का ध्यान रखें, कभी भी सुबह के टाइम

0: आपका डैमेज होगा। तो आपको कोशिश करना है कि जब भी आप पौधा लगाएं, एक तो आप समय का ध्यान रखें, कभी भी सुबह के टाइम में पौधे ना लगाएं।
1: अच्छा,
0: क्योंकि सुबह के टाइम में यदि आप पौधे लगाते हैं तो दिन में जो सूर्य का प्रकाश है उसके कारण भी काफी पौधे जो उन परसेंटेज है सक्सेस होने का वो कम हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और यदि रह होता है शाम के टाइम में, वो वहां के दशा के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है, तो उसमें जो सक्सेस का परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। तो दूसरा, आपने जो क्वेश्चन किया कि कैसे बरसात से बचाएं, तो बरसात से बचाने का तरीका ये है कि हम पौधे को नीचे ना लगाएं, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर थोड़ा
1: ऊपर
0: ऊपर लगाएं, और वहां पर पानी ना भरने दें,
1: जी।
0: वहां जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए।
1: तो डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे उन भाइयों के लिए दी है जो नए बाग लगाना चाहते हैं, और किसान भाइयों की समझ में ये बात आ गई होगी कि उनको अपने नए बाग, चाहे वो आम के हैं, अमरूद के हैं, लीची के हैं, या जो भी बाग वो लगाना चाहते हैं, बाग
0: जी
1: लगाते समय कौन कौन से काम करने हैं, किसान भाइयों को ये सारी बातें पता लग गई हैं। तो डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता जी, आज आप हमारे इस कार्यक्रम में।
2: सरसों की रोपाई करते समय सावधानी। भाई देखो, डॉक्टर मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी नए फलदार वृक्षों के संबंध में दी कि हमें यदि नए फलदार वृक्ष लगाने हैं, चाहे आम के हों, अमरूद के हों, या लीची के हों, या भैया नींबू के हों, क्योंकि भाई हम जो है अपने आसपास भैया बाजार की डिमांड भी हमें पता होनी चाहिए। साथ ही साथ भाई देखो, डॉक्टर मैडम ने लगाने का तरीका बताया किस तरह से हमें जो है लगाना है और कितनी दूरी पर पेड़ पौधे लगाने हैं, साथ ही साथ जो गड्ढे खोदने हैं नए फलदार वृक्षों के लिए उसके बारे में डॉक्टर मैडम ने विस्तार से पूरी जानकारी दी। साथ ही डॉक्टर मैडम ने एक बात और बताई कि भाई ये लंबे समय का व्यवसाय है और लंबे समय तक हमें आमदनी भी देता है, तो हम जो है काफ़ी सावधानी भैया नए फलदार वृक्ष लगाने में रखनी चाहिए। यदि ये छोटी छोटी सावधानी आप रखेंगे तो भाई आप अपनी नए फलदार वृक्षों से और अपनी खेती किसानी से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। और भाई जब बात लाभ की होती है तो भाई लाभ एक और चीज़ से होता है, वो है भैया गीत संगीत। तो भाई बिल्कुल, किसान भाई भी सोच रहे होंगे कि भाई गीत संगीत की ओर कब चलेंगे, तो बिल्कुल भाई बिना देर किए आइए चलते हैं गीत संगीत की ओर और सुनते हैं ब्रह्मदेव आर्य से ये प्यारी सी रागनी।

अभी भाइयों ने ये रागनी सुनी, सब सिंगार सिंगर के कर लिए साही ढाल मर जानी ने, बंटा और टोकरी लेकर चली नवल दे पानी में। भाइयों उम्मीद करते हैं किसान भाइयों का दिन भर की थकान उतर गई होगी और भरपूर मनोरंजन हमारे किसान भाइयों का हुआ होगा। भाई देखो थोड़ी सी बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि भाई बरसात का मौसम है, पता नहीं किस समय बारिश हो जाए और किस समय भैया उजना हो जाए। तो भाई हम जो है अपनी खेती किसानी के काम मौसम को देख कर करने हैं। यदि हमें कोई खरपतवार नाशी का या किसी तरह का कोई स्प्रे अपनी फसल पर करना है तो भाई आप उस मौसम को देखते रहें। साथ ही साथ देखो भैया, अब घड़ी भी हमें इस ओर इशारा कर रही है और बातचीत की इजाज़त किसान भाइयों से बिल्कुल नहीं दे रही है। तो भाई आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, क्योंकि भाई आपकी चिट्ठी पत्रों के अनुसार ही हम अपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो भाई ये लिखने के लिए उठाइए कागज और कलम और लिखिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड है भैया 246763। भाई इस पते पर हमें आपके चिट्ठी पत्रों का इंतजार रहेगा। आप चिट्ठी पत्री में हमारे कार्यक्रम की भैया अवश्य लिखें कि आप हमारे कार्यक्रम में क्या सुनना चाहते हैं, क्या भैया आप कोई बात आपको यदि गलत लगती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ भैया आजकल देखो सभी के पास बड़े फोन हैं, तो भाई देखो सभी व्हाट्सएप चलाते हैं, तो एक हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, वो भी आप नोट कर लें, 9457-07-82-88। भाई नंबर एक बार फिर आपको हम बता दें, 9457-07-82-88। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं, लिख सकते हैं कार्यक्रम कृषि जगत, और जो भी भैया आप हमारे कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं या कुछ विशेष जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं वो आप हमें अवश्य लिख भेजें। और अब भाई कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया जितेंद्र कुमार को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों राम राम।

0: से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्स पर। शाम के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं वार्ता जिसका विषय है भारतीय संविधान में लोक कल्याण के तत्व। वार्ताकार हैं डॉक्टर अमित कुमार सिंह।
1: भारत आज विश्व का सबसे बड़ा और सबसे युवा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की एक और बड़ी विशेषता रही है इसकी विविधता और आर्थिक विकास। भारत सांस्कृतिक विविधता और बहुलता का देश है। यहाँ भाषाई, जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर गजब की विविधता है। भारत में करीब 100 से ज्यादा भाषा, 1600 से ज्यादा बोलियां, 7 दुनिया के सबसे बड़े धर्म को मानने वाले लोग, करीब 21 संप्रदाय के लोग भी यहाँ निवास करते हैं। आज जबकि समूचे संसार में सांस्कृतिक स्तर पर कट्टरता देखी जा सकती है, लेकिन भारत में सहिष्णुता और समावेशिता का अनूठा संगम और समागम दिखाई देता है। निश्चित ही इस सफलता का श्रेय और प्रेय भारतीय संविधान को भी जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में एक लोक कल्याण का तत्व मौजूद है। लोक कल्याण का सरल सा अर्थ होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान। समावेशिता भारतीय संविधान में लोक कल्याण का तत्व, इसका उद्देश्य है। भारतीय संविधान में इसी लोक कल्याण की भावना के कारण हम आर्थिक विकास कर पाए हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह समाजवादी शब्द के भारतीय संदर्भ और पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता है। यूं तो समाजवाद पर

बी.आर. अम्बेडकर ने भी जोर देकर कहा था, भारत में राजनीतिक लोकतंत्र का तब तक कोई अर्थ नहीं रह जाता है जब तक भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाती है। इसलिए भारत में विकास का एक मिश्रित मॉडल अपनाया गया। पूंजीवादी और समाजवादी दो अलग अलग तरीके की अर्थव्यवस्था का मिला जुला स्वरूप भारतीय संदर्भ में शामिल किया गया है। ऐसा अनूठा निर्णय केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि हमारे संविधान में लोक कल्याणकारी भावना मौजूद है। चूंकि भारतीय संविधान आर्थिक और सामाजिक न्याय के विकास की बात करता है, इसलिए आजादी के बाद से ही भारतीय लोकतंत्र ने इस दिशा में बहुत सराहनीय काम किया है। आप सभी श्रोताओं को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1950 में आम भारतीय की जीवन प्रत्याशा केवल 32 वर्ष थी, जबकि आज आम भारतीयों की जीवन प्रत्याशा करीब 70 वर्ष है। ऐसे ही हमारी साक्षरता दर वर्ष 1951 में करीब 18% थी, लेकिन साक्षरता दर आज बढ़कर करीब 75% हो गई है। जीवन प्रत्याशा का आसान भाषा में यह अर्थ होता है कि भारतीयों के जीवन जीने का अधिकतम उम्र औसतन कितनी होती है, जबकि साक्षरता प्रतिशत यह बताता है कि औसत 100 लोगों में कितने भारतीयों ने शिक्षा की बुनियादी तालीम हासिल की है। इसी तरीके से भारत का आर्थिक विकास दर भी बहुत बेहतर रहा है। वर्ष 1951 में भारत का आर्थिक विकास का दर करीब 4.2% था, जबकि वर्ष 2022 में यह आर्थिक विकास दर 8.7% तक देखा गया। इस आर्थिक विकास और मानव विकास का मिला जुला कारण भी हमारे भारतीय संविधान का लोक कल्याणकारी तत्व ही कहा जा सकता है। कोई भी सरकार हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, चूंकि भारतीय संविधान में समाजवाद और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, वचनबद्धता और अनिवार्यता साबित की गई है, इसलिए भारतीय लोकतंत्र का एक अचंभित करने वाला पहलू दिखाई देता है, वह है लोक कल्याण की भावना। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में भी लोक कल्याण का एक बहुत बड़ा तत्व दिखाई देता है। इस दृष्टि से भारतीय संविधान में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आपाद रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। इतना स्पष्ट और व्यापक रूप से उल्लेखित धार्मिक अधिकार का उदाहरण समूचे विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कारणों के लिए करों में छूट देने की वकालत करता है। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में स्वतंत्रता देने की बात कहता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 29 और 30 नागरिकों के सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार को सुनिश्चित करता है। इन अधिकारों की तुलना अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पुराने लोकतंत्र के साथ की जाए तो यह बहुत सुकून देता है कि भारतीय लोकतंत्र में भारतीय संविधान के कल्याणकारी तत्वों की अहम भूमिका दिखाई देती है। भारतीय संविधान में उद्देशिका यानी प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के चौथे भाग में उल्लेखित नीति निदेशक तत्वों को भी कल्याणकारी तत्वों के रूप में देखा जा सकता है। आइए पहले इन कल्याणकारी तत्वों को रेखांकित करने वाले अनुच्छेदों को सरल भाषा में समझा जाए ताकि इसकी उपयोगिता एवं अनुपालन के महत्व को भी हम जान सके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का आम लोगों को समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान सुनिश्चित करता है। श्रोताओं के लिए यहाँ यह जानना उपयोगी होगा कि प्रत्येक राज्यों में और जिलों में भी मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था सरकार द्वारा बहाल की गई है। इसी तरीके से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 घ पुरुषों व स्त्रियों

0: दोनों को सामान्य कार्य देने की वकालत करता है। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत एवं मानवों के लिए गरिमापूर्ण दशाओं के साथ साथ प्रसूति सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 46 भी सामाजिक लोकतंत्र पर जोर देता है और इसके अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की अभिवृद्धि की बात कहता है। सामाजिक असमानता वाले भारत में यह सामाजिक न्याय को स्थापित करने का एक बहुत बड़ा जज्बा कहा जा सकता है। अनुच्छेद 45 भारत में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान स्थापित करता है। सुखद बात यह है कि भारत में 46वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अमली जामा भी पहनाया जा चुका है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व केवल सजावटी हैं, वे इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को समय समय पर सरकार ने स्वीकारा है। इसके मूल तत्वों की गंभीरता को समझते हुए इसे व्यवहारिक तौर पर भी लागू किया गया है। इसे कुछ उदाहरणों से समझना दिलचस्प होगा। योजना आयोग की स्थापना के पीछे अनुच्छेद 38 का तत्व दिखाई देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 मजदूरों के संबंध में एक महत्वपूर्ण कानून है। इसके पीछे अनुच्छेद 39 की मूल भावना दिखाई देती है। इसी प्रकार मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 पर अनुच्छेद 42 का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 इस दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय कहा जा सकता है। समूचे भारतीय संविधान की आत्मा, इसके विभिन्न अध्याय, ढेरों अनुच्छेद, इसके लक्ष्य एवं मूल संदेश सभी कल्याणकारी तत्वों को न केवल शामिल करते हैं बल्कि सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए जाने वाले कानूनों, नियमों और प्रावधानों का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं।
1: विविधा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर अमित कुमार सिंह की वार्ता, जिसका विषय था भारतीय संविधान में लोक कल्याण के तत्व। हम आकाशवाणी के नचिपाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:55 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम छाया गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है लता मंगेशकर की आवाज़ में, फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए। गीतकार हैं जे नक्षब और संगीतकार जयदेव।

छायागीत कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नजीब आबाद केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले को मेरे महबूब फिल्म से। शकील बदायूनी की शब्द रचना को संगीत दिया है नौशाद ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं एक नज़र फिल्म का गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी, नगमा निगार हैं मजरू सुल्तानपुरी और मौसीकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश कान। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:15 हुए हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कार्यक्रम विवरण पर।

आज रात 8 बजे प्रसारित की जाएगी संसद समीक्षा। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये दोनों ही कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कानून की बात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से शाम 7:30 पर। शब्द आप सुनेंगे सुगम संगीत का।

कार्यक्रम में शाम 7:45 पर कलाकार होंगे भाई हरजिंदर सिंह। कल प्रातः 6:05 पर प्रसारित होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्री रामचरित मानस गान आप सुनेंगे कल सुबह 6:30 पर। काव्यधारा कार्यक्रम में कल प्रातः 6:45 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे विनीत प्रकाश गर्ग उर्फ हुड़दंग नगीनवी का काव्य पाठ।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल जानकारी का विषय रहेगा घुटने का दर्द। कार्यक्रम का वक्त रहेगा कल सुबह 7:05 पर। कल सुबह 7:10 पर खेती की बातें कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा बरसात के मौसम में मेड़बंदी का महत्व। मनोरंजन और जानकारी से भरपूर कार्यक्रम सूरज के साथ साथ आप सुनेंगे हर रोज की तरह कल सुबह 7:31 पर। जिले की हलचल का वक्त रहेगा कल सुबह 9:15 पर, यह आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है आप सुनेंगे कल सुबह 9:25 पर, जिसमें आप सुनेंगे मृदुला निगम और दिशा सक्सेना के स्वर में रोहेलखंडी लोकगीत।

कल पूर्वाह्न 11:30 पर प्रसारित होगा एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कल अपराह्न 1:15 पर महिला जगत कार्यक्रम में क्रम स्वस्थ महिला स्वस्थ समाज में आप सुनेंगे डॉक्टर पूजा सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट से प्रियंका त्यागी की बातचीत, जिसका विषय होगा महिलाओं के लिए फिजियोथेरेपी। दीपा चौहान के स्वर में गढ़वाली लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे लोकधारा कार्यक्रम में अपराह्न 1:45 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया एक महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा, बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व, ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या के श्री मणिरामदास छावनी में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा व्यवस्था, सीईओ की नियुक्ति, ट्रस्ट के रिक्त पदों और धार्मिक समिति के पुनर्गठन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ट्रस्ट के महासचिव कृष्ण मोहन ने बताया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए गठित समिति ने आवेदनों की अधिक संख्या और प्रक्रिया की गंभीरता को देखते हुए एक महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। तब तक प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
2: एक उपयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठन समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए एक माह का अतिरिक्त समय मांगा है। विषय की गंभीरता और परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने यह अनुरोध स्वीकार किया है। न्यास ने आगामी कालखंड में श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति में इस विलम्ब के कारण एक सचिव की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की है।
1: ट्रस्ट ने साफ किया कि राम भक्तों की आस्था पहले की तरह अटूट है और मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बनी हुई है। बैठक में चढ़ावा गणना व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मीडिया के माध्यम से नियमित संवाद बनाए रखने के लिए ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने का भी फैसला किया है। ट्रस्ट ने धार्मिक समिति के पुनर्गठन का भी फैसला लिया है। इस समिति की अध्यक्षता स्वामी गोविंद देवगिरी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री

0: हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, यह हम सबकी जिम्मेदारी।
1: रक्षा मंत्री ने संसद में विपक्ष के हंगामे पर कहा कि सरकार ने प्रत्येक मुद्दे पर सार्थक बहस करने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन विपक्ष सड़कों पर उतरकर मुद्दों को उलझाने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कल नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री आवास के बाहर किए गए प्रदर्शन के विरोध में किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल को अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष छात्रों के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहा है।
2: जो लोग संसद का छात्रों के नाम पर गुमराह करके, घेराव करके अव्यवस्था और अराजकता पैदा करना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। ये लोग भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं। ये कांग्रेस प्रधानमंत्री जी के आवास को घेरती है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करती है। कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है? आपने कल और परसों के इनके पूरे के पूरे षड्यंत्रों को देखा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले के विकास कार्यों, बाढ़ बचाव और जल निकासी के तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जल निकासी के प्रबंध पर जोर देते हुए कहा कि जल भराव की समस्या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोका जाए ताकि इसे नाले चोक न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ चौकियां सक्रिय रहें और बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों में बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बूथ सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति पूरी दुनिया की धारणा बदली है। श्री योगी ने कहा कि भाजपा ने सबसे बड़े दल के रूप में सुशासन और लोक कल्याण के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं।
2: भारतीय जनता पार्टी ने दुनिया के अंदर एकमात्र एक राजनीतिक दल के रूप में, सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में मूल्य और आदर्शों पर विश्वास

0: जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मेधावियों को पदक प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का दायित्व केवल शिक्षा देना ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों में सही सोच और राष्ट्रहित की भावना विकसित करना भी है। त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक अनुराग धनखड़ का आज बागपत के बड़ौत में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहे। श्री अरुण ने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बधाया। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री धनखड़ का शव 20 जुलाई को अगरतला स्थित पुलिस मुख्यालय में मिला था। ग्लासगो में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का कल से शुभारंभ होगा। 2 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के 10 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें 2 खिलाड़ी पैरा एथलेटिक्स में हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
1: गुलवीर सिंह 5000 मीटर और 10000 मीटर दौड़ में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगे। प्रयागराज के कुलदीप कुमार पोल वॉल्ट और जौनपुर के रोहित यादव भाला फेंक में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपल चेस और 5000 मीटर दौड़ में भाग लेंगी। वहीं प्रियंका गोस्वामी 10000 मीटर की पैदल चाल और नीरू पाठक 400 मीटर की रिले दौड़ में प्रतिस्पर्धा करेंगी। यूपी पुलिस की अस्मिता डे जूडो और आगरा के आदित्य प्रताप सिंह बॉक्सिंग में दम दिखाएंगे। लखनऊ के श्रियांश त्रिवेदी और भदोही के सागर पैरा एथलीट के रूप में भाग लेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रदेश में बीते 3-4 दिनों से हो रही बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। वहीं कई जनपदों में नदियां उफान पर हैं। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बाराबंकी में घाघरा नदी भी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर में हिंडन और यमुना नदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व अजीत कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 18 बाढ़ चौकियां और 18 बाढ़ शरणार्थी स्थल बनाए गए हैं। प्रशासन की टीमें सतर्क हैं और जलभराव वाले इलाकों में सहायता पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कल से 25 जुलाई के बीच प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सीईओ के चयन के लिए दिया 1 महीने का अतिरिक्त समय। धार्मिक समिति के पुनर्गठन और प्रवक्ता की नियुक्ति को दी मंजूरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर व्यक्त की चिंता, कहा युवा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ से बचाव की तैयारियों को परखा। बाढ़ चौकियों को सक्रिय रखने और बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। और प्रदेश के 10 एथलीट राष्ट्रमंडल खेलों में करेंगे देश का प्रतिनिधित्व। ग्लासगो में कल होगा आयोजन का शुभारंभ। इसी के साथ

0: विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं यश शर्मा और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
1: कानून की बात।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम कानून की बात में कीजिए स्वीकार, राघवेंद्र का नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा परिवार होता है जिसमें पति पत्नी होते हैं वो गाड़ी के दो पहियों की तरह काम करते हैं। अगर कोई भी पहिया संतुलन नहीं बना पा रहा है तो जो परिवार रूपी गाड़ी होती है वो नहीं चल पाती है। और अगर उसके साथ हमारा परिवार भी है, माता पिता भी हैं, उनमें भी अगर मानसिक सामंजस्य नहीं बन रहा है तो ऐसे में स्थितियां कई बार परिवार की गड़बड़ हो जाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो महिला पक्ष है उसको घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ जाता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसकी वजह से उसे प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है, तो इसे हम घरेलू हिंसा का नाम देते हैं। घरेलू हिंसा के लिए कानूनी तौर पर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरीके से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, कानून की मदद ले सकती हैं, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता उच्च न्यायालय श्री आयुष शर्मा जी। आयुष जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: आयुष जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर कानून की नजर में घरेलू हिंसा क्या है?
3: घरेलू हिंसा एक ऐसी हिंसा को परिभाषित करता है जो एक परिवार के भीतर होते हों। हिंसा जैसे कि समाज के बाहर भी होता है, उसके लिए अलग प्रावधान है। एक जो हिंसा परिवार के भीतर होती है उस हिंसा से महिलाओं को, उसके लिए अलग प्रावधान है। एक जो हिंसा परिवार के भीतर होती है उस हिंसा से महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षण प्रदान करने के लिए सन 2005 में एक एक्ट हुआ, उसको घरेलू हिंसा अधिनियम कहते हैं। तो उसका मेन ऑब्जेक्ट, मेन उद्देश्य जो था इस एक्ट का, कि जो महिलाओं को घर के अंदर किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है उससे उनको कैसे संरक्षण प्रदान किया जाए।
2: जी आयुष जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रताड़ना के अंतर्गत क्या मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की प्रताड़नाएं आती हैं?
3: जी, इस अधिनियम में प्रताड़ना के अंतर्गत चार तरीके की प्रताड़नाएं आती हैं।
2: जी,
3: एक पहली होती है शारीरिक, इसमें किसी को मारपीट करना या उसके अंग को या उसके अन्य किसी शरीर के हिस्से को क्षति पहुंचाना, एक शारीरिक हुआ। दूसरा होता है एक मौखिक या भावनात्मक, जैसे किसी को टॉन्ट मारना, किसी का मजाक उड़ाना। पर्टिकुलरली इन केसेस में जिसमें आप पहले के समाज को देखेंगे तो महिलाओं को, जैसे मेल चाइल्ड नहीं होता है, अगर
2: जी
3: बालक पैदा नहीं होता है तो उनको जनरली घर में टॉन्ट का सामना करना पड़ता था, इस चीज को भी इसमें हिंसा का रूप दिया गया है।
2: जी,
3: तीसरा अगर एक है आर्थिक हिंसा, आर्थिक दुरुपयोग कहते हैं, कि जैसे एक महिला को घर की घरेलू चीजों के लिए, बेसिक खर्चों के लिए पैसे की जरूरत है, अगर वो उसको नहीं दिया जा रहा है तो उसको भी एक हिंसा का रूप इस एक्ट में माना गया है। चौथा एक है लैंगिक दुरुपयोग या इसको सेक्सुअल क्रुएल्टी बोलते हैं, इसमें किसी भी महिला की गरिमा को, जो उसको कम करता है, उसको भी एक हिंसा का रूप दिया गया। तो इस एक्ट में कई सारी चीजों को सम्मिलित किया गया है।
2: यदि ये पाया जाता है कानूनी तौर पर कि किसी व्यक्ति ने या परिवार के किसी सदस्य ने महिला पर हिंसा की हुई है तो ऐसे में इस अधिनियम के तहत क्या सजाओं का प्रावधान है?
3: देखिए, आपको बेसिक चीज बता दूं, जैसे घरेलू हिंसा जो है ये एक सिविल लॉ है, इसमें किसी अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है। इसमें कुछ तरीके की सुरक्षाएं प्रदान की गई हैं घर में रहने वाली स्त्रियों को, वो एक सिविल रेमेडी है, मतलब अगर कोर्ट ऑर्डर का पालन नहीं होता है तब उसको अपराध कर दिया गया। ये एक्ट है एक सिविल रेमेडी, इसमें किसी तरीके का अपराध परिभाषित नहीं होता है। इसमें पांच तरीके का प्रावधान है। पहला है एक प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, इसमें संरक्षण प्रदान किया जाता है, जैसे कोई व्यक्ति, कोई पुरुष या कोई स्त्री भी अगर किसी महिला को प्रताड़ित करती है, मारती पीटती है, तो उसको रोका जा सकता है ऐसा करने से। अगर वो पुरुष है तो उसको घर से एंट्री करने से मना किया जा सकता है, ये प्रोविजन है। दूसरा इसमें प्रोविजन है राइट ऑफ रेसिडेंस का, निवास का, कि अगर महिला अपने परिवार के किसी सदस्य से पीड़ित है तो एक अल्टरनेटिव हाउस की भी मांग कर सकती है, इसमें ये प्रोविजन है। और तीसरा प्रोविजन है एक मेंटेनेंस का, जैसे आपने मेंटेनेंस 125 CRPC में चलता है, तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग कोई चल रहा है उसके बेसिक खर्चे, उसके लिए भी वो अनुतोष की मांग कर सकती है। और एक है कस्टडी की मांग, कि अगर उस महिला का कोई बच्चा है, मेल है चाहे फीमेल है, अब वो चाहती है कि जो पीड़ित करने वाला व्यक्ति है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसको ना दिया जाए या उसको ना मिलने दिया जाए, तो राइट ऑफ कस्टडी की मांग भी वो कर सकती है। एक और है कॉम्पनसेशन का मांग, प्रतिकर की मांग, कि उसके जो खर्चे हुए हैं, जो मानसिक प्रताड़ना हुई है, शारीरिक प्रताड़ना हुई है, उसके लिए भी अलग से वो खर्चे की मांग कर सकती है। इस तरीके से इस प्रावधान में पांच तरीके की जो रेमेडीज हैं, उपचार हैं, एक महिला को उपलब्ध होती हैं।
2: यानी कि महिला के जीवन को चलाने के लिए आगे बढ़ा

0: के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे आपने बोला कि आवास की मांग कर सकती है, वो मेंटेनेंस चार्जेस की मांग कर सकती है। अगर मान लीजिए कोई महिला जो कि पहले से ही कार्यरत है कहीं पर, वो अपनी अर्निंग कर रही है, वो इतना पर्याप्त पैसा कमा रही है, तो ऐसी स्थिति में ये डिमांड उसे रखने कोई आवश्यकता नहीं होगी कि ऐसे में भी वो डिमांड रख सकती है?
1: जी हाँ, इसमें क्या होता है कि तलाक का मुकदमा चल रहा है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी वो प्रतिकर मांगते हैं, तो इस एक्ट में प्रतिकर मांगने का प्रावधान है। तो ये बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट एक तरह से मजिस्ट्रेट देखते हैं जो बैठे रहते हैं। अगर वो खुद ही कमाने में, महिला अगर गवर्नमेंट जॉब कर रही है या कोई जॉब कर रही है, जैसे वो अपने आप में एबल है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको प्रतिकर मिलेगा ही मिलेगा।
0: आयुष जी, यदि किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक या शारीरिक तौर पर, अगर वो इस अधिनियम के तहत अपनी सुरक्षा चाहती है, तो उसे सबसे पहला कदम क्या उठाना होता है, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकती है, अपनी सुरक्षा कर सकती है?
1: जी, इसके लिए सबसे अच्छा प्रोविजन, जैसे कि अगर वो घर में हो रहा है अभी, कोर्ट नहीं जा पा रही है, तो सबसे बेसिक होता है डायल 100 या डायल 112 जो होता है करके, पुलिस से प्रोटेक्शन ले सकती हैं। उसके बाद वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती हैं कंसर्न मजिस्ट्रेट के थ्रू, तो वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पारित हो जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए। उसमें विभिन्न तरीके की चीजें आ जाएंगी, सुरक्षा किस तरह से दी जाए। कोर्ट एक पीओ भी अपॉइंट करती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर।
0: कई बार ऐसा होता है कि उस महिला को जो प्रताड़ित हो रही है वो समझौता कर रही है, जबकि ऐसी स्थिति है जहां उसे समझौता नहीं करना चाहिए, पर वो किसी तरीके से समझौता करती जा रही है, और उस महिला के घर वाले हैं यानी महिला के माता पिता भाई बहन ये देख रहे हैं, और वो महिला जो प्रताड़ित हो रही है वो तो रिपोर्ट दर्ज नहीं करा रही, शिकायत दर्ज नहीं करा रही, तो क्या उसके परिवार वाले इस बात को समझते हुए कि भाई मामला बहुत गंभीर हो चुका है, क्या वो अपनी तरफ से शिकायत दर्ज करा सकते हैं?
1: जी हाँ, जो ये प्रावधान है महिलाओं के सुरक्षा के लिए है, तो ये कोई जरूरी नहीं कि पीड़ित महिला अगर इन केस वो नहीं पहुंच पा रही है, तो आज का टाइम सोशल मीडिया का टाइम है, आदमी अपलोड कर देता है जैसे भी हो, और उसके जो सदस्य हैं वो भी कर सकते हैं। और ये जो एक्ट है तो ये बहुत ही विशाल है, बहुत एक वृहद एक्ट है।
0: अक्सर हम लोग जब घरेलू हिंसा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन इस अधिनियम के तहत महिला सुरक्षा की बात कही गई है।
1: 498 ए में क्या है कि पति या पति के रिश्तेदारों के द्वारा क्रूरता की जाती है, इस अधिनियम में कोई भी महिला संरक्षण की बात कर सकती है।
0: जी,
1: सिर्फ पत्नी होना उसके लिए जरूरी नहीं है, सारे धर्मों पे एक समान रूप से अप्लाई होता है।
0: जी, आयुष जी, हम कई बार ये भी देखते हैं कि पुरुष को भी प्रताड़ित किया जा रहा है, शादीशुदा होने की स्थिति में भी कई बार जो उसकी पत्नी होती है वो उसे शारीरिक या मानसिक तौर से प्रताड़ित कर रही है, या घर के अन्य सदस्य किसी वजह से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ऐसे में पुरुष अपना बचाव कैसे कर सकता है?
1: देखिए, जो ये अधिनियम है इसमें जो पीड़ित की परिभाषा दी गई है उसमें लिखा है एनी वुमन, कोई भी महिला, तो और इसका नाम भी है कि महिलाओं से महिलाओं को हिंसा से संरक्षण। तो इस एक्ट में पुरुष के उपचार के लिए कोई अधिनियम नहीं है
0: जी।
1: लेकिन वो चाहें तो अन्य जैसे आईपीसी की धाराओं में अपने लिए वो उनके पास प्रूफ है या कुछ है अपनी सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, आईपीसी की धाराओं में कर सकते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 वो भी क्रुएल्टी की बात करता है, उसमें पुरुष भी क्रुएल्टी के आधार पर तलाक ले सकते हैं
0: जी।
1: और मारपीट की कोई घटना होती है तो आईपीसी की अन्य धाराएं सुसंगत हैं जो मारपीट की सारे सारे जेंडर पे एक समान रूप से लागू होती हैं। और आप देखेंगे माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में पुलिस को भी ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन इशू किया है। सबसे ज्वलंत केस है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य का, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को बोला है कि इफ दे हैव रीजन टू बिलीव कि जो विक्टिम का स्टेटमेंट है वो सही है, उसके खिलाफ हिंसा हुई है, तभी वो एफआईआर दर्ज करें
0: जी,
1: एक बार प्रिमली जांच कर लें। और एक ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है, इसमें भी मैट्रिमोनियल मैटर्स में एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस को एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेना चाहिए था, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है
0: जी। आयुष जी, कई बार ऐसा भी होता है कि इस अधिनियम का या जो अधिकार दिए गए हैं उसका मिसयूज किया जाता है, और अगर ऐसा न्यायालय द्वारा पाया जाता है कि उस महिला के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं जो उसने बोला हुआ है, तो ऐसे में क्या महिला को भी सजा देने का प्रावधान है या महिला को भी दंडित करने का प्रावधान है?
1: इस अधिनियम में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है
0: जी,
1: इस अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं है। लेकिन अब जो किसी खिलाफ गलत हुई है तो वो मैलिस प्रोसिक्यूशन या फाल्स इम्प्रिजनमेंट का केस एक बार कर सकता है
0: जी। आयुष जी, यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई पेयर रह रहा है, कोई जुड़ा रह रहा है, और वहां ऐसी कोई समस्या आती है किसी महिला के साथ, तो क्या इस अधिनियम के तहत वो अपनी सुरक्षा की मांग कर सकती है?
1: ये प्रश्न उठा था माननीय सुप्रीम कोर्ट में
0: जी।
1: इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था इंदिरा शर्मा वर्सेज वीके शर्मा, ये 2014 में आया था। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू किया था कि ये सारी चीजें होंगी

0: उसको लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा, एज ए कैजुअल जैसे वीकेंड स्पेंड करना या हम बस रेंट पे साथ में रह रहे हैं उसको नहीं माना जाएगा। इसमें ये था एक समाज में दिखना चाहिए एज ए पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, बेसिक खर्चे अपने शेयर कर रहे हैं, परिवार घर को भी एक एज ए परिवार की तरह शेयर कर रहे हैं, ये दो तीन चीजें दी थी। अगर ऐसे कंडीशंस हैं फुलफिल्ड हैं,
1: यानी कि इस अधिनियम के तहत कोई जो महिला है वो अपने अधिकारों की मांग कर सकती है, अपने आप को इससे सुरक्षा प्रदान कर सकती है इस अधिनियम के तहत। अयोध जी, यदि कोई महिला जिसकी शादी हो गई है अपने पति के साथ रह रही है, उसके परिवार के अन्य सदस्य भी वहां रह रहे हैं, अगर वो महिला जो कि हिंसा का शिकार हो रही है, तो क्या वो महिला अपने पति पर ही दोषारोपण करेगी कि इसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, या जो अन्य सदस्य लोग भी उसे प्रताड़ित कर रहे हैं उन पर भी वो केस कर सकती है? क्या अन्य सदस्यों में वो सदस्य भी आ सकते हैं जो उनसे दूर तो हैं लेकिन मोबाइल फोन के माध्यम से हो सकता है उसे कॉल करके परेशान कर रहे हो?
0: जैसे कि अगर किसी परिवार के अन्य सदस्य के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो हिंसा कर रही है, क्रूरता कर रही है या क्रूरता कर रहा है, तो हमें दो चीजें देखनी होंगी। एक, जो उनके खिलाफ एलिगेशंस लगे होंगे वो स्पेसिफिक होने चाहिए, जनरल नहीं होना चाहिए कि मुझे गाली देते हैं या मारते पीटते हैं, दहेज की मांग करते हैं। दूसरा, उनका रोल डिस्क्लोज होना चाहिए। इन दोनों चीजों को, जैसे जनरली केसेस में क्या होता, फैमिली मैटर्स में क्या होता था कि परिवार के सारे सदस्यों के नाम लिख दिए जाते थे तो सारे मुलजिम हो जाते थे। तो एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2012 में एक केस आया था, गीता मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको ऐसे कैजुअली नहीं नेम कर देना चाहिए एफआईआर में, उनके खिलाफ स्पेसिफिक एलिगेशंस होने चाहिए और वो लगे कि हाँ वो उन्होंने ऐसा किया है। सिर्फ नाम लेने से उनको मुलजिम बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है।
1: आयुष जी, घरेलू हिंसा अधिनियम संबंधी प्रावधानों पर आपने एक विस्तृत चर्चा की, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आपने सुनी घरेलू हिंसा संबंधी कानून, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे आयुष शर्मा और भेंटकर्ता थे राघवेंद्र सिंह। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शब्द। कलाकार हैं भाई हरजिंदर सिंह।

0: इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी है, अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। नीट पेपर लीक और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में आज कहा कि सरकार नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। चर्चा किस नियम के अंतर्गत होगी और कितनी देर होनी चाहिए, ये बातचीत में तय होगा। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में मानसून सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया गया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण

प्रसाद तेनेटी ने दो बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू की और हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि श्री कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों की ओर से महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में श्री कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। श्री तेनेटी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद श्री बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इन मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही विपक्षी दल हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य नीट के विरोध में नारे लिखी तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को बोलने की अनुमति दी। श्री वेणुगोपाल ने कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों और विद्यार्थियों के साथ पुलिस व्यवहार कर रही है वह बहुत अनुचित है। उनकी मांग है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसके बाद सदन में पेपर लीक मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांग स्वीकार करती है तो वे चर्चा के लिए तैयार हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपर लीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये सभी लोगों से जुड़ा मसला है। इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गए। श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री सदन से बाहर नीट मुद्दे पर बयान दे सकते हैं, सदन में आकर इस मसले पर क्यों नहीं बोल सकते। इसके बाद श्री ओम बिरला ने कहा कि कब चर्चा करनी है, कितनी देर चर्चा करनी है, ये बातचीत के दौरान तय होगा। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्षी सदस्य अपने अपने स्थानों पर जाएं और कार्यवाही चलने दें। श्री बिरला की अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। हंगामा जारी रहने पर अध्यक्ष ने कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे श्री बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, उससे पहले ही विपक्षी सदस्य अपने सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन सदस्य उनकी बात पर ध्यान दिए बिना और नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। अध्यक्ष ने सदस्यों से सदन चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि आप प्रश्नकाल चलने दीजिए, प्रश्नकाल के बाद जिन विषयों पर नोटिस आए हैं उन सब पर चर्चा कराई जाएगी, लेकिन ये सब प्रश्नकाल के बाद ही संभव होगा। मैं आपके मुद्दे पर चर्चा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि सदस्य सदन नहीं चलाना चाहते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं है। उनकी किसी बात पर जब सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया तो श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही 1 मिनट के भीतर ही 12 बजे तक स्थगित कर दी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, महिला केंद्रित पहलों, पेयजल, स्वच्छता, खेल, नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यटन, पशुपालन तथा अन्य सामुदायिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पीएमजेवी के एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। योजना के अंतर्गत अनुमोदित पात्र परियोजनाओं के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विगत 5 वर्षों के दौरान पीएमजेवीके के अंतर्गत तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है। इस अवधि के दौरान जिले के लिए न तो कोई निधि आवंटित या जारी की गई है और न ही योजना के अंतर्गत जिसे कोई कार्य किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गुन ने एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के लिए आईटी अधिनियम 2000 के तहत 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किए गए हैं। इन नियमों के भाग 3 में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के प्रकाशकों के लिए एक आचार संहिता का प्रावधान है।
शिकायतों का निपटान आईटी नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(ख) अवैध सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने के लिए मध्यस्थों को अधिसूचना का प्रावधान करती है। उन्होंने कहा कि शिकायतों के आधार पर सरकार ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले 2 वर्षों में अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67(क) भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 और स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के उल्लंघन के लिए भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सार्वजनिक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्नपत्र लीक मामले और इसके विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार तीसरे दिन गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच जहां सरकार ने कहा कि वह नीट प्रश्नपत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सिक्किम में तीस्ता नदी पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी की निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में 20 लोगों की मौत की जानकारी दी। सदस्यों ने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। श्री राधाकृष्णन ने सदन को भारत में स्वदेश में विकसित पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित रेलगाड़ी के परिचालन शुरू होने की भी जानकारी दी और इसे स्वच्छ, टिकाऊ तथा तकनीकी रूप से उन्नत रेल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि सदन इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और रेल अधिकारियों को बधाई देता है। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। श्री खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उन्होंने कहा कि सोमवार को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई से उन्हें बेहद पीड़ा हुई है। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। श्री खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी हुई थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद जब बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में हंगामा करने लगे। श्री हरिवंश ने सदस्यों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि ये प्रश्नकाल है। आजादी के 50 वर्ष पूरे होने पर सदन में ये संकल्प लिया गया था कि किसी भी हालत में प्रश्नकाल और शून्यकाल चलाया जाएगा। अगर सदन अपनी बात पर कायम नहीं रहता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि सवालों के जवाब तैयार करने में कितना समय और जनता का धन लगता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने अपील की कि कृपया प्रश्नकाल चलने दें। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने 1 मिनट के भीतर ही बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आसन की व्यवस्था मिलने पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं और छात्रों के

0: से बात करने के बाद लेंगे। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा विपक्ष की ओर इंगित करते हुए कहा कि ये इंडी गठबंधन का व्यवहार बहुत गैर जिम्मेदाराना है। यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। विपक्ष संसद की मर्यादाओं को तार तार करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहा है। सदन के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार एक पारदर्शी और लोगों के हित में फैसले करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की जो जन विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, वे उसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का प्रजातांत्रिक व्यवस्था और उसके मूल्यों में कोई विश्वास नहीं है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियम 267 के तहत कर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि पिछले चार दशकों में राज्यसभा में नियम 267 का इस्तेमाल दुर्लभतम मामलों में हुआ है। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने सवाल किया कि दुर्लभतम मामला क्या होता है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है वह दुर्लभतम ही है। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और उपसभापति हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में नीट प्रश्न पत्र लीक मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कांग्रेस ने चर्चा की मांग की थी, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, अब विपक्षी सदस्य शर्त रखकर चर्चा टालने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने कहा है कि नियम 267 का उपयोग दुर्लभतम मामलों में किया जाता है। जो घटना हुई है उससे अधिक दुर्लभ से दुर्लभतम मामला भला और क्या हो सकता है। बच्चों पर बल प्रयोग किया गया है। इसी दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा तेज कर दिया और उपसभापति हरिवंश ने सदन में व्यवस्था बनते न देख बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। राज्यसभा की कार्यवाही संचालन संबंधी नियम 267 के तहत सभापति की अनुमति से कोई सदस्य अत्यंत
1: कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सिंदूर फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद असीज ने। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: गीत संध्या कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के नचिपापाद केंद्र से।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
0: गीत संध्या कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज में एक गीत। फिल्म का नाम है जवाब हम देंगे। शब्द रचना है SH बिहारी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राम लखन के कुछ गीत।

0: एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म राम लखन के कुछ गीत। ये जो गीत अभी आपने सुना, इसको आवाज दी थी मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद अजीज, अमित कुमार और अलीशा चिनॉय की आवाज में।
1: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा, दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है

करता नहीं कोई मुझे सलाम, लेता नहीं कोई मेरा नाम, दस

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, बेहतर रेल सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीक के कारण रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की और चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने युवाओं में मादक पदार्थों के सेवन की गंभीर समस्या से निपटने के महत्व पर भी बल दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को मॉनसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
3: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
4: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
2: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मॉनसून सत्र के लगातार तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित होती रही। व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं चल सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने अपना विरोध जारी रखा। आज लोकसभा की कार्यवाही 3 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने दोनों पक्षों के विचार सुने रहे हैं और सरकार खुले मन से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से कार्यवाही बाधित करने के बजाय विस्तृत चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं के प्रति संवेदनशील है।
6: ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के छात्रों और नौजवानों को कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए एक राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार विद्यार्थियों और नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके कल्याण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारे छात्रों की हर चिंता को सुनना, उसका समाधान करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: उधर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि छात्रों का संघर्ष वास्तविक है और वे बदलाव की मांग कर रहे हैं।
7: हम एडजर्नमेंट मोशन मांग रहे हैं ताकि ठीक से डिस्कशन हो। आप 8 घंटे के लिए वंदे मातरम डिस्कस कर सकते हैं, तो आप लंबे समय के लिए ठीक ढंग से एडजर्नमेंट मोशन पे ये इशू भी डिस्कस कर सकते हैं।
2: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि सरकार से नीट परीक्षा लीक मामले पर युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन मिलने पर वे अपना अनशन समाप्त कर देंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे पत्र में श्री वांगचुक ने कल रात अस्पताल में उनसे मिलने के लिए दोनों मंत्रियों का आभार व्यक्त किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सरकार ने दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों के मरने के सोशल मीडिया के दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इन दावों को असत्य बताया है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि प्रदर्शन के दौरान किसी की मौत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब तक केवल 2 रह गई है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर व्यय 2013-14 में लगभग 39,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026-27 में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। पिछले 2 वर्षों में सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने के आरोप में देश भर में 50 OTT प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच से बाहर कर दिया है। लोकसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने कहा कि सरकार शिकायतों के आधार पर ऐसे मध्यस्थों और OTT प्लेटफॉर्म के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में तोतापुरी आमों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तीनों राज्यों में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की आय में लगातार हो रही गिरावट की शिकायतों के मद्देनजर जारी किए गए हैं। अयोध्या में आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हुई बैठक में मंदिर प्रबंधन, दान प्रणाली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, ट्रस्ट में रिक्त पद भरने और धार्मिक समिति के पुनर्गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ट्रस्ट ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था पहले की तरह ही अडिग है और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या स्थिर है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है। आयोग राज्य सरकार और सरकारी सहायता प्राप्त संगठनों के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते, पदोन्नति और पेंशन से संबंधित संशोधनों की सिफारिश करेगा। आयोग अगले 6 महीनों के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। छत्तीसगढ़ में अब अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसका लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा जो 4 वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्त हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा और राजस्थान में भी तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी इसी तरह के मौसम की स्थिति बने रहने का अनुमान है। सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग स्थित सुरंग में बचाव दल ने 8 और शव बरामद किए हैं। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: नामची जिले के NHPC की टनल के अंदर फंसे लोगों को बचाने के लिए आज तीसरे दिन भी रेस्क्यू दल काम कर रही है। कम विजिबिलिटी और मीथेन गैस के लीकेज के वजह से शवों को निकालना मुश्किल हो गया है। इस बीच सिक्किम सरकार ने मरने वालों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंप दिए है। केंद्र सरकार के अलावा सिक्किम सरकार और NHPC ने मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। घटना के समय टनल के अंदर कम से कम 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
2: कश्मीर में आज अनंतनाग जिले के लाल चौक इलाके में आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। हमले के बाद सुरक्षा बलों का पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मृतक पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों को सजा दिलाने का आश्वासन दिया है। भारतीय नौसेना ने कर्नाटक के कारवार में स्वदेशी रूप से निर्मित माहे श्रेणी का एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मालवन को शामिल किया है। ये नौका जलमग्न निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों के साथ साथ बारूदी सुरंगों को नष्ट करने की क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी घटकों से निर्मित ये नौका आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बल देती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया में आज स्कोपिया शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि संघर्ष, असहिष्णुता और विभाजन से जूझ रही दुनिया में गांधी जी के संवाद, करुणा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श अत्यंत प्रासंगिक बने हुए हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों के दौरान कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचावास्केज से मुलाकात की। श्री सोनोवाल ने कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के लिए परस्पर संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया, वहीं आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को शिकस्त दी। इस बीच पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के युशी तनाका से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लक्ष्य सेन ने पहला गेम अपने नाम कर लिया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
9: बम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% के नुकसान से 715 अंक लुढ़ककर 76,755 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.8% की गिरावट से 191 अंक गिरकर 23,996 के स्तर पर बंद हुआ। NSE मिड कैप सूचकांक में 1% से अधिक और स्मॉल कैप सूचकांक में 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 33 पैसे के नुकसान से 96.57 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर रहा।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष करने पर विचार करने का निर्देश दिया। न्यायालय की पीठ ने पूरे देश में जिला न्यायिक अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष करने की समान मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इसकी नींव बनाना चाहिए। सरकार संसद में नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार। युवाओं के विरोध प्रदर्शनों का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की आलोचना की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित। विपक्ष ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Vikasit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of the Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police on pleas alleging use of excessive force on protesters during Parliament March. Railway Minister Ashwini Vaishnav says train accidents declined sharply with improved rail safety, infrastructure maintenance and use of modern technologies. The US blames Iran for the naval blockade against Saudi Arabia and the Red Sea by Yemen's Houthi group. And in China Open badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Vikasit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Vikasit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries, as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. Mr. Modi also highlighted that the widespread adoption of initiatives such as the PM Kusum scheme by farmers can bring transformative changes to the agriculture.

0: Residents from the vulnerable low-lying areas have been shifted to safer locations, primarily in Surat, Navsari and Valsad. Disaster response forces, including 11 NDRF teams and 24 SDRF platoons, have been deployed to carry out relief and rescue operations in rain-affected districts. Meanwhile, Weather Department has issued a red alert for South Gujarat region today and strictly advised fishermen not to venture into the sea until 24th July due to rough conditions. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
1: The Inter-Meteorological Department has issued a red alert for extremely heavy rainfall over Gujarat and central Maharashtra tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal, Jammu Kashmir, Uttarakhand, Jharkhand, Karnataka, Odisha and Rajasthan. President Draupadi Murmu today unveiled a bust of Mahatma Gandhi at the Museum of the City of Skopje in North Macedonia. Addressing the gathering, the president said Mahatma Gandhi's ideals of dialogue, compassion and peaceful coexistence remain highly relevant in a world facing conflict, intolerance and division. The United States has condemned Iran-backed and Yemen-based armed group Houthi rebels for threatening commercial shipping in the Red Sea after the group announced a naval blockade against Saudi Arabia. Speaking on the sidelines of a regional summit in the Philippines, U.S. Secretary of State Marco Rubio expressed hope that the situation would be de-escalated. Mr. Rubio said anything that restricts shipping through the Red Sea would be problematic for the same reasons that the Strait of Hormuz is problematic. Benchmark domestic equity indices declined nearly 1% today amid the ongoing geopolitical tensions and elevated crude oil prices. The Sensex shed 715 points to close at 76,755. In China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty entered singles pre-quarterfinals at Changzhou today. Two-time Olympic medalist Sindhu advanced to the second round of women's singles after defeating compatriot Unnati Huda in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated world number 11, Alvi Farhan of Indonesia, to reach the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for making the dream of Viksit Bharat a mass movement with youth playing a key role in it. Government reiterates readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in Parliament, criticizes attempts to use youth protests for political gains. Opposition disrupts proceedings in both houses, demands resignation of Education Minister before discussion. Delhi High Court seeks responses from centre and police and pleas, alleging use of excessive force on protesters. And in China Open Badminton, PV Sindhu and Ayush Shetty enter singles pre-quarterfinals. That is all in the news at 9. Good night.
2: Adab. ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं असगर अली वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत नजरिए को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर दिया है जिसमें नौजवान एक कलीदी रोल अदा करें हुकूमत ने ये बात दोहराई है कि वो पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले पर बामाना बहस के लिए तैयार है इसने नौजवानों के एहतजाज को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशों की नुक्ताचीनी की अपोजिशन ने दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रखनांदाजी की इसने बहस से पहले तालीम के महकमे के वजीर के इस्तीफे का मुतालबा किया दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्लियामेंट मार्च के दौरान मुजाहरीन पर मुबैना तौर पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करने से मुतालिक दरखास्तों पर मरकज और पुलिस से जवाब तलब किए हैं रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बेहतर रेल सेफ्टी बुनियादी ढांचे के रखरखाव और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ट्रेन हादसात में खातिरखाह कमी आई है अमेरिका ने ईरान पर यमन के हूसी ग्रुप की जानिब से बहर अहमर में सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का इल्जाम लगाया है और चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और आयुष शेट्टी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं अब खबरें तफसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विकसित भारत की तामीर का ख्वाब जन आंदोलन बनना चाहिए और मुल्क के नौजवानों को इस नजरिए को बुनियाद फराहम करनी चाहिए वजीर आजम ने नई दिल्ली में विकसित भारत अहदाफ के लिए मुतालिका शोबों और देही तरक्की

0: Jeff Jeff Abishaki. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: एक छोटा सा गाँव, एक साधारण रसोई और उसी रसोई से उठती एक बड़ी शुरुआत। जहाँ कभी सिर्फ घर के लिए अचार, पापड़ और मसाले बनते थे, आज वहीं से निकल रहे हैं ब्रांड, रोजगार और आत्मनिर्भरता की नई कहानियाँ। खेत के एक कोने में उगाई गई धनिया जब एक अत्याधुनिक पैकेज्ड ब्रांड बनकर उभरती है, या फिर किसी छोटे से शहर की बेकरी जब एक नए भारत के निर्माण की मिसाल बनती है, तब जन्म लेती है असली जमीनी क्रांति। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी PMFME स्कीम देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल रही है। एक ऐसी योजना जिसने न केवल 2 लाख से अधिक ऋण स्वीकृतियों का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया है, बल्कि देश के अनौपचारिक खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को औपचारिक पहचान दी है। 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, 6 लाख से अधिक आजीविका के अवसर और 44% महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कहानी है उस भारत की जो वोकल फॉर लोकल को अपना मंत्र बनाकर आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहा है। आज की इस विशेष चर्चा में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये योजना वित्तीय समावेशन तकनीक

0: ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए हमारे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाला बना रही है। साथ ही हम खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने और वरिष्ठ कृषि एवं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार
0: जगदीश जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो योजना है, इसने एक बहुत बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया है अनौपचारिक सूक्ष्म इकाइयों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाकर, और लगभग 75,000 से अधिक इकाइयां अब उद्यमी पंजीकरण, FSS, AI और GST के दायरे में आ चुकी है। एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में आप इस फॉर्मलाइजेशन को केवल कर या विनियमन के चश्मे से अगर हटाकर व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक विश्वसनीयता और क्रेडिट योग्यता के संदर्भ में देखें तो क्या समझते हैं आप?
1: देखिये, मुझे लगता है कि जो ये अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, जो बेसिकली गांव पर आधारित है या टीयर टू सिटीज पर आधारित है या टीयर थ्री सिटीज पर आधारित है, इस पर बहुत पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही, बिल्कुल सही ध्यान दिया गया है। और इसकी जो योजना बनी है वो इतनी मुकम्मल और इतनी परफेक्ट है कि आप किसी भी राज्य में चले जाएं, आपको बाजार जिसमें आप अनाज के अलावा अपने घरेलू रसोई का जो सामान लेते हैं, इसके अलावा अपना नाश्ते का सामान लेते हैं, वो सब प्रोडक्ट्स आपको लोकली मेड मिलेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, और इसके कारण जो मल्टीनेशनल कंपनीज है जिन्होंने इस मार्केट पे एक तरह से कब्जा करके रखा था, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में टिकने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, उनको नई नई स्कीम लानी पड़ती है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे स्तर पर, मतलब अगर आप कस्बाई स्तर पर चले जाए तो कस्बाई स्तर पर भी लोकली और मैन्युफैक्चर्ड लोकली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। सिर्फ खाने पीने के पदार्थ है नहीं, दूसरे भी पदार्थ आपको मिलते हैं। ये बहुत दिन से और बहुत वर्षों से ये बाजार डेवलप हो रहा था, मोदी सरकार ने पहली बार इसको फॉर्मली ध्यान दिया और इसके लिए एक अच्छी मजबूत योजना शुरू की। और ये जो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था है, अगर आप जो औपचारिक अर्थव्यवस्था देखेंगे देश की, तो उससे करीब एक चौथाई तो होगी ही, अभी उसका आकलन नहीं हुआ है कि ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जो बेसिकली रूरल बेस्ड है, ये कितने की है, कितने हजार करोड़ की, कितने बिलियन डॉलर्स की है, ये आकलन अभी किसी ने नहीं किया कि एक आध स्टडी इस पर है। लेकिन अगर आप पाएंगे कि इस समय देश भर में और लोग लोकली, वोकल फॉर लोकल का नारा मोदी जी सरकार ने ऐसे ही नहीं दिया है, इस जो डेवलपमेंट हो रहा है नीचे के लेवल पर उसको ध्यान में रखते हुए दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी जो अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत ये योजना है, उसको भी इस बात को ध्यान में रख के दिया गया है कि गांवों, कस्बों और टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में, यहाँ तक कि आप जो बड़े शहर हैं उनमें भी आप पाएंगे कि उन अलग अलग क्षेत्रों में उन क्षेत्रों के बने हुए प्रोडक्ट्स ही आपको मिलते हैं, चाहे खाने पीने के पदार्थ हो, चाहे आपके इस्तेमाल के पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर तो खाने पीने की चीज, नाश्ते की चीज और मनोरंजन की चीजें, वो सब लोकली प्रोड्यूस हो रही है। इस इकोनॉमी को टैप करके इस योजना ने बड़ा और मदद पहुंचाई है उन सब उद्यमियों को जो अपने बल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: जी हरवीर जी, योजना ने हाल ही में 2 लाख से अधिक क्रेडिट लिंक्ड स्वीकृतियों का आंकड़ा छुआ है और इसमें 20,300 करोड़ से अधिक का निवेश भी आकर्षित हुआ है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत में माइक्रो फाइनेंस और बैंकिंग तंत्र में अंतिम मील तक क्रेडिट डिलीवरी एक बड़ी चुनौती रही है। आपसे समझना चाहेंगे कि इस योजना में ऐसा क्या अलग रहा जिसने बैंकिंग तंत्र के प्रति सूक्ष्म उद्यमियों का जो हिचकिचाहट का भाव है उसे तोड़ा? क्या बैंक अब सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण को कम खतरे वाला क्षेत्र मानने लगे हैं?
2: एक तो ये अपने आप में हमारे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र है उसमें हमारे लिए है। अब भी करीब 30 लाख करोड़ से ज्यादा का ये एक इंडस्ट्री है देश में, और जो अगले 2 साल में मेरे ख्याल से करीब 45,000 करोड़ तक उसको पार कर जाएगा। अब ये जैसे अभी उपासने जी कह रहे थे कि हम बात कर रहे हैं फॉर्मलाइजेशन और इनफॉर्मल की, क्योंकि जो बड़ा फॉर्मल सेक्टर है, बड़ा कब्जा जो बड़े ब्रांड, बड़े मार्केट एक्सेस उनके पास रहे हैं, और जबकि छोटे स्तर पर गांव से थोड़ा आगे हम जाए, छोटे कस्बे, छोटे शहर, वहां पर तमाम सारे एंटरप्रेन्योर्स ने कोशिश की कि वो वैल्यू एडिशन में, जो फूड प्रोडक्शन है उसमें जाए, एग्रीकल्चर के वैल्यू एडिशन में जाए। वैल्यू एडिशन है फूड प्रोसेसिंग, जिससे कि वो बेहतर उनके आय का जरिया बने और स्थानीय स्तर पर किफायती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो एक बाधा आती है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए वो होती है वित्तीय संसाधनों की, जो हम रिसोर्सेज जो है फाइनेंशियल से बात करते हैं। जो छोटा एंटरप्रेन्योर है वो अगर उसके पास पूंजी नहीं है, और इसके पहले जब फॉर्मल सेक्टर की बात करेगा या बैंक्स को अप्रोच करेगा, उसका उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, तमाम सारे कोलेटरल चाहिए, फिर बैंक्स में इतना लंबा प्रोसेस है, उसको ये मिलना मुश्किल था और लोग आगे नहीं बढ़ पाए। जाहिर सी बात है कि इसका स्कीम को ही इसी काम के लिए तैयार किया गया कि जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ लाख रुपए से अपना काम शुरू करना चाहते हैं, वो किस तरीके से फॉर्मलाइज एंटरप्रेन्योर के रूप में और उनकी जो यूनिट है वो कैसे फॉर्मलाइज सेक्टर में जाए, जो गुणवत्ता के मानक है उनको पूरा करती हो, और साथ में उसके लिए मार्केट की जो लोकलाइज स्तर पर जो अपॉर्चुनिटी है उसको टैप करे। अब इस तरह की जो स्कीम जो बिना कोलेटरल के एक सीमित स्तर पर जो फाइनेंस मुहैया कराती है, ऐसे जो एस्पिरेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इनको कोई बहुत बड़ा जो तामझाम होता है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपके पास असेट कितना है, आपकी इक्विटी कितनी है, फिर बैंक तय करेगा कि हम इसमें कितना डालेंगे और किस तरीके से वो असेस करेगा, उन सब झंझटों से मुक्त करते हुए इस तरह की स्कीम लाई गई, ताकि ये जो बेहतर संभावना का जो क्षेत्र है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। और स्थानीय स्तर पर, क्योंकि ये लगातार एक बात है, जब हम कहते हैं कि जो भारत बड़े शहरों में नहीं, महानगरों में नहीं, जो मेजर इंडस्ट्रीज में नहीं है, जो छोटे स्तर पर है, जो रूरल इंडिया जिसे हम कहें या हमारे जो सेमी अर्बन एरियाज हैं, वहां पे जो लोग एक तरीके से अपने उद्यमशीलता के जरिए आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसको वो ठीक से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन जब उनके पास क्रेडिट की सुविधा दी गई, उनको टेक्नोलॉजी का नो हाउ, उनका जो हैंड होल्डिंग जिसे हम कहते हैं कि उनको बताया गया कि किस तरीके की तकनीक आपका जो उत्पाद है उसको तैयार करने में काम आएगी, किस तरीके की प्लांट और मशीनरी जो है इसमें जरूरत होती है, उसके लिए कैसे फाइनेंस मुहैया कराया जाएगा, और आप अपने उत्पाद को मार्केट में कैसे ले जा सकते हैं, मार्केट लिंकेज कैसे हो सकता है, क्योंकि जो छोटे एंटरप्रेन्योर है उसके सामने ये भी एक चैलेंज होता है कि जो मार्केटिंग का जो एक स्किल होती है उसके पास उतनी बेहतर नहीं होती जो बड़ी कंपनियों की, जो मार्केटिंग के जो लोग हैं या उनके जो संसाधन है, उनके पास जो रिसोर्सेज है वो होते हैं। तो उस चैलेंज को दूर करते हुए ये जो सारे स्टेप्स हैं, फाइनेंस अवेलेबल कराने से लेकर के उसको ट्रेंड करने तक, मार्केटिंग के तक, वो इस स्कीम की खास जो खूबी है। और जो हम देख रहे हैं कि भाई 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन इसमें हुए हैं, तो ये अपने आप में, या 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश हो चुका है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी जो एक ये जो काम हो रहा है वो छोटे स्तर पर हो रहा है, और जो हमारी जो रूरल इकोनॉमी है, क्योंकि वो प्रोड्यूस भी वहीं से आ रहा है, तो उसके जो उत्पादक हैं उनको अपने आसपास अपने उत्पादों के थोड़ा बेहतर कीमत देने का एक बाजार भी खड़ा हो रहा है। तो ये एक जो इकोसिस्टम बन रहा है, तो वो इकोसिस्टम जो है, इनमें से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर हैं वो फिर माइक्रो से स्मॉल में जा सकते हैं, फिर वो और बड़े हो सकते हैं, और बड़े हुए हैं लोग इस तरीके के। उदाहरण जैसे 2 उदाहरण इस आर्टिकल की बात आपने जिक्र किया, जिन भी तरह से छोटी जगहों पर इस तरीके की तमाम सारी जो कहानियां सामने आती हैं, और उसी रास्ते चल के देश में कई बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश हुई है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोइट करने का, और लोगों को स्थानीय स्तर पर बेहतर रोजगार के साथ में उनके जो इकोनॉमी जो है उसको बड़ा करने का एक अच्छा एक तरीके से एक ये स्कीम बनी, और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं, उसके नतीजे आने वाले दिनों में हमें और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने कहा कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रहा है हमारे देश में, जिस तरह से लोगों की इकोनॉमी कंडीशन बदल रही है, उनके जो हाथ में अधिक पैसा आ रहा है तो वो प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं, और उनको फिर ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं उनकी तरफ न जाकर के जो स्थानीय स्तर पर उत्पाद उपलब्ध है वो उनके मार्केट जो है के रूप में सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर हम देखें, हमारी जो GDP का करीब 7% ये सेक्टर बन गया है, और एग्रीकल्चर का एक बड़ा हिस्सा इसके पास है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि हमारा जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो हमारे पास जिसकी जो एक संभाव्यता जिसको हम कहते हैं, उसका हमने बहुत छोटे स्तर का दोहन किया है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए अपार संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की।
0: हरवीर जी, जिन कहानियों का जिक्र कर रहे थे, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि PMFME योजना के सबसे पहले जो लाभार्थी थे वो थे जमुना लाल पाटीदार और उनका आवेदन इस योजना के तहत पहला आवेदन था जिसे स्वीकृत किया गया था। खाद्य प्रसंस्करण में कोई पृष्ठभूमि

0: न रखने वाले दसवीं पास उद्यमी जमनालाल पाटीदार को 10 लाख रुपए सरकार की तरफ से इस योजना से मिले। उन्होंने उसका निवेश धनिया प्रसंस्करण इकाई शुरू करने में किया। योजना के तहत उन्हें वित्त, मशीनरी और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उनका विचार एक सफल उद्यम में बदल गया। और आज उनके पास 5 से ज्यादा लोग हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उनका व्यापार बहुत तेजी से फल फूल रहा है। जमनालाल पाटीदार की ये कहानी हम सबको बताती है कि अगर आपके पास कुछ करने का जज्बा है और आपके पास एक विजन है, एक सोच है, एक प्लान है, तो उस प्लान को आगे बढ़ाने में इस तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं वो बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जगदीश जी, अगर खाद्य प्रसंस्करण की बात को हम आगे बढ़ाएं तो एक बड़ी चुनौती ये आती है कि अगर हमें वित्तीय सहायता मिल भी जाए तो जो छोटे स्तर के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं या जो गांव के दूर दराज के किसान हैं, गुणवत्ता नियंत्रण कैसे करें, शेल्फ लाइफ को कैसे बढ़ाया जाए, जो मॉडर्न डे की पैकेजिंग है और राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाना, उनके लिए आज भी कहीं ना कहीं चैलेंजिंग होता है। क्या आप देखते हैं कि इस दिशा में किस तरह के परिवर्तन लाने की जरूरत है और कितना बदलाव पिछले एक दशक में आया है?
1: देखिए, ये चैलेंज तो है और ये चुनौती भी है उन सब छोटे उद्यमियों के लिए जो अपने घर से या अपने गांव से ऐसा उद्यम शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो फल हैं और सब्जियां हैं इनके बहुत कम पदार्थ बनते हैं, 2 से 3% के लगभग इसका योगदान होता है फूड प्रोसेसिंग में। जबकि फूड प्रोसेसिंग भारत में और सनराइज सेक्टर बोला जाता है इकोनॉमी की भाषा में, और इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है क्योंकि भारत जो है सबसे बड़ा कृषि उत्पाद करने वाला देश है, सबसे अधिक दूध उत्पाद करने वाला देश है। और हम जो है, मतलब आप सोचिए कि फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में भी भारत की जो रैंकिंग है वो वैश्विक रैंकिंग में ऊपर ही है। ये पूरा सेक्टर जो प्रोसेसिंग का सेक्टर है, हमारा खाने की वस्तुएं बनती हैं उसमें 32%, जैसा हरविंद सिंह ने बताया, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, जबकि बहुत चुनौती है। और इसमें मैं 2-3 चीजें जरूर कहना चाहूंगा कि जो स्वयं सहायता समूह हैं, जिनको आप हर राज्य में, और हर राज्य सरकार भी उनको अपनी तरफ से मदद दे रही है, आप किसी भी राज्य में चले जाए, लोकल अखबार उठा के देखें तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक सक्सेस स्टोरी आपको जरूर मिलती है। कोई एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट अपने गांव में जाकर एग्रीकल्चर एक स्टार्टअप शुरू करता है और 200-500 किसानों को अपने साथ जोड़ता है, उनको नई टेक्निक सिखाता है। 3D प्रिंटिंग की जो टेक्नोलॉजी है आप छोटे शहरों तक पहुंच गई है और लोग उससे कर रहे हैं आपको, लेकिन उनको एक विशेषज्ञ सहायता की जरूरत जरूर है, उनको ब्रांडिंग ठीक से करने की जरूरत। अभी जो प्रोड्यूस वो तैयार करते हैं वो इतना ही होता है कि वो लोकली खप जाए, और इसका उद्देश्य भी मुझे यही होना चाहिए कि और जो प्रोडक्ट बाहर जाते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, फल और उसके जो प्रोसेस्ड हैं पदार्थ वो सारे, और जो आप मिलेट्स आ गए, मिलेट्स के कई पदार्थ बनकर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हमारा जो खाद्यान्न है उसकी क्वालिटी के बारे में हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें कहीं कोई एकाध कोई खेप वापस आती होगी, अदरवाइज वो सब मार्केट में खपता है। आप यूरोप में घूमकर आइए, आपको भारत के हजारों छोटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं, लोग अमेजोन पर उसको ऑर्डर करते हैं और लोग खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें इतना बड़ा, इसको सनराइज सेक्टर ऐसे ही नहीं कहते, इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि ये हमारी फॉर्मल इकोनॉमी के आधे के करीब पहुंच सकता है। इसी समय उसका जो आकार है वो बहुत बड़ा आकार है। उनको जरूरत किस बात की कि जो राज्य स्तर पर जो योजनाएं चलाई जा रही है, स्वयं सहायता समूह वर्षों से काम कर रहे हैं और जिन राज्यों में वो सफल हुए हैं वो, आप जैसे यूपी है, यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उत्पादित होने वाले प्रोडक्ट्स को और प्रधानता दी जाती है, स्वयं सहायता समूह को कहा जाता है कि इनको आप बनाइए, इनको हम प्रमोट करेंगे, मार्केट से लिंक करेंगे और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, टेक्निकल सपोर्ट भी देंगे। ये हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ऐसी योजनाएं हो रही है, हिंदी भाषी राज्यों में, दक्षिण में भी ऐसी कई योजनाएं चल रही हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको सीरियसली लेती है, ये केंद्र की योजना बहुत अच्छी योजना है, ये मैं समझता हूँ कि जो सहायता राज्यों से मिल रही है उसके ऊपर है। अब 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को इस योजना का लाभ मिला और 75,000 से ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसमें लिस्टेड हुए जीएसटी में, FSSAI में, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस है वो जरूर मिलना चाहिए। मिलेट्स जब से आए हैं, मिलेट्स पर आधारित खाद्य पदार्थ और प्रोसेस फूड बहुत बड़े पैमाने पर बन रहे हैं जहां मिलेट्स होते हैं, तो और फिर क्वालिटी को अगर हम मेंटेन करते हैं उसके लिए उसको वो मदद, ये जो स्कीम है इसमें ये सब दिया जा रहा है, लेकिन

0: इसका आकार बढ़ाने की जरूरत है। मैं
1: हरवीर जी, दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला कि लोकल प्रोसेसिंग यूनिट से क्या एग्री सप्लाई चेन मजबूत हो रही है, और दूसरा कि छोटे स्तर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, क्या ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सस्टेनेबल मॉडल बन रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
2: सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारे ग्रामीण युवा है जो वहीं पर रुकना चाहते हैं और कुछ बड़ा सोच के काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए मौका मिलना चाहिए। जो ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ट्रेनिंग में थोड़ा अभी कोशिश है इस स्कीम के सामने, लेकिन हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के और फूड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट्स हैं, निकटम्स हैं, तो जरूर इसमें इनिशिएटिव लेकर के जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको जोड़ने के लिए वो थोड़ा उनको तैयार भी करना चाहिए इसके लिए कि आपके लिए यहाँ पर बड़ा इकोनॉमिक एक अपॉर्चुनिटी है, आप आगे जा सकते हैं और साथ में आप स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के अवसर लोगों के लिए पैदा कर सकते हैं। फूड में ये फैक्टर जरूर है कि जो गुणवत्ता है और हाइजीन है, हमारा FSSAI है, उसके जो मानक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, तो वो उनको पूरा करते हुए ही अपने प्रोडक्ट्स को आगे लाएं, क्योंकि अगर आप जो फूड अथॉरिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं अगर आप उनको पूरा करेंगे और आपका प्रोडक्ट्स उस तरीके से बाजार में लोगों तक पहुंचेगा, तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्थानीय स्तर पर बना रहे हैं या कोई बहुत बड़ी कंपनी बना रहे हैं, क्योंकि आप उसी लेवल पर उसकी क्वालिटी जो है, उसकी हाइजीन उस स्तर पर ला रहे हैं और आप कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स कम है, आप सोर्सिंग वहीं कर रहे हैं, आपकी जो चेन है सोर्सिंग से लेकर मार्केटिंग तक की वो बहुत बड़ी नहीं है, तो इसलिए आपके एक्सपेंसिव जो है वो इकोनॉमिकल है दूसरों के मुकाबले। तो ये एक अच्छा बहुत ही मॉडल कामयाब हो सकता है, और इसको क्योंकि बात इसमें फॉर्मलाइजेशन से हो रही है, क्योंकि इनफॉर्मल इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको फॉर्मल इकोनॉमी की तरह बढ़ाना है हमें, उसमें उनके जो FSSAI के उनके पास सर्टिफिकेट्स हो, उनके पास जो है ये बाकी टैक्सेशन की फॉर्मेलिटीज हो, वो सब इसका पार्ट है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी मुहिम के रूप में धीरे धीरे, जैसे लेकिन ये भी रीजनेबल नंबर आ गया है, अगर 20,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं तो वो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, और इसके फुटप्रिंट्स पूरे देश में मिलेंगे, इनको थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। और हम देख रहे हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट्स में, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बेसिक चीजें जो है मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स बना करके, चना में, मक्का में, और बहुत सारी है, जैसे मैंने मिलेट्स की बात की, मैं कुछ महिलाओं से एक बार मिला था हमारे एक कार्यक्रम में, वो आए उड़ीसा से, उन्होंने कहा कि जब ये हॉकी कप एक वहां पर जब हुआ था भुवनेश्वर में, वहां पर उनको अच्छा मार्केट मिला और अच्छे दाम मिले, क्योंकि मिलेट के बिस्किट्स जो है उनके बहुत बेहतर तरीके से उनको मार्केट मिला और पसंद किया गया। तो ये मतलब इस तरीके की जो अपॉर्चुनिटीज आती है मार्केट एक्सेस में, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जहां इस तरह का कैप्टिव मार्केट होता है, कोई बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर इन लोगों को मार्केट एक्सेस दिलवाना चाहिए, जिससे कि इनके जो बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद है वो लोगों के बीच में पहचान बनाए और ये जो मार्केटिंग है वो फिर इनकी विकसित हो।
1: जी जगदीश जी, अगर इस योजना और खाद्य प्रसंस्करण को थोड़ा सा जोड़ कर देखें तो जो 44% महिला नेतृत्व वाले जो उद्यम हैं उनको स्वीकृत ऋण मिले हैं, साथ ही साथ 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को सीड कैपिटल मिली है, यानी जो महिलाओं को आज तक हम सहायक श्रम मानते आए थे, बहुत बड़े तबके के लिए सहायक श्रम की भूमिका थी उनकी, अब वो बिजनेस ओनरशिप में परिवर्तित होने जा रही हैं। आपको क्या लगता है, जब महिलाओं को फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में और ज्यादा तकनीकी तौर पर सक्षम बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट से सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा, तो आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है कि हम ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब भारत को बनाएं, उस दिशा में कितनी प्रगति आप देखते हैं?
0: मुझे लगता है महिलाएं बहुत बड़ा और हिस्सा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट का, क्योंकि भारत में फूड प्रोसेसिंग कोई आज की नहीं है, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन अगर आप देखें कि कितनी चीजें हमारे घरों में बनती है, आज उस क्वालिटी की चीजें आपको बाजार में नहीं मिलती, हमारी नानियों दादियों ने क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं हमने खाया है, तो ये ऐसे ही नहीं बनती, फलों से, सब्जियों से, अनाज से, मोटे अनाज से, इन सब से वो बनाती रही। मैं समझता हूँ उसमें अगर आप महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी है, जो पुराना उनका ज्ञान, पुराने जमाने की जो उनकी विधियां हैं, जो बहुत कम खर्च में ओवरहेड एक्सपेंसेस जिसको कहते हैं, वो कोई भी पदार्थ उसमें वेस्ट नहीं जाता। अभी तो हम अपने जो कृषि टोटल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसमें से सिर्फ 10% ही फूड प्रोसेसिंग कर पा रहे हैं और फलों और सब्जियों में तो 2-3% ही कर पा रहे हैं। अगर हम उस टेक्नोलॉजी को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़े अपनाएं तो आप यकीन मानिए वो महिलाएं ऐसा चमत्कार कर सकती है। 44% महिलाएं कम नहीं होती है। अगर एक योजना जिसमें 2 लाख से ज्यादा सैंक्शन हुए, 20,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है, उसमें अगर 44% महिलाएं हैं तो ये मानकर चलिए कि महिलाएं इस योजना को आगे बढ़ा रही है। उनके उस ज्ञान को, जैसे ही क्या होता है, अगर आप कोई स्वयं सहायता महिलाओं का समूह है और उसमें जब कोई एक टेक्निकल विशेषज्ञ जाता है तो वो आधुनिक पढ़ाई लिखाई वाला होता है, वो जब उनको बताने लगता है तो वो हंसती हैं आपस में कि क्या बोल रहा है, इसको नहीं मान, ये ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो उस नॉलेज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो ट्रेडिशनल नॉलेज है। उस नॉलेज को किस तरह से आप आधुनिक टेक्नोलॉजी के ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, उसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट निकलने वाला है। जिन देशों ने फूड प्रोसेसिंग को आगे बढ़ाया, उन्होंने पुराने नॉलेज को छोड़ा नहीं है, पुरानी टेक्निक को छोड़ा नहीं है, उसको उन्होंने उसको नया रूप दिया, टेक्नोलॉजी में उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अडॉप्टेशन अगर आप करते हैं इस योजना में तो यकीन मानिए महिलाएं इस योजना की मतलब कर्णधार हो सकती हैं। और बड़े पैमाने पर कितना प्रोड्यूस हमारा बेकार जाता है, आलू पश्चिम उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, बेकार फेंका जाता है क्योंकि फूड प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है, अगर है तो उसकी क्षमता उतनी नहीं है। टमाटर कितने ही राज्यों में टमाटर फेंक दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में तो एक पूरा जिला है टमाटर से सड़कों पर फेंक देते हैं, प्रोसेसिंग की यूनिट नहीं है। फिर प्रोसेसिंग की यूनिट अगर लगा दी जाए तो उसको मार्केट एक्सेस नहीं है और वो उस क्वालिटी में उसको मिलना चाहिए, जीवन अवधि है तो वो प्रोड्यूस उस अवधि में पहुंच जाए कंज्यूमर तक, ये सब व्यवस्था अपने को सोचनी पड़ेगी। और उसके लिए जो मैं जोर इस बात पर है कि जो पुरानी विधियां हैं उनको नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएंगे, तो आप यकीन मानिए महिलाएं जो आज कर रही है ना, जो स्वयं सहायता समूह की छोटे छोटे उद्यम चला रही है, जैसे मिलेट्स के बिस्कुट छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर गांव-गांव में ये बन रही है चीजें, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी पैकेजिंग ये दोनों को संभालने की जरूरत है। तो अगर आप पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ मिलाते हैं, अगर मशीनरी नहीं है तो बनाई जा सकती है, जैसे मैंने कहा कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बहुत सारी चीजें लोग बना रहे हैं। मैंने छोटे स्थानों पे अमरावती महाराष्ट्र का छोटा स्थान है, वहां 2-3 यूनिट्स देखी जो 3D टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो उसमें उनको एक इंजीनियर मिल गया, उसके सहारे उन्होंने इसको अपना लिया। तो ये नए प्रयोग वो लोग उनके दिमाग में आते हैं, हमने एक योजना बना दी और योजना का एक फिक्स ढांचा है तो उसको थोड़ा सा ओपन रखना चाहिए कि हाँ ठीक है इसको भी हम लेंगे और इस पर भी हम विचार करेंगे। इसमें आपके पास 4 ऐसी योजना है, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय जो है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना और PMFEMA के साथ में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी है, जो इन सब योजनाओं में कैसे लिंकेज हो और इन सब योजनाओं का लाभ फूड प्रोसेसिंग को कैसे मिले, मंत्रालय इसके लिए कोशिश कर रहा है, नो डाउट, मतलब उनके उद्देश्यों में भी लिखा है और ये सब योजनाएं फूड प्रोसेसिंग को मदद करती है, उस सेक्टर को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इसमें थोड़ा जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको शामिल करना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए कि अच्छा हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे हमारा बनाने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अलावा अगर पुराना कोई अच्छा फार्मूला है तो हम उस फार्मूले को अपनाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा, हम बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, इसमें ग्रो करने की जबरदस्त संभावना है। अभी हम 30.5 के लाख करोड़ के आसपास का ये सेक्टर है, इसको आप 4 गुना ले जा सकते हैं, इतनी क्षमता हमारे इस सेक्टर में है। तो मैं समझता हूँ कि योजना एक उस दिशा में बहुत अच्छा कदम है और इसको इन सब चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। और मेगा फूड पार्क और जो ये बड़ी होती PM किसान संपदा योजना के तहत बन रहा है, कोल्ड चेन बन रही है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बन रहे हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, जो विशेषज्ञ हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको गांव में जाना चाहिए आसपास के, और जहां वो प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है, उसको कैसे मदद दी जाए ये कोशिश करनी चाहिए, उनको कैसे हम सहायता दे सके उसको, जब आप इस PM FME से जोड़ेंगे तो बहुत अच्छा उसका मुझे लगता है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क देने से अब बात नहीं बनती है, उसके साथ नीचे भी लोगों को जोड़ा जाना।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम में अब समय कम है, एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि कोविड के समय इस योजना को शुरू किया गया था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, अगर भविष्य की बात करें तो अगले 5 से 10 वर्षों में आप इस योजना से भारत के ग्रामीण इलाकों की प्रगति को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे इस योजना का दायरा और व्यापक होता जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन जो एक गंभीर समस्या है, उस पर भी बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा?
2: बिल्कुल, देखिए एक तो अभी तक के जो नतीजे हम देख रहे हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। दूसरी बात ये है कि ये हमें हमारे तमाम सारे पॉलिसी एक्सपर्ट और इकोनॉमिस्ट ज्यादातर अब ये सब मान चुके हैं कि जो लिबरलाइजेशन में हमने उम्मीद लगाई थी कि लोग कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर बड़ी इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर में जाएंगे, उसकी संभावनाएं अब कम है। हमें जो रास्ता ढूंढना है इन लोगों के लिए, उनके इकोनॉमिक वेलबींग का, उनके बेहतर फ्यूचर का, वो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही ढूंढना है। तो ऐसे में इस तरह की स्कीम को और बेहतर करके और वहां पर और ज्यादा संभावनाएं पैदा करके क्या हम कर सकते हैं, कैसे इसे बड़ा निवेश ला सकते हैं, वो करना पड़ेगा और करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताऊं कि बिहार में कुछ इस तरीके का एक छोटे स्तर पर सोलर पावर्ड कोल्ड रूम बनाए, बहुत ही पायलट लेवल पे, और उसमें महिलाओं ने अपने जो, जैसे उपासना जी बता रहे थे कि किस तरीके से हमारे फल और सब्जियां वेस्ट हो जाती हैं बड़े पैमाने पर, उन्होंने उसमें रखना शुरू किया और उनको एक मेंबर बना करके किया गया था। तो ये छोटा सा काम था लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि उनका वेस्टेज कम हो गया, उनके प्रोड्यूस को बेहतर दाम मिलने की स्थिति पैदा हो गई। इसमें भी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो शेल्फ लाइफ जिस तरीके के प्रोडक्ट प्रोसेस होकर के आते हैं उनका अगर कम है तो कम्युनिटी लेवल पर उनके लिए ये इस तरीके के कलेक्टिव जो अप्रोच के जरिए जो फैसिलिटी है उसमें भी साथ में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा तंत्र सरकार को बनाना चाहिए जो इनके साथ सीधा जुड़ सके।
1: छोटे छोटे कदम जब एक दिशा में बढ़ते हैं तो वो सिर्फ रास्ते नहीं बदलते, पूरी तस्वीर बदल देते हैं। पीएम एफएमई योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लाखों हाथों की ताकत है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की नींव रख रहे हैं, जहां एक छोटा सा यूनिट एक परिवार की उम्मीद बनता है और वही उम्मीद पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को गति देती है। आज की चर्चा से ये साफ है कि जब नीतियां जमीन से जुड़ती हैं तो बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं जिंदगियों में दिखाई देता है। हमारे अतिथि जगदीश उपासने जी और हरवीर सिंह जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे खाद्य प्रसंस्करण से उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहे प्रोत्साहन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 956 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में जिसका नाम है दिल ने फिर याद किया। एक ऐसा आपका अपना कार्यक्रम जिसका नाम सुनते ही वक्त की सुइयां जैसे पीछे घूम जाती हैं, धड़कनें धीमी हो जाती हैं और यादों का खूबसूरत कारवा हमारी आंखों के सामने तैरने लगता है। सामाइन, वक्त की रफ्तार, ये तेजी, ये तब्दीली कितनी अजीब है ना। ये वक्त जब आगे बढ़ता है तो तरक्की के नाम पर हमसे हमारी जिंदगी के वो छोटे छोटे मगर बेहद खूबसूरत हिस्से चुपके से छीन लेता है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों, वक्त का पहिया इतनी तेजी से घूमा है कि आज टेक्नोलॉजी और सहूलियतों ने हमारी जिंदगी के एक बटन के एक क्लिक पर समेट दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस हाईटेक जमाने में हमने वो सादगी और वो अपनापन खो दिया है। आज कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया के माध्यम से हमारा दिल उन्हीं पुरानी यादों के आंगन में जाने को बेताब है जिन्होंने हमारे बचपन और जवानी के खूबसूरत रंगों को रंगा था। इस कारवां में देखिए, हमें आज याद आ रही है गर्मियों की वो याद, जब गर्मी से बचने के लिए हम रात को छत पर अपना बिस्तर लगाते थे और जब हवा चलती थी तो आनंद ही आ जाता था और मौसम ऐसा हो जैसा आजकल हो रहा है। आसमान में बादल हैं, हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ऐसे मौसम में तो छत पर सोने का आनंद ही अलग था। गर्मियों के दिनों में वो चारपाई पर मच्छरदानी लगाकर सोना, मच्छरदानी के अंदर गर्मी से थोड़ी राहत देता था वो लकड़ी का हाथ वाला पंखा जिसे हम बीजना कहते हैं। पूरा परिवार छत पर ही सोता था। रात को छत पर गप्पे मारना, एक दूसरे को अंधेरे से डराना, एक तरफ दादी नानी की पुरानी कहानियाँ और दूसरी तरफ चचेरे ममेरे भाई बहनों की फुसफुसाहट और वो खिलखिलाहट, वो हंसी। आसमान में चमकते तारे जिन्हें गिनते गिनते पता नहीं कब नींद आ जाती थी। उस दौर में अपनों का साथ, तारों भरी छत। बदलते दौर के साथ हमारे घर तो बड़े हो गए हैं पर वो छतें वीरान पड़ी हैं। वो हंसते खिलखिलाते गप्पे मारते वो हमारे साथी, और छत की खिलखिलाहट अब कहीं ना कहीं कमरों में कैद हो गई है। अगर आपके पास भी है छत पर सोने की इसी तरह की कोई याद तो हमें लिखकर ज़रूर भेजें। कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया और मैसेज भेजने के लिए हमारा नंबर है 9457078288। नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 9457078288। आप लिख कर भेजिए हमें अपनी यादें, तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं अगर आप भी, तो उठाइए अपना फ़ोन और लिख भेजिए अपनी याद, जो कि है गर्मियों के दिनों में हम लोग छत पर सोते थे, आपको भी याद होगा। इस संबंध में अगर आपकी कोई याद है तो लिख भेजिए हमारे व्हाट्सएप पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288, 9457078288। बहुत सारी यादें लिखकर हमारे पास हमारे श्रोता भेज रहे हैं, उनमें से एक हैं ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। इन्होंने लिखा है गर्मियां आ चुकी हैं और जाने वाली भी हैं क्योंकि बरसात का मौसम आ रखा है। ऐसे मौसम में अपना ख्याल रखिएगा, पानी ज़्यादा पीना है, खाना कम खाना है और सबसे ज़रूरी बात बासी खाना नहीं खाना है, सिर को धूप से बचाना है क्योंकि इन्होंने लिखा है कि अभी हम छत पर सो रहे हैं सर जी और आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। चलिए, इन्होंने दोनों अलग अलग बातों को एक साथ जोड़ दिया है कि हम सब छत पर सो रहे हैं इस वक्त, और देखिए खुले आसमान में सोने वाले हैं आज रात, और आसमान के जो नज़ारे हैं उनका आनंद लेते हुए ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। इस तरह का प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मैसेज हमारे पास आया है ग्राम जुझेला थाना शिवाला कला बिजनौर से, भेजने वाले हैं राशिद अंसारी, मोहम्मद अफ़ान और अदीना नूर। ये लिखते हैं हमें रात को छत पर सोना बहुत अच्छा लगता है, खुले आसमान के नीचे तारों की छाया में और धीमी धीमी ओस में बहुत ही अच्छी नींद आती है। खुली और स्वच्छ ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। दूसरे खेल खेल में हम आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज़ भी गिनते थे कि इधर से आने वाला हमारा और उधर से आने वाला तुम्हारा, साथ में आसमान के तारे भी गिनकर खेल खेलते थे। सभी सदस्यों के बिस्तर एक लाइन में बिछे रहते थे जिससे तकिए रेल के डिब्बे की तरह लगते थे। जब बारिश और आंधी आती थी तो नींद में ही अपने बिस्तर लेकर भागते थे, कुछ जीने की पैड़ी से नीचे भी गिर जाते थे और उस समय लकड़ी की सीढ़ियाँ भी होती थी, उस पर से भी कभी कभी नीचे गिर जाते थे। जी हाँ, बहुत सारी घटनाएं उन दिनों हुआ करती थी। जिस तरह से आपने बताया है कि आसमान में जाने वाले हवाई जहाज़ गिना करते थे, और एक चीज़ और है कि रात में टूटने वाले तारे भी हम गिना करते थे और उनको देखकर दुआएं भी मांगी जाती थी। ये मैसेज हमारे पास आया है शाही मार्केट सिवारा ज़िला बिजनौर से आसिफ चौधरी, बेगम रेहाना, अरफात चौधरी, आदिब चौधरी और कादिर चौधरी। ये लिखते हैं कि हमारे बचपन में जब गर्मी होती थी तो वाकई हम छत पर सोते थे, तारे गिनते रहते थे, चांद की रोशनी में लेटा करते थे, छत पर दीवारें नहीं होती थी, पड़ोसियों से भी बातें करते थे। और अब तो लाइट का बंदोबस्त है, लाइट भागती ही नहीं है क्योंकि हर घर में इन्वर्टर है, अगर थोड़ी बहुत लाइट चली भी जाए तो इन्वर्टर की वजह से पता नहीं चलता। जी हाँ, पुरानी यादें तो हैं लेकिन वो यादें कहीं ना कहीं पीछे छूट चुकी हैं क्योंकि सुविधाओं ने उनकी जगह ले ली है, और वो यादें भी इसी वजह से बनी क्योंकि हमारे पास उन दिनों सुविधाएं नहीं हुआ करती थी। और आपने लिखा भी है क्योंकि हर घर में इन्वर्टर है तो लाइट जाने का पता भी नहीं लगता। बहुत अच्छी अपनी याद इन्होंने हमारे पास भेजी है आसिफ चौधरी ने शाही मार्केट सहारा ज़िला बिजनौर से। इसी तरह के मैसेज आप भी हमें भेज सकते हैं, हमारा नंबर है 9457078288।

कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया, जिसमें हम छेड़ते हैं आपके यादों की कुछ पुरानी बातें, और वो यादें आप हमसे साझा करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। एक ऐसा ही मैसेज हमारे पास आया है जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। आप लिखते हैं कि रात में छत पर सोना या खुले में सोना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रात में कीड़े मकोड़े या सांप निकलने का डर होता है, जिससे वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी बात बताई है मुकेश कश्यप जी ने कि बरसात के दिनों में हमें सावधानी तो बरतनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस तरह के जो जीव जंतु हैं वो निकलने का खतरा रहता है और हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। और इसके अलावा ये लिखते हैं कि रात का समय, चांदनी रात, गर्मी का मौसम, साथ में रेडियो का साथ, पुराने गाने, मानो ऐसा लगता है कि जन्नत में हूँ। रेडियो सुनते सुनते नींद आ जाती थी जब हम छत पर सोते थे। बारिश पड़ने पर हम तो नीचे आ जाते थे, लेकिन हमारा रेडियो छत पर ही रह गया। सच में मेरे साथ ऐसा दो बार हुआ। और इसके अलावा इन्होंने एक और बात लिखी है कि अब तो हमारे पास 4-5 मोबाइल हैं, अब तो हम मोबाइल पर भी रेडियो सुन सकते हैं। हालांकि ये अभी भी छत पर सोते हैं, लेकिन मोबाइल तो हिफाजत से

ना ही पड़ता है, इसलिए अब रेडियो भूलने का कोई डर ही नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ अपनी याद साझा की और बताया कि आपका रेडियो कई बार छत पर रह चुका है, जब बारिश पड़ती थी और आप ऊपर सोते थे, बारिश पड़ती थी तो नींद में ही आप बिस्तर लेके तो नीचे आ जाया करते होंगे, लेकिन आपका रेडियो वहीं रह जाता होगा। बहुत अच्छा लगा। ये मैसेज हमारे पास आया है ग्राम गधरोना, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड से मदन गिरी का। ये लिखते हैं, मुझे याद है बचपन की वो यादें जब हम परिवार के सभी लोग मिलकर छत पर सोया करते थे या फिर आंगन में खड़े नीम के पेड़ के नीचे सोया करते थे। अब वो बात कहाँ। अब तो ना आंगन में पेड़ है ना ही छतें, अब तो सब अलग अलग कमरों में एसी लगाकर सोते हैं। मुझे भी वो दिन याद है जब हम दादी की गोद में कहानी सुनते सुनते सो जाया करते थे। काश वो दिन फिर से आ जाए। बहुत अच्छी याद आपने हमारे साथ साझा की है कि आप अपनी दादी के गोद में सर रख कर सो जाया करते थे और आपके आंगन में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था जो कि अब नहीं है। अब तो आप कमरों में ही सोते हैं और ज़्यादातर लोग आजकल कमरे में ही सोते हैं, तो वो वाली बात तो खैर अब नहीं है। कि ये मैसेज हमारे पास आया है नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साईं गायकवाड़। ये लिखते हैं, गर्मी के मौसम में छत पर सोते हैं, बहुत मज़ा आता है, शुद्ध हवा मिलती है। पहले बाहर सोने के लिए जगह मिल जाती थी, अब बाहर सोने के लिए भी जगह नहीं है, अब छत पर जगह है, हम ऊपर ही सोते हैं। गर्मी का मौसम चला गया है, बहुत मज़ा आता था, अब बारिश का मौसम है, घर में सोते हैं। ये लिखते हैं कि गर्मी के दिनों में तो ये छत पर सोते थे, लेकिन अब बरसात के मौसम में ये कमरे में ही सोते हैं क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, शायद नींद से बहुत प्यार है कि बीच में नहीं उठना चाहते ये। बिल्कुल मेरी तरह, बीच में अगर कोई व्यवधान डाले, कोई परेशान करे उठाते हुए, तो बुरा तो लगता ही है, चाहे वो बारिश ही क्यों ना हो। तो अगर आप भी, आपके भी मन में कोई ऐसी याद है तो हमें लिखकर भेजिए ना। कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया और हमारा नंबर है 9457078288। आप सुनिए ये गीत, इसके बाद हम आते हैं, लौटते हैं आपके बहुत सारे मैसेज के साथ।

0: ये मैसेज हमारे पास आया है गंज टुंडवारा से इरफान कुरैशी और शमसुल कमर राही का। लिखते हैं, आज जब आप रेडियो पर छत पर सोने की बात कर रहे हैं तो सच मानिए मेरी आंखों में पानी आ गया। मुझे तुरंत अपना 90 के दशक का वो छोटा सा घर याद आ गया। हम चार भाई बहन थे। गर्मियों में जैसे ही शाम के 5-6 बजते थे, मेरी और मेरे भाई की ड्यूटी होती थी छत पर पानी छिड़कने की। जैसे ही गरम गरम पक्के फर्श पर ठंडा पानी पड़ता था, वो जो मिट्टी और ईंटों की सौंधी सौंधी खुशबू उठती थी, वो आज के किसी महंगे रूम फ्रेशनर या एसी में कहाँ। फिर हम सब मिलकर लाइन से चारपाइयाँ बिछाते थे, चादरें खींच खींच कर बिछाई जाती थी। रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार छत पर सोता था, चाचा ताऊ मम्मी दादी सबकी चारपाइयाँ आसपास। न कोई मोबाइल था न कोई स्क्रीन। हम बच्चे आसमान में तारों के पैटर्न ढूंढते थे, ध्रुव तारा खोजते थे, और जब कोई आसमान का तारा टूटता था, तारा दिखता था, तो चुपके से आंखें बंद करके दुआ मांगते थे। दादी हमें कई कहानियां सुनाती थी। परियों की कहानियां मुझे बहुत पसंद थी, और कहानियां सुनते सुनते हम कब सो जाते थे हमें पता ही नहीं चलता था। सुबह जब चिड़ियों की चहचहट और चेहरे पर सूरज की पहली किरण पड़ती थी, तब आँख खुलती थी और शरीर में एक अलग ही ताजगी होती थी। आज मेरे पास बहुत बड़ा घर है, हर कमरे में स्प्लिट एसी, लेकिन रात को वो जो उन दिनों नींद आती थी, वो वाली नींद आज कहीं ना कहीं गायब है। आज एसी की हवा में वो ठंडक तो है, लेकिन अपनों की वो गर्माहट और वो तारों भरी छत बहुत याद आती है। आपका शो सुनकर आज दिल में सच में मैं अतीत में लौट गया। शुक्रिया ये यादें ताज़ा करने के लिए। शुक्रिया तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आपने इतनी अच्छी याद हमारे साथ ताज़ा की, इरफान जी और शमसुल कमर राही जी। धन्यवाद हमें मैसेज करने के लिए। और ये मैसेज हमारे पास आया है ग्राम पोस्ट राहु नगली आचार्य, सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, भूमिका चौहान, कशिश चौहान और प्रिंस राजपूत, कनिष्का चौहान और भव्य चौहान का ये मैसेज हमारे पास आया है। लिखते हैं, गर्मी की बहुत सारी यादें हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। बचपन में हम दिन के समय बाग में घूमने जाया करते थे, वहाँ की हवा लेने, और रात को छतों पर सोने का जो एहसास होता था अपने परिवार के सदस्यों के साथ, उसमें हम काफ़ी देर तक रेडियो तेज़ आवाज़ में छत पर बजाया करते थे। तब पड़ोसी हमसे कहते थे कि आवाज़ कम कर लो, लेकिन दूसरे पड़ोसी हमसे कहते थे कि आवाज़ तेज कर दो। इस तरह की नोक झोंक में बहुत हमें मज़ा आया करता था। आप भी हमारे साथ अपनी जो यादें हैं वो साझा कर सकते हैं। कार्यक्रम है दिल ने फिर याद किया, हमारा नंबर है 9457-07-8288।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

श्रोताओं, ये मैसेज हमारे पास आया है राही नगर गंजी टुंडवार से, शाहीन फातमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान और ताबिश खान का। लिखते हैं, रुत बदली, मौसम बदला और बदला रेडियो से जुड़ने का अंदाज। एक जमाना था जब हम खुले आसमान के तले तारों भरी रात में सब भाई बहन एक साथ बैठकर रेडियो सुना करते थे। उस वक्त रेडियो टीवी के बराबर हुआ करता था, इसलिए बुलंद आवाज में हम सब सुना करते थे और अपनी फरमाइश आने पर जोर से खुशी का इजहार किया करते थे। उन दिनों प्रेम कुमार सरदाना जी के प्रोग्राम हमें बहुत अच्छे लगा करते थे। बहुत अच्छी याद आपने हमें लिखी है कि आप सब भाई बहन छत पर बैठकर रेडियो सुना करते थे और बुलंद आवाज में सुना करते थे। ये मैसेज हमारे पास आया है नगीना से, भेजने वाले हैं अनिल विनोचा जी। लिखते हैं, सच में बहुत ही यादगार टॉपिक आपने लिया है, सच में मज़ा आ गया। वो प्राकृतिक जीवन, ठंडी हवा और दिन में रिमझिम अगर बारिश गिरी हो तो सोने पे सुहागा होती थी, और उसके बाद वो छत पर सोने वाली रात। खेलते भी थे, खासकर लूडो, कैरम बोर्ड, ताश और तोता उड़ मैना उड़। रेडियो भी अच्छे सॉन्ग प्ले करता था, एंजॉय की कोई सीमा नहीं थी उन दिनों। अब भी लोग सोते हैं, मच्छरदानी लगा के सोते हैं। वैसे अब आर्टिफिशियल आधुनिक सुविधाएं बहुत हैं, बड़े शहरों में फ्लैट हैं, वहाँ कहाँ ऐसा जीवन संभव है। फिर हमारी एक पड़ोसन थी जो दिन में नाराज़ हो जाती थी, और वो भी एक बहाना होता था, हम जलेबी पर मलाई डालकर खाते थे तो पड़ोसन को भी खिलाते थे, वो मान जाती थी। फिर सुबह मुस्कुराते हुए सलाम भी हमारा हुआ करता था। सच में मज़ा आता था, क्या दिन थे वो। बस बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा टॉपिक लेने के लिए, ऐसा हमारे विनोचा जी ने नगीना से लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपनी याद हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये एक और मैसेज हमारे पास आया है, ये लिखते हैं कि जब आप रेडियो पर छत पर सोने की बात कर रहे हैं तो सच मानिए, हम अपने पुराने ज़माने में पहुंच गए। सिर्फ हमारा ही परिवार नहीं बल्कि आसपास के जितने भी घर थे सबकी छतों पर सबकी छतें आपस में सटी हुई होती थीं। शाम को 6 बजे के बाद छतों पर छिड़काव हुआ करता था पानी का, और जो खुशबू आती थी वो किसी महंगे परफ्यूम को भी मात दे सकती है। और रात को चारपाइयां बिजती थीं तो सिर्फ घर वाले ही नहीं बल्कि बगल वाली छत से चाची और सामने वाली छत से भाभी भी वहीं आकर बात करने लगती थीं। रात के 11-12 बजे तक तो छतों पर हंसी के ठहाके गूंजते थे। कभी कोई किसी की छत पर खरबूजा या आम खाने जाता था तो कभी किसी की छत पर रेडियो पर बजते पुराने गानों का मज़ा सब लोग मिलकर लेते थे। जब बिजली चली जाती थी तो कोई रोना धोना नहीं होता था, सब छतों पर हाथ वाले पंखे झेलते हुए हवा का इंतज़ार करते थे। आज मैं दिल्ली के एक बहुत बड़े शहर में रहता हूँ, एसी की ठंडी हवा तो है लेकिन आसपास कौन रहता है ये नहीं जानता। आज जब अपने छत पर सोने की बात की तो मुझे लगा कि तरक्की के नाम पर हमने कितना कुछ किया है और बहुत कुछ हम पीछे छोड़ कर आए हैं। आपका ये शो सीधे दिल में उतर रहा है, धन्यवाद। ये मैसेज हमारे पास आया था अनारकली बाज़ार जगराओं से, भेजने वाले हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव और विनोद पुरी, धन्यवाद मैसेज करने के लिए। देखिए श्रोताओं, यूँ तो बात जो है हम कर रहे हैं यादों की, लेकिन हमारे आज भी बहुत सारे सुनने वाले हैं जो आसमान, खुले आसमान के नीचे सोने के शौकीन हैं, लेकिन बरसात के दिनों में सोते सोते जब अचानक से बारिश आ जाती थी तो ऐसे भागते थे जैसे भूत पीछे पड़ गया हो। ऐसी कोई याद अगर आपके पास है तो हमें भेजिए। और बात सिर्फ छत की नहीं है श्रोताओं, उस दौर के मिलनसार व्यवहार की भी है। आज जब हर जेब में स्मार्टफोन है, जब मर्जी आई वीडियो कॉल कर लो, मैसेज भेज दो, लेकिन एक दौर वो भी था जब कुछ चुनिंदा घरों में वो काले रंग का डायल घुमाने वाला या बटन वाला लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। उन दिनों फ़ोन हर घर में तो होता नहीं था, लेकिन पूरे मोहल्ले में या गली में किसी एक के घर में फ़ोन हुआ करता था। और जब दूर बैठे किसी रिश्तेदार का फ़ोन आता था तो पड़ोसी भागते हुए हमारे दरवाजे पर दस्तक देता था, अरे भाई साहब, आपके बॉम्बे वाले रिश्तेदार का फ़ोन आया है, ज़रा जल्दी चलिए। और फिर क्या, चप्पल घसीटते हुए, धड़कते दिल और उत्सुकता के साथ पड़ोसी के घर जाना, जब तक हाथ में वो भारी सा रिसीवर आता था, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई ही रहती थीं। हाँ हाँ, आवाज़ आ रही है, हाँ हाँ, सब ठीक है। उन दिनों 2 मिनट की ये जो बातें होती थी, उनमें जो मिठास होती थी,
जो अपनापन होता था और जो बेताबी होती थी, वो आज के घंटों घंटों तक चलने वाली मुफ्त वीडियो कॉल्स में कहीं खोई सी रहती है। तो देखिए, हमने टॉपिक बदल दिया है। पहले हम छत पर सोने की बात कर रहे थे, अब उसमें जुड़ चुका है लैंडलाइन फ़ोन। तो अगर आपके पास छत पर सोने के साथ साथ लैंडलाइन फ़ोन की भी कोई याद जुड़ी हुई है तो वो भी आप लिखकर भेज सकते हैं। हमारा वही नंबर है 9457078288। आते हैं इस गीत के बाद।

पवन कुमार जी भेजते हैं जिला गोंडा उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, बचपन में याद है जब फ़ोन की घंटी बजती थी तो दौड़ा दिया जाता था, जाकर देखो किसका फ़ोन है। गर्मियों में खुली छत पर सब लोग सोते थे तो टेलीफोन का तार लंबा करके छत पर ले जाते ताकि फ़ोन उठाने के लिए नीचे ना जाना पड़े। इस तरह की याद हमारे पास लिखी है पवन कुमार जी ने जिला गोंडा से। जी हाँ, बिल्कुल सच्चाई है इस बात में कि एक तो मुड़ा हुआ तार रहता था तो दूर से ही वो तार जो रिसीवर होता था हम बात कर सकते थे उससे, और खुला हुआ तार रहता था ऊपर भी ले जा सकते थे उसको। थोड़ा इतना छोड़ दिया जाता था कि कोई बाहर बैठा शख्स भी उससे बात कर सके। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ये मैसेज हमारे पास आया है बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग का। ये लिखते हैं, आज का टॉपिक सुनकर तो मुझसे रहा ही नहीं गया, इसलिए आपको मैसेज लिख रहा हूँ। आपने जब लैंडलाइन फ़ोन की बात की तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। हमारे पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक शर्मा जी के घर में ही काले रंग का गोल डायल वाला लैंडलाइन वाला फ़ोन था। जब मेरे पिताजी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाते थे तो शर्मा जी के घर पर ही फ़ोन किया करते थे। मुझे आज भी याद है, जब फ़ोन बजता था तो शर्मा जी के बच्चे दौड़ते हुए हमारे घर आते थे कि जल्दी चलो, अंकल का फ़ोन आया है। और बस हम चप्पल घसीटते हुए कांपते हांपते शर्मा जी के ड्राइंग रूम में पहुंच जाते थे। वो रिसीवर हाथ में लेते ही जो दिल की धड़कन तेज़ होती थी उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। 2 मिनट की बात होती थी लेकिन उसमें पूरे हफ्तों का हाल चाल पूछ लिया जाता था। फ़ोन कटने के बाद आंटी हमें मुस्कुराकर पानी का गिलास देती थी और पूछती थी, सब ठीक ठाक है ना बेटे। आज जब हमारे सबके हाथ में स्मार्टफोन है, अनलिमिटेड कॉल्स हैं, 24 घंटे व्हाट्सएप चल रहा है, लेकिन अब वो बेताबी और वो अपनापन नहीं है। आज वो बगल के कमरे में बैठे इंसान को भी लोग मैसेज कर देते हैं। लैंडलाइन वाले ज़माने में पूरे फ़ोन पूरे मोहल्ले को जोड़ कर रखता था और आज मोबाइल ने एक ही घर में सबको अलग अलग कर दिया है। आपका ये शो सुनकर पुरानी सहूलियतें और वो सादगी बहुत याद आ रही हैं। धन्यवाद ऐसा टॉपिक चुनने के लिए, धन्यवाद आपका भी हमारे पास मैसेज करने के लिए। और ये मैसेज हमारे पास आया है मंसूरी कॉलोनी ये मुरादाबाद से। भेजने वाले हैं इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी और बाबू अंसारी। ये लिखते हैं, आज आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक रखा है, इस पर मैं कुछ कहना चाहूँगा। हमारे बचपन में जब गांव में रहा करते थे तो सभी के मकान एक ही मंजिल हुआ करते थे, सबके एक ही छत से काफ़ी दूर तक सबकी छतें मिली हुई हुआ करती थी, तो एक इंसान छतों के जरिए काफ़ी दूर तक जा सकता था। अब किसी का मकान एक मंजिल बना हुआ है, किसी का 2 मंजिल बना हुआ है और इस तरह से कोई कहीं पर नहीं जा सकता। गर्मियों में जब छत पर सोते थे चांदनी रात हुआ करती थी, उस वक्त रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था सूचनाओं का और मनोरंजन का। ये बहुत ही सरल और अच्छा माध्यम है रेडियो, हम इसे बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और रेडियो के सारे प्रोग्राम हम सुनते हैं, बहुत ही ध्यान लगा कर सुनते हैं और लोगों का फ़ायदा भी है। तो इन्होंने और लिखा है कि कोई किसी से बात नहीं करता आजकल, सब अपने अपने मोबाइल में अलग अलग लगे रहते हैं। सर वो भी क्या दिन थे। और ये एक और मैसेज हमारे पास आया है कार्यक्रम में, ये मैसेज हमारे पास आया है ग्राम महेशपुर कैंप से। भेजने वाले हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा। ये लिखते हैं, आज आपने जिन दो बातों का जिक्र किया, छत पर सोना और लैंडलाइन फ़ोन, ये सिर्फ यादें नहीं हैं, 80-90 के दशक वालों का पूरा जीवन है। मुझे याद है जब हमारी बुआ की शादी तय हुई थी तो पूरे रिश्तेदार में यह खबर हमारे पड़ोसी के लैंडलाइन फ़ोन से ही फैली थी। बुआ की बात कराने के लिए पड़ोसी के घर में घंटों लाइन लगती थी, पर किसी पड़ोसी के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वो मुस्कुराकर अपने घर का फ़ोन इस्तेमाल करने देते थे और गर्मियों की रातें आज की पीढ़ी सोच भी नहीं सकती बिना एसी, सिर्फ एक खुली छत और सूती चादर के दम पर भी कोई इतनी गहरी और मीठी नींद सो सकता है। जब रात को हल्की बारिश आ जाती थी तो आधी रात को अपनी अपनी चारपाई और बिस्तर उठाकर नीचे भागने में जो भगदड़ मचती थी उसमें भी एक अलग ही मज़ा और हंसी ठिठोली रहती थी। आज समय बदल चुका है, तकनीकें आ गई हैं और हम कहने को तो आधुनिक हो गए हैं, लेकिन सच में आज हम सिर्फ सुविधा पा सके हैं, वो सुकून और मिठास हमने खो दी है। आज आपके शो के जरिए लगा जैसे थोड़ी देर के लिए अपने पुरसी पुराने बेफिक्र
जीवन में हम घूम आए हैं। ऐसे ही खूबसूरत टॉपिक लाते रहिए। धन्यवाद ऐसा खूबसूरत मैसेज करने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए।

आज के कार्यक्रम का ये आखिरी मैसेज हमारे पास आया है जसपुर उत्तराखंड से। भेजने वाले हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। ये लिखते हैं, आपने आज लैंडलाइन फ़ोन की बात की तो मुझे वो दौर याद आ गया जब घर में लैंडलाइन होना किसी VIP होने से कम नहीं था। हमारे पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक टीचर के घर पर लैंडलाइन फ़ोन लगा था। जब मेरे बड़े भाई साहब पढ़ाई के लिए बाहर गए थे तो उनका फ़ोन महीने में एक या दो बार ही उनके घर आता था। भाई साहब पहले से चिट्ठी लिखकर बता देते थे कि मैं इस दिन इस समय आपको फ़ोन करूंगा और आप उनके घर चले जाना। आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारा पूरा परिवार उस दिन आधे घंटे पहले ही नहा धोकर उनकी बैठक में जाकर बैठ जाते थे। दिल की धड़कनें ऐसे चलती थी जैसे कोई परीक्षा का रिजल्ट आने वाला हो। और जब वो फ़ोन की घंटी बजती थी ट्रिंग ट्रिंग, तो पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता था। उस तीन मिनट की बात में जो अपनापन, जो रोना हंसना और जो तड़प होती थी, वो आज के 24 घंटे वाले चलने वाले मुफ्त व्हाट्सएप वीडियो कॉल में भी नहीं। आज बच्चे सेकेंडों में फ़ोन मिला लेते हैं लेकिन उनके पास बात करने के लिए शब्द ही नहीं है। उस ज़माने में इंतज़ार लंबा था, पर उस इंतज़ार की मिठास ही कुछ और थी। आज पुरानी यादों की तिजोरी खोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रियासत जी, हमें मैसेज करने के लिए और हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।

श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का मकसद आपको उदास करना नहीं, बल्कि आपकी व्यस्त जिंदगी के कुछ पल चुराकर आपको आपके उसी बेफिक्र खूबसूरत और अपनेपन से भरे कल से जोड़ना है, ताकि आज जब आप अपने कमरे का एसी ऑन करें या अपने हाथ में ये स्मार्टफोन लें तो एक बार मुस्कुरा कर अपने बीते कल को शुक्रिया कह सकें। पुरानी चीज़ें भले ही इतिहास बन गई हों, लेकिन उनसे जुड़ी मोहब्बत और यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। इसी उम्मीद और प्यार के साथ अब हमें दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। मिलेंगे दिल ने फिर याद किया कि अगली कड़ी में एक नए सफर और नई यादों और आपके अपनों के साथ। तब तक आपकी जो सहूलियतें हैं उनका बहुत ही प्यार से इस्तेमाल कीजिए और अपने अपनों से फासले मत बनने दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी नचिपाबाद।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: कर रहे थे राशिद नियाजी, ये अब सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का सपना जन आंदोलन में बदलना चाहिए और देश के युवाओं को इस परिकल्पना की नींव बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर विरोध प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में हंगामे के बीच सदन ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बैनर्जी को मानसून सत्र के शेष समय के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया। विकासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने कहा कि कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक और असंसदीय टिप्पणी की।
3: आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा एवं असंसदीय टिप्पणियां की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये सदन की गरिमा के विरुद्ध है।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूँ कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम का तहत होना है, माननीय स्पीकर महोदय सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए।
2: राज्यसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। उपसभापति हरिवंश ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन चलाने में सहयोग करना चाहिए। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के आचरण की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना और लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल सुरक्षा में सुधार, बुनियादी ढांचे के रखरखाव और आधुनिक तकनीकों के उपयोग से रेल दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। लोकसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि वर्ष 2014-15 में हुई 135 रेल घटनाओं की संख्या घटकर इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 रह गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रदर्शनकारियों के संसद मार्च के दौरान कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में केंद्र और दिल्ली पुलिस से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। न्यायालय ने अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सहित पुलिस कार्रवाई से संबंधित सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा ने कहा है कि नीट पेपर लीक के मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री नड्डा ने कहा कि ये गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार संसद में नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष चर्चा की अवधि तय करे और सभी पहलुओं पर खुलकर बात करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने विपक्ष से इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार का साथ देने की अपील भी की। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खुल गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। चीन के चांगझोउ में चल रहे चीन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने हमवतन उन्नति हुड्डा को हराया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के युशी तनाका को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that the dream to build a Viksit Bharat should become a Jan Andolan and the country's youth should form the foundation of this vision. He said the welfare of citizens must remain at the heart of all reforms. The Prime Minister made the remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors towards Viksit Bharat goals in New Delhi. The meeting was attended by the Cabinet Secretary, secretaries of key ministries as well as senior officials from the Prime Minister's office. The Prime Minister underscored the importance of tackling the serious issue of drug abuse among youth. He also stressed the importance of promoting technology and fostering innovation through startups in the sports sector. The government today reiterated its readiness for meaningful discussion on NEET paper leak issue in the Parliament. Speaking in the Lok Sabha, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government was prepared for a meaningful debate on the issue involving all sides under established parliamentary rules, keeping in mind the future of the country's youth. Mr. Rijiju's remarks came as both houses of parliament witnessed repeated disruptions by the opposition for the third consecutive day today over various issues, including the NEET paper leak case and student protests. Later, the Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day. The opposition demanded resignation of the Union Education Minister before discussion. Speaking in the Rajya Sabha, the Parliamentary Affairs Minister accused the Congress of avoiding a debate by imposing fresh conditions despite the government's willingness to discuss the issue. Defence Minister Rajnath Singh has expressed concern over the ongoing protests in Delhi, saying the centre is deeply sensitive to the sentiments and concerns of the youth and is ready to listen and address every concern raised by students. Mr. Singh was talking to media in New Delhi. The minister alleged that some individuals are attempting to use the students and youth as political tools to serve their own political interests.
5: It is deeply unfortunate that some people are trying to use the students and youth of our country as political tools to serve their own political interests. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, our government is fully committed to fulfilling the aspirations of students and young people and ensuring their welfare. Listening to every concern of students and addressing them is the responsibility of all of us.
2: The Delhi High Court today sought responses from the Centre and Delhi Police on pleas alleging use of excessive force against protesters marching to Parliament on Monday. The court directed the authorities to preserve all relevant records in relation to the police action, including CCTV camera footage and videography. The court gave 4 weeks to the authorities to file their replies. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy today said the government has earmarked nearly 40,000 crore rupees for the scientific closure of abandoned coal mines with a target of closing over 147 identified coal mines by 2027-28. Addressing the release of India's first annual report on scientific mine closure titled Aroh in New Delhi, Mr. Reddy said the government no longer views mine closure as the end of mining activity but sees it as the beginning of new opportunities for communities and the environment. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today met his Canadian counterpart Anita Anand this afternoon on the sidelines of Quad Foreign Ministers meeting in Manila, Philippines. In a social media post, Dr. Jaishankar said India-Canada cooperation has been steadily growing. He said the conversation focused on achieving the goals for the relationship set by the Prime Ministers of both the nations. Dr. Jaishankar also met with his New Zealand counterpart Winston Peters and shared perspectives on the Indo-Pacific security situation. In China Open Badminton, PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Changzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player
4: Unnati Huda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash this afternoon. And that is the end of this news bulletin.
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारे इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर अपनी प्रथम सभा में आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।